FM 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 20वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 10 मई 2026। सवेरे के 5:58 हुए हैं, हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं FM 103.2 MHz पर। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडीबेल्लूर से महबूब नगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के 2-2 विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वासमत हासिल करने को भी कहा है। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई बैठक में श्री राहुल गांधी, केरलम प्रभारी महासचिव दीपा दासमुंशी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्य के वरिष्ठ नेता रमेश चिन्निथला और वीडी सतीशन शामिल थे। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का भी प्रावधान है। परामर्शदाताओं के लिए शिक्षा के माध्यम से मस्तिष्क की सक्रियता परियोजना पर आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से इसका आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में शैक्षणिक विकास के साथ साथ भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आरोग्य को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल ट्रिनिडाड और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया।

0: नेल्सन द्वीप में भारत से गिरमिटिया श्रमिक पहली बार त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही ये परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। अब अगले कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबई से।

चिंतन। किसी भी स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए सोने की बेड़ियां लोहे की बेड़ियों से कम कठोर नहीं होंगी। चुभन धातु में नहीं वरन बेड़ियों में होती है। ये कथन महात्मा गांधी का है। ये था आज का चिंतन और अब भक्ति संगीत।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब आपको देते हैं जानकारी झरोखा के अंतर्गत आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। इस झरोखा के तुरंत बाद आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 184। संगीत सरिता। इस कार्यक्रम में सुनिए श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें का भाग 8। कलाकार गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर, गायन सहभाग अनुजा जोकरकर, तबले पर संगत दी है यति भागवत ने और हारमोनियम पर ज्ञानेश्वर सोनव ने। इस कार्यक्रम का निवेदन किया ममता सिंह ने, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। कार्यक्रम का समय होगा सुबह और शाम 6:45। भूले बिसरे गीत ये कार्यक्रम होगा सुबह 7:30 पर हम है राही प्यार के, और उसके बाद सुनिए 8 समाचार प्रभात। त्रिवेणी कार्यक्रम का समय होगा सुबह 8:15 और दिन में 2। आलेख और स्वर शेफाली कपूर का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। चित्रलोक कार्यक्रम सुनिए सुबह 8:30 पर और 9:30 पर सुनिए आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित होगा संगीतकार पंकज मलिक पर। इस कार्यक्रम को पुनः सुना जा सकता है रात्रि 9:30 पर। आज सुनिए विविधा कार्यक्रम दिन में 11 और दिन में 12 हिंदी में समाचार। दिन में 12:05 पर होगा कार्यक्रम यादों की महफिल, और दिन में 1 तय कीजिए सुरीला सफर विविध भारती के साथ। आपकी कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा और आपको भी हमारी इबारत का इंतजार जरूर होगा, तो जुड़िएगा इस कार्यक्रम में फेसबुक कमेंट्स द्वारा। दोपहर 2:15 पर सुनिए दोपहर के समाचार और 2:30 पर सदाबहार नगमे। मन चाहे गीत यानी कि आपके द्वारा भेजे गए खतों का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे आज दिन में 3। आज दोपहर 3:30 पर नाट्य तरंग के अंतर्गत सुनिए के रघुपति के मूल नाटक का हिंदी अनुवाद पोस्टमैन का भाग 2। अनुवाद हिंदी अनुवाद किया है P.S. कृष्णस्वामी ने, निर्देशक महेंद्र मोदी। उजाले उनकी यादों के पिटारा के अंतर्गत सुनिए ये कार्यक्रम, निर्देशक रमेश तलवार से यूनुस खान की बातचीत का भाग 3, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। कार्यक्रम का समय दोपहर 4। तराने नए पुराने ये कार्यक्रम होगा शाम 5:30 पर, और यह कार्यक्रम चलेगा शाम 6:30 तक, लेकिन बीच में होंगे 6 हिंदी में समाचार। झरोखा कार्यक्रम, झरोखा आप सुन सकेंगे शाम में 6:30 पर, जिसमें आपको दी जाएगी जानकारी शेष कार्यक्रमों की। संध्या रंजन कार्यक्रम का समय होगा शाम 6:35 और शाम 7 विशेष जयमाला में सुनिए सैनिकों की शौर्य गाथा, महावीर चक्र लेफ्टिनेंट कर्नल कुशल चंद से। इंद्रधनुष में सुनिए साज और आवाज बांसुरी वादक पारसनाथ। 7:45 होगा इस कार्यक्रम का समय। हवा महल के अंतर्गत सुनिए हास्य नाटिका यात्रा प्यारी लाल की, लेखन कल्पनाथ सिंह, निर्देशन चंद्रप्रभा भटनागर का। चित्रलोक कार्यक्रम होगा रात्रि 8:15 पर, समाचार संध्या 8:45 पर। आपके लिए कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात्रि 9।

और छह गीत कार्यक्रम का समय होगा रात 10 बजे आलेख और स्वर यूनुस खान का प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। ढलती जाए रात ये कार्यक्रम होगा रात 10:30 बजे और रात 11 बजे सुनिए विविधा। ये थी जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की और अब श्री रामचरित मानस गान का भाग 184 प्रस्तुत है।

पुत्र वियोग में राजा दशरथ का देहांत हो चुका है। शोक संतप्त अयोध्यावासी और महलों में रानियां विलाप कर रही हैं। सभी लोग कैकेयी की भर्त्सना कर रहे हैं, जिसने जैसे संसार भर की दृष्टि ही छीन ली है। किंतु जगत अपनी गति से चलता रहता है। कुलगुरु वशिष्ठ ने समयानुकूल वचनों द्वारा ज्ञान विज्ञान के प्रकाश से सबके शोक का अंधकार दूर कर तेल भरी नौका में राजा के पार्थिव शरीर को रखवाया। फिर ननिहाल से भरत तथा शत्रुघ्न को तत्काल बुलाने के लिए दूत भेजे, किंतु उन्हें आदेश दिया कि वहां महाराज की मृत्यु का समाचार उन्हें न सुनाएं। दोनों भाइयों से मात्र इतना कहना है कि कुलगुरु ने बुला भेजा है। इधर अयोध्या में जब से अनर्थ प्रारंभ हुए, तभी से भरत को अपशकुन होने लगे थे। उन्हें भयंकर स्वप्न आते और नींद उचट जाने पर अशुभ कल्पनाएं मन में जगने लगती थीं। वो अनिष्ट शांति के लिए तरह तरह के उपाय करते, दान पुण्य तथा भगवान शंकर से माता पिता और भाइयों के कुशल क्षेम की प्रार्थना करते। दूतों से संदेश सुनकर दोनों भाई वायुवेग से अयोध्या लौट चले। नगर में प्रवेश करते ही चारों ओर उन्हें अपशकुन दिखने लगी।

0: श्रोताओ नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। आमंत्रित कलाकार हैं गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। तो आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की आठवीं कड़ी।
1: सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। कल्पना जी, आज की इस कड़ी में हमें बताइए सबसे पहले कि बंदिशें तैयार करने में विषयों का चुनाव किस तरह से किया जाता है और ज्यादातर किन भाषाओं में बंदिशें तैयार की जाती हैं?
2: जी, भाषा तो अक्सर हिंदी, अवधी, ब्रिज बोली में अधिकतर पाई जाती है। कुछ कुछ राजस्थानी, बिहारी और मराठी भाषा में भी कई बंदिशें बनाई, पंजाबी में बहुत सारी बंदिशें बनाई गई। तो उस स्थान का भी असर होता है बोली पर
1: जी।
2: तो भाषा बोली भी अलग अलग थोड़ी हर एक कलाकार के आसपास के वातावरण के हिसाब से बदल जाती है। और उसके साथ साथ विषय जो है वो भक्ति, श्रृंगार, प्रकृति से संबंधित वर्णन, ऋतुओं का वर्णन, उत्सवों का वर्णन और गायन वादन में जो महत्वपूर्ण मूल्य हैं उनके बारे में भी कई बंदिशें बनी हुई हैं
1: जी।
2: तो ऐसे हर कलाकार के बंदिश बनाते समय जो आगरा जयपुर घराने की गायकी
1: जी
2: आपके गायन में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। आपने भी कई रचनाओं का निर्माण किया हुआ है
1: जी।
2: तो आज कुमुदिनी जी ने बनाई हुई राग बिलास खानी तोड़ी में मैं एक बंदिश आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। तीन ताल में बंधी हुई ये बंदिश है
1: जी, जी।
2: कैसे समझाऊं? बिलास खानी तोड़ी, इस नाम से ही हमें प्रतीत होता है कि ये राग तोड़ी का ही प्रकार होगा। इसका थाट जो है भैरवी थाट है, क्योंकि इसमें अधिकतर स्वर भैरवी के ही लगते हैं। इसके आरोह में मध्यम और अवरोह में पंचम वर्जित है, इसलिए इसकी जाति षाड़व षाड़व है। तोड़ी अंग को ध्यान में रखकर मेंड के प्रयोग से ही यह राग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और शुद्ध मध्यम के प्रयोग से भूपाल तोड़ी से भिन्न हो जाता है। और धैवत प्रमुख स्वर या वादी स्वर हम कह सकते हैं, तो बहुत ही सुंदर राग है, प्रातःकालीन राग है। इसका चलन मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ
1: जी।
2: इसके आरोह में मणि वर्ज है और अवरोह में पंचम वर्जित है। इसका चलन वक्र रूप से जाता है जो मैं अब आपको बताती हूँ।

0: वाह, कैसे समझाऊं मानत नहीं मोरा जियर वाह। बड़ी सुंदर रचना थी और बड़े सुंदर अंदाज में आपने प्रस्तुत किया, यूं कहें कि मोहित कर लिया अपने गायन से। अब बताइए हमारे श्रोताओं के लिए अब क्या प्रस्तुत करेंगे आप?
1: अब कुमुदिनी जी की आवाज में उन्हीं की बनाई बंदिश राग भैरव में प्रस्तुत करते हैं। ताल 3 ताल एवं शब्द है शंभो गिरिजापति।

अब आपके सामने एक चतुरंग जो हमीर राग में निबद्ध है, कुमुदिनी जी ने ही गाया हुआ, गावो चतुरंग।

महिला रचनाकारों की बंदिशें। आज आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 8वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर। आपसे बातचीत कर रही थी ममता सिंह। गायन सहभाग रहा अनुजा जोकरकर का। तबला संगति यति भागवत की और हारमोनियम पर ज्ञानेश्वर सोनवणे। आपको बता दें इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल और किरण बंग।

0: संपादन सहयोग झरना सोलंकी का और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
1: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
2: अभी आप आकाशवाणी मुंबई से अनुप्रसारित कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है, एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है हमारा दैनिक सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार झालावाड़।

नमस्कार झालावाड़ मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे दैनिक सूचनात्मक कार्यक्रम में जिसका नाम है नमस्कार झालावाड़। आज इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद साजिद। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मौसम गर्मी का है और गर्मी के इस मौसम में रविवार यानी आज छुट्टी का दिन, फुर्सत का दिन और प्रातःकाल की मीठी नींद और इस नींद का आनंद और उस आनंद को छोड़कर भला कौन बिस्तर छोड़ना चाहता है, क्योंकि सुबह की ठंडी ठंडी हवाएं हमें मजबूर करती हैं कि हम नींद का आनंद ओढ़े। लेकिन वक्त का तकाजा है दोस्तों कि अब बिस्तर हमें छोड़ना होगा, क्योंकि बहुत से काम हैं जो कि आज आपने सोचे हैं और हमने भी सोचे हैं और हर दिन की शुरुआत इसी आशा और उम्मीद के साथ होती है कि हम आज का वो सब काम पूरा कर पाएं जो कि आज के लिए हमने सोचे हैं। तो बस अब मीठे नींद को त्याग दीजिए और उठ जाइए और ज़रा हमारे इस कार्यक्रम की तरफ गौर कीजिए। जी हाँ, आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से इस समय शुरू हो चुका है दैनिक सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार झालावाड़, जिसमें होता है सुविचार के साथ आपके काम के लिए बहुत सारी जानकारियां और मनोरंजन। तो चलिए हमेशा की तरह आज भी इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सुविचार के साथ। आज का सुविचार है मित्रों की लाखों लोगों की दुआएं आपके साथ रहती हैं जो मानवता के नाते अपना फर्ज निभाता है। मित्रों, यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है बल्कि जीवन की गहरी सच्चाई है, क्योंकि जब भी कोई इंसान सिर्फ अपना काम नहीं बल्कि मानवता का फर्ज निभाता है तो प्रकृति भी उसके साथ खड़ी हो जाती है। ब्रह्मांड भी अदृश्य शक्तियों, लाखों अज्ञात दिलों की सच्ची दुआएं उसके जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। इंसानियत का भी यही फर्ज है दोस्तों कि एक छोटा सा बच्चा जिसे स्कूल जाते वक्त आपने रास्ता दिखा दिया, या वो बूढ़ी अम्मा जिसके लिए आपने बस में अपनी सीट छोड़ दी, वो बीमार पड़ोसी जिसके लिए रात के अंधेरे में भी आप दवा लाकर दे देते हैं, एक अनाथ सा बच्चा जिसे आपने छोटी सी राशि से पढ़ने का सामान खरीद दिया, ये छोटे छोटे फर्ज नहीं है दोस्तों, ये मानवता की असली नींव है। कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जिसके कदम जहाँ पड़ते हैं वहाँ फूल खिलने लगते हैं, उसकी मुस्कान में सूरज की गर्माहट होती है, उसकी मददगार हाथों में किसी माँ की दुआओं जैसी ताकत होती है, और आपको ऐसा तब महसूस होगा जबकि आप इंसानियत का फ़र्ज निभाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब आप इन फ़र्जों को निभाते हैं ना तो आपका नाम किसी किताब में दर्ज नहीं होता लेकिन उन दिलों में हमेशा के लिए अंकित हो जाता है जिनकी कि आप मदद करते हैं, क्योंकि दुआओं की ताकत अदृश्य होती है, उतनी ही असरदार जितनी की हवा। आप देख नहीं सकते लेकिन महसूस ज़रूर कर सकते हैं जब मुश्किल वक्त में अचानक कोई मददगार हाथ आपको मिल जाता है, जब आप गिरते गिरते बच जाते हैं, जब आपकी प्रार्थना बिना कहे पूरी हो जाती है। दोस्तों, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर सोचते हैं कि अपना फ़र्ज निभाना समय की बर्बादी है। हम सोचते हैं कि अपना काम बनता भाड़ में चाहे जनता, पहले अपना फिर बाद में दूसरों का। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है दोस्तों कि जो लोग सिर्फ अपना भला देखते हैं उन्हें अकेलापन कितना कुरेदता है, जबकि जो लोग भला करते हैं उनके चारों तरफ प्यार की भीड़ होती है। उनकी ज़िंदगी में चुनौतियां ज़रूर आती हैं लेकिन दुआओं की दीवार उन्हें हर बार बचा लेती है। मानवता का फ़र्ज निभाना कोई बड़ा त्याग नहीं बल्कि एक सुंदर सी आदत है दोस्तों। ये रोज़ सुबह उठकर सोचना चाहिए कि आज किसी का जीवन थोड़ा बेहतर बनाने में मैं क्या योगदान दे सकता हूँ। ये मुस्कुराहट जी कहना है, नहीं कहने के बजाय। अगर किसी के दर्द को हम अपना समझते हैं, उसे दूर करने की कोशिश करते हैं तो लाखों रास्ते हमारे सामने दुख खुल जाते हैं। लाखों लोगों की दुआएं वास्तव में दोस्तों उन्हीं लोगों के साथ रहती है जो मानवता का फर्ज निभाते हैं। जब आप किसी की आंखों में आंसू को मुस्कान में बदल देते हैं ना दोस्तों, ब्रह्मांड आपको हजारों गुना लौटाता है, क्योंकि दुआ कभी व्यर्थ नहीं जाती, वो किसी न किसी रूप में किसी न किसी कोने से आपके जीवन में वापस आती है। शायद एक

या किसी सफलता के रूप में, शायद एक अजनबी की मदद के रूप में, या शायद उस शांति के रूप में जो किसी धन की जरूरत से ज्यादा अनमोल है। तो आइए हम सब मिलकर आज वादा करें कि हम मानवता के सच्चे सिपाही बनेंगे। हम छोटे छोटे फर्ज निभाएंगे लेकिन बड़े दिल से, क्योंकि हमें पता है कि जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तो असल में हम खुद के लिए सबसे खूबसूरत जिंदगी जी रहे होते हैं, क्योंकि लाखों अज्ञात दुआएं हमेशा हमारे साथ होती हैं।

वाली, वरना अपना नाम नहीं है बन्ने खां भोपाली। मुन्ने मियां बधाई बनो खूब होनहार, दोनों जहां की नेमतें हों आप पे निसार। हाँ बचपन

नमस्कार। झालावाड़ कार्यक्रम के इस अंक में मित्रों आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे दोस्तों समाचार पत्रों में छपने वाली उन खबरों पर जिनको देखकर हमारा मन रो पड़ता है, और वो खबरें होती हैं सड़क दुर्घटनाओं को लेकर। समाचार पत्रों में अक्सर छपने वाली दुर्घटनाओं की खबरें हमारे दिल और दिमाग को झकझोर कर रख देती हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोज, कोई नौजवान बाइक पर मटरगश्ती करते हुए रील बनाते हुए दुर्घटना का शिकार हो गया और अकाल मौत के मुंह में समा गया, और एक माँ अपने बेटे का इंतजार करती रह गई, एक पिता अपनी बेटी की हंसी दोबारा कभी नहीं सुन पाया, कारण सड़क दुर्घटना। सिर्फ दो शब्द लेकिन पूरे परिवार की दुनिया को उजाड़ देने वाले। मित्रों हम बात कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 2026 की। 8 से 14 मई तक चलने वाला यह अभियान हमें चेताता है कि हर साल दुनिया भर में लगभग 13 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा देते हैं और 2 से 5 करोड़ लोग घायल हो जाते हैं, और सबसे ज्यादा इनमें संख्या युवाओं की 29 वर्ष तक के नौजवान युवाओं की होती है जो कि सड़क दुर्घटनाओं में अकाल मौत के मुंह में समा जाते हैं। भारत में भी स्थिति चिंताजनक है दोस्तों। हर घंटे दर्जनों लोग सड़कों पर दुर्घटनाओं में मारे जा रहे हैं। हर दिन परिवार टूट रहे हैं और परिवारों के सपने बिगड़ते जा रहे हैं। कल्पना कीजिए, सुबह स्कूल जाते समय अपनी छोटी सी बेटी को पापा जल्दी आना कहकर विदा करने वाले पिता शाम को खाली बैग लेकर घर लौटते हैं, या वो नवविवाहित जो अपनी दुल्हन के साथ पहली बार घूमने निकला था और कभी वापस नहीं लौटा। ये कहानियां नहीं दोस्तों, हमारे आसपास की रोजमर्रा की जिंदगी में नजर आती हैं घटने वाली ऐसी घटनाएं जो हमारे दिमाग को झकझोर के रख देती हैं। इसलिए संयुक्त राष्ट्र और WHO का संदेश बहुत सीधा और दिल को सुकून देने वाला है, सड़कें सबके लिए सुरक्षित बनाएं। पैदल चलने वाला बच्चा, साइकिल पर जा रहा छात्र, हेलमेट लगाए बिना तेज रफ्तार में भागता नौजवान, साइकिल सवार, दोपहिया वाहन चालक हो या चार पहिया वाहन चलाने वाला, हर कोई हमारा अपना होता है। हर किसी की सुरक्षा हमारी भी जिम्मेदारी है। इस वर्ष हम खास तौर पर खास फोकस कर रहे हैं पैदल यात्रियों और साइकिलिस्टों और सार्वजनिक परिवहन उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा पर। शहरों में पैदल चलने योग्य फुटपाथ, साइकिल लेन, स्पीड लिमिट का पालन, हेलमेट और सीट

गूगल का उपयोग, ये छोटे छोटे से कदम है लेकिन बहुत अच्छे परिणाम ला सकते हैं। तो मित्रों, हमारी भी आपसे यही अपील है कि जब भी गाड़ी चलाएं, याद रखें पीछे आपकी माँ की दुआएं, आपकी पत्नी का इंतज़ार, आपका बच्चा का पापा जल्दी आ जाने वाला चेहरा आपकी नज़रों में, आपके दिल दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि घर पर आपका कोई इंतज़ार कर रहा है। याद रखिए, हेलमेट लगाना कोई फैशन नहीं है, अपने परिवार से किया गया एक वादा है। सीट बेल्ट लगाना सिर्फ नियम नहीं है, अपनी जान से प्यार का सबूत है। फ़ोन पर बात करते हुए ड्राइविंग एक मैसेज आपके परिवार को उम्र भर रोने के लिए छोड़ सकता है। शराब पीकर गाड़ी चलाना

सीट बेल्ट लगाना सिर्फ नियम नहीं है, अपनी जान से प्यार का सबूत है। फोन पर बात करते हुए ड्राइविंग एक मैसेज आपके परिवार को उम्र भर रोने के लिए छोड़ सकता है। शराब पीकर गाड़ी चलाना बहुत खतरनाक है, यह सिर्फ गाड़ी नहीं किसी के पूरे भविष्य को कुचल देता है। मित्रों, सड़क सुरक्षा कोई सरकारी अभियान ही नहीं है, हमारा फर्ज भी है अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए, उन दोस्तों से किए गए वादे जो कि आपको ड्राइव सेफली कहकर विदा करते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ आप भी आज संकल्प लीजिए, मैं सुरक्षित चलूंगा, सुरक्षित चलाऊंगा और दूसरों को भी सड़क सुरक्षा नियमों की पालना करने के लिए जागरूकता करूंगा। याद रखिए, सड़क पर लापरवाही एक पल की होती है, दर्द उम्र भर का। आइए मिलकर सड़कों को जीवन की राह बनाएं, मौत की नहीं, अपने परिवार को सुरक्षित घर लौटने का हक दें। जागरूक रहिए, संवेदनशील रहिए, जिम्मेदार रहिए, यातायात नियमों का हमेशा पालन कीजिए और वाहन चलाते समय दाएं बाएं और अपने आसपास सावधानी से जरूर नजर बनाए रखिए।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के घोड़े पर घोड़ा जो भूख है घोड़ा जो पैसा है घोड़ा जो किस्मत है तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: वफादार है, खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।

नमस्कार, झालावाड़ कार्यक्रम के तुरंत बाद यानी प्रातः 7:30 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत। और फिल्म संगीत का एक और कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 6:05 पर और 8:15 पर भी हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत।

श्रोताओं, इस समय आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल और आप सुन रहे हैं दैनिक सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार झालावाड़। आइए अब हम आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले स्थानीय कार्यक्रम और उनके प्रसारण

प्रातः 8:15 पर हमारे केंद्र से आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा। श्रोताओं, आज के विविधा कार्यक्रम में आप सुनेंगे मातृ दिवस पर मातृ प्रेम की अभिव्यंजना, कविता नलगे की प्रस्तुति।

नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए भी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा प्रातः 8:30 पर। इस कार्यक्रम में सड़क पर नन्हे कदम सुरक्षा के संग संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह पर बातचीत होगी और बच्चों के मुख से जानकारियां, कविता, गीत सुनिएगा और साथ ही सीख की बात होगी, नियम मानेंगे, सुरक्षित रहेंगे।

शाम 7 बजे किसान साथियों के लिए कार्यक्रम होगा कृषक चौपाल। कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा फसलीकरण और इसके लाभ। हरे चारे का विकल्प नेपियर घास विषय पर सुनिएगा रवि यादव, कृषि वानिकी अनुसंधान अध्येता, उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय झालावाड़ से मुकुट बिहारी मीना की बातचीत। और जानकारी की बातों में आज मेक इन इंडिया कार्यक्रम की जानकारी होगी और साथ ही इस कार्यक्रम में किसान साथी जानेंगे बाजार भाव, समर्थन मूल्य और मौसम के बारे में।

और रात 9 बजे आप हमारे केंद्र से सुन सकते हैं गीत संगीत की विभिन्न विधाओं का कार्यक्रम सबरस। श्रोताओं, ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले स्थानीय और मुख्य मुख्य कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय की संक्षिप्त रूपरेखा।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: जलवायु और भूमि पर जीवन, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु परिवर्तन के कारण भूमि की क्वालिटी गिर रही है, पौधे और जानवर लुप्त हो रहे हैं और रेगिस्तान बढ़ रहे हैं। जंगल, आर्द्र भूमि और घास के मैदान जैसे महत्वपूर्ण स्थान जो इंसान और प्रकृति दोनों की

करते हैं आज काफी दबाव में हैं। वनों की कटाई और अत्यधिक चराई जैसे अस्थिर तरीके इन खतरों को और बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर हम जमीन का सही और टिकाऊ उपयोग करें, पेड़ पौधे दोबारा लगाएं और पर्यावरण को सुधारें, तो इससे प्रदूषण कम होगा और जीव जंतुओं की रक्षा भी होगी। यह कदम एक सुरक्षित और मजबूत जलवायु वाले भविष्य के लिए जरूरी है। क्या आप जानते हैं, आज दुनिया की 1/4 से ज्यादा जानवरों और पौधों की प्रजातियां लुप्त होने के किनारे पर हैं। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: और अब कार्यक्रम में बारी स्थानीय सूचनाओं और गतिविधियों की।

सबसे पहले आपको जानकारी दे दें मित्रों कि झालावाड़ जिले में रसद विभाग ने अवैध घरेलू गैस सिलेंडरों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में शनिवार को यानी बीते हुए कल विभाग की टीम ने भवानी मंडी क्षेत्र में दबिश देकर सिलेंडर जब्त किए। इस अभियान में जिला रसद अधिकारी जितेंद्र कुमार के निर्देश पर प्रवर्तन अधिकारी गोविंद दया ने भवानी मंडी में सघन निरीक्षण के दौरान कार्रवाई की और 6 घरेलू गैस सिलेंडर और 1 इलेक्ट्रिक मोटर बरामद की।

और आपको जानकारी दे दें मित्रों कि झालरापाटन में आज 3 घंटे विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी, क्योंकि JBVN मानसून के पहले पेड़ों की टहनियां और कटिंग का कार्य करेगा, जिसके चलते ये कटौती की जाएगी। ये बिजली कटौती सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक यानी कुल 3 घंटे के लिए होगी, जिसमें 11 KV माधोपुर फीडर से जुड़े कई क्षेत्र प्रभावित होंगे। प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में माधोपुर गाँव, भैरूपुरा बस्ती, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी और मोटर मार्केट शामिल है। निगम ने उपभोक्ताओं से असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया। इसी प्रकार से अकलेरा में भी आज 33 KV अकलेरा सिटी फीडर लेन पर विद्युत आपूर्ति 4 घंटे के लिए बाधित रहेगी। ये कटौती ट्री कटिंग और मेंटेनेंस कार्य के कारण की जाएगी। विद्युत आपूर्ति सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक बंद रहेगी।

अगली जानकारी है मित्रों की, जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने सड़कों से कुत्तों और निराश्रित पशुओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए जिले की सभी नगरीय इकाइयों को सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों और भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड की मानक संचालन प्रक्रिया SOP की पालना सुनिश्चित करना इस पहल का मुख्य उद्देश्य रहेगा। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ के अनुसार निकाय अपने क्षेत्र में मानकों के अनुरूप शेल्टर होम चिन्हित कर आवश्यक व्यवस्थाएं विकसित करेंगे और सार्वजनिक स्थलों से बेसहारा कुत्तों को पकड़कर सुरक्षित रूप से इन शेल्टर होम में स्थापित करेंगे। साथ ही सड़कों पर विचरण कर रहे निराश्रित गोवंश को भी तत्काल गौशालाओं में स्थानांतरित करने के निर्देश भी जिला कलेक्टर महोदय ने दिए। इसके लिए सरकारी और निजी गौशालाओं में समन्वय स्थापित किया जा रहा है और कुत्तों के टीकाकरण एवं बंध्याकरण की कार्रवाइयां भी इस दौरान की जाएंगी। और इस जानकारी के साथ ही दोस्तों, हमारा आज का ये दैनिक सूचनात्मक कार्यक्रम अब यहीं तक। अपने दोस्त मोहम्मद साजिद को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल। नमस्कार, नमस्कार झालावाड़।

नमस्कार झालावाड़, यह आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है FM 103.2 MHz पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। आन मिलो सजना फिल्म के लिए आवाज है लता मंगेशकर की, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वर में लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। शब्द रचना आनंद बख्शी की है, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म का नाम आप आए बाहर आई।

0: श्रोताओ, फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से। कार्यक्रम अभी जारी है, यहां लेंगे एक ब्रेक। अगले गीत के साथ जल्द हाजिर होंगे।
1: तीनों कॉलेज में
2: डोंट वरी,
1: फीस तो देखो।
3: क्या हाल है, क्या हुआ?
2: फीस की टेंशन,
3: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
4: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है मिठाई?
5: RBI कहता है
6: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: Daily Law के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: दीदी, नौकरी लग गई।
2: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ दी, नया मोबाइल।
2: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
3: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
2: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
1: पर दीप,
2: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
3: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
2: अच्छा।
4: RBI कहता है,
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। महिलाओं में होने वाले सबसे आम कैंसर सर्वाइकल कैंसर, यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। अब बचाव संभव है।
6: अब ये कैंसर टाला जा सकता है, बस एक सही कदम,
5: सही समय पर। अपनी 9 से 14 वर्ष की बेटियों को HPV टीका जरूर लगवाएं और उन्हें स्वस्थ, सुरक्षित और लंबी उम्र का आशीर्वाद दें।
6: ये टीकाकरण सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क किया जा रहा है।
5: आइए मिलकर बेटियों के स्वास्थ्य की रक्षा करें और सर्वाइकल कैंसर मुक्त भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं।
6: मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ द्वारा जनहित में जारी।
7: दी, ये देख कैसे।
8: हैप्पी बर्थडे भाई।
7: दीका,
9: हाँ मेरा फेवरेट कलर
8: हमेशा शॉपिंग।
9: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
10: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
11: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
9: आई नो ना।
11: RBI कहता है,
12: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
13: दादी कौन सा प्लांट है?
10: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
13: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
10: क्यों?
13: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
10: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
13: RBI कहता है, स्मार्ट बनो, कूल रहो।
14: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश ठेर।
15: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

ब्रेक के बाद फिल्म संगीत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में अनोखी अदा फिल्म का गीत। मजरूख कलमबद इस गीत की तरह बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: आशा भोसले की आवाज में यह गीत है समाधि फिल्म से, बोल मजरू के और संगीत आर डी बर्मन का।
1: जब तक

लीजिए, अब सुनिए कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत समाधि फिल्म से। बॉल मजरू के हैं, संगीत आर डी बर्मन का और आवाज आशा भोसले की। क्षमा करें, कार्यक्रम का अगला गीत है नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे फिल्म से। बोल राजेंद्र कृष्ण के, संगीत मदन मोहन का और आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोसले की।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत समाप्त होता है। यह आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है FM 103.2 MHz पर। 8 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में समाचार प्रभात का आज का अंक हम दिल्ली से प्रसारित करेंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वह हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ चार श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान अविकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की और ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 9 भारतीय महिला मुक्केबाज फाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सदस्यों को संबोधित करेंगे और यहां पर नए ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। फाउंडेशन द्वारा संचालित समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रम का उद्घाटन भी उनके द्वारा होगा। आर्ट ऑफ लिविंग केंद्र जाने के पहले प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कर्नाटक विधानसभा के विपक्ष के नेता आर अशोका ने बताया कि विभिन्न राज्यों में पार्टी की जीत के कारण अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन के संदर्भ में बेंगलुरु पुलिस ने वाहन संचार पर कुछ पल के लिए रोक लगाई है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में कई विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज HICC में आयोजित कार्यक्रम दौरान 9,400 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से जहीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और वरंगल में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशील रखना शामिल है। इसके साथ ही वह काजीपेट विजयवाड़ा रेलवे ट्रिपलिंग परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जनसभा और सरकारी कार्यक्रमों के समापन के बाद प्रधानमंत्री जामनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीनिवास मांगकाली, आकाशवाणी न्यूज, हैदराबाद।
0: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सोएज ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा बुक करने और प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसी विश्व स्तरीय बुनियाद आदि ढांचे की कनेक्टिविटी के साथ ही देश और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय को आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के नेहरू इंदौर स्टेडियम में होगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर श्री विजय और 9 मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और बड़ी संख्या में लोगों के चेन्नई पहुंचने की संभावना है।
4: टीवीके के जीत के नायक सी जोसेफ विजय आज चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विजय ने फिल्म नालैया थिरपू से फिल्म जगत में प्रवेश किया। बाद में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। इनमें कई राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी फिल्में भी शामिल है। यह चुनाव मुख्य रूप से युवाओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के बीच था। इस बार उन लोगों ने भी वोट किया जो कभी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते थे। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद टीवीके को 108 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि यह बहुमत सिद्ध करने के लिए काफी नहीं था, लेकिन फिर भी जोसेफ विजय कांग्रेस VC के वामपंथी दलों और IUML के समर्थन से बहुमत हासिल करने

0: कामयाब रहे। विजय इतिहास रचते हुए पहली बार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विजय ने उंगा विजय नान वारिन के नारे के साथ विजय ने ये चुनाव जीता है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं इशिका।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। एक रिपोर्ट।
2: एन रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में AINRC के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की शानदार जीत के बाद श्री रंगासामी रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में श्री रंगासामी थट्टन चावड़ी और मंगलम विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित हुए। शुक्रवार को श्री रंगासामी ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने निर्वाचित विधायकों के समर्थन पत्र भी प्रस्तुत किए, जिनमें सरकार बनाने की अनुमति मांगी गई है। 30 सदस्यीय विधानसभा में NDA को 18 विधेयकों का समर्थन प्राप्त हुआ है। पुदुचेरी से विवेक एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: केरला में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आज सुबह 9 बजे गुवाहाटी में होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। बैठक के बाद इसी स्थान पर NDA विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद NDA विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल RN रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और पांच कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: के लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
6: नए नियम में प्रवेश स्तर से लेकर सबसे अनुभवी स्तर तक 4 श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार का तर्क है कि वर्तमान वेतन स्तर 20 वर्ष पहले तय किए गए थे और अमरीकी श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते। इस नियम के अंतर्गत 26 मई तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। प्रवेश स्तर के श्रमिकों के लिए वर्तमान वेतन बढ़ाकर $97,700 से अधिक करने का प्रस्ताव है। ये पुरानी दरों से करीब 43% अधिक है। वर्तमान प्रणाली से नियोक्ता विदेशियों को समान रूप से कार्यरत अमरीकी कर्मचारियों की तुलना में काफी कम वेतन पर नियुक्ति कर लेते हैं। प्रस्तावित परिवर्तन से H1B, H1B1, E3 और PERM श्रम प्रमाणन कार्यक्रमों में लागू वर्तमान वेतनमान में वृद्धि होगी। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रामजेट कमस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की है। एक रिपोर्ट।
7: इस सफल परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इससे भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। कम्बस्टर को DRDO ने उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित किया है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित तरल हाइड्रोजन ईंधन और उन्नत थर्मल बैरिंग कोटिंग तथा आधुनिक विनिर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और

0: उद्योग भागीदारों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान श्री शाह राहत और बचाव उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। शुरुआती चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसीय समन्वय की भी समीक्षा की जाएगी, ताकि जान माल का नुकसान कम से कम किया जा सके। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ट्रिनिडाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ दक्षिण ट्रिनिडाद में एक कृषि प्रसंस्करण केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत की सीड्स पहल के अंतर्गत संचालित ये केंद्र ट्रिनिडाड और टोबैगो के लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करेगी और कृषि क्षेत्र को नई गति देगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। अंडर 15 में अक्षिता ने 30 से 33 किलो में, अंजी ने 37 किलो में और सोनिया ने 40 किलो में जीत हासिल की। तन्वी ने 43 किलो में, हंसिका अत्री ने 46 किलो में और सुनैना ने 58 किलो में तथा भूमिका ने 61 किलो और तन्वी ने 64 किलो में जीत हासिल की। इसके अलावा आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में 7:30 से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता में कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से मात दी।
1: मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी आने की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद लवलीन। शुभेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर हिंदुस्तान ने लिखा है, शुभेंदु के साथ बंगाल में भाजपा युग आरंभ। दैनिक जागरण के अनुसार इतिहास के पन्नों में शनिवार को एक ऐसी इबारत लिखी गई जिसकी कल्पना भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दशकों पहले की थी। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, 74 साल में पहली बार भगवा बंगाल। तमिलनाडु में राजनीतिक अनिश्चितता समाप्त, अभिनेता से राजनेता टीवी के प्रमुख के आज शपथ लेने की खबरें सभी अखबारों में हैं। अमर उजाला की सुर्खी है, तमिलनाडु में कल सारे दिन चली राजनीतिक गतिविधियों को फिल्मी सीन बताते हुए लिखा है, दिन भर चला सस्पेंस, शाम को ऐलान के बाद जश्न। केंद्र सरकार द्वारा चारों नए लेबर कोड से जुड़े नियम नोटिफाई करने को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता से देते हुए 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा, अतिरिक्त काम कराने के लिए कर्मचारी की सहमति जरूरी होगी और ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से करना होगा। एयर डिफेंस को चकमा देने वाली विशेष मिसाइल का कल सफल परीक्षण किए जाने पर हिंदुस्तान लिखता है, एक बार में कई दुश्मनों को भस्म कर देगी अग्नि मिसाइल। पत्र ने इसे आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम बताया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस के अवसर पर गूंजे मंत्र, हिंदू परंपरा से शांति पाठ, राजस्थान पत्रिका में है। पत्र लिखता है कि इसकी शुरुआत 1952 अमेरिकी कांग्रेस के कानून के अंतर्गत हुई थी। अमर उजाला की ये खबर चिंतित करती है, इतिहास का सबसे गर्म अप्रैल, विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया अब पेरिस समझौते में तय 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के करीब पहुंच रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में चरम मौसमी घटनाएं और गंभीर हो सकती हैं। नवभारत टाइम्स की खास खबर है, डायनासोर के बाद गधों की बारी, घट रही आबादी। पत्र ने इसे अस्तित्व का संकट बताते हुए लिखा है कि सरकार ने गधों की घटती आबादी पर चिंता जाहिर करते हुए इनके संरक्षण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। आज मदर्स डे पर सभी अखबारों ने विशेष आलेख लिखे हैं। दैनिक भास्कर लिखता है, माँ होने का हक बच्चों को मुश्किल से बचाना नहीं, लड़ना भी सिखाना है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वे हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ 4 श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रैमजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: FM 103.2 MHz पर आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। हमारे केंद्र से अभी प्रस्तुत है कार्यक्रम

0: विविधा। श्रोताओ, आज के विविधा कार्यक्रम में मातृ दिवस पर सुनते हैं मातृ प्रेम की अभिव्यंजना, प्रस्तुति कविता नलगे की।
1: श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज मातृ दिवस 10 मई के पावन अवसर पर सभी माताओं को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। सखियों, माँ के प्यार को, उसके कष्टों को बच्चों के लिए वह जो करती है या करना चाहती है उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। फिर भी मैं भी एक माँ हूँ।

माँ का एक दिन केवल एक दिन नहीं होता है, माँ का दिन तो रोज ही होना चाहिए, ऐसे कई लोग कहते हैं। पर मेरा मानना है माँ का न तो एक दिन होता है ना रोज का दिन होता है, वह तो रोज ही हमारा दिन बनाती है, जुटी रहती है हमारी जिंदगी को बनाने में। उसी जिंदगी बनाने वाली माँ को मेरा बहुत बहुत नमन है और मेरी माँ को मेरा मन से बारंबार प्रणाम है। मेरी माँ, मेरी आई, मेरे लिए जो आपने किया है, जो आपकी मेहनत और संस्कारों से जो आपने मुझे बनाया है, वही संस्कार मेरी जिंदगी को, मेरी राहों को आसान बनाते हैं, मेरी राहों को रोशन करते हैं। आपसे कुछ दूर हूँ पर माँ, मैं हमेशा आपके पास हूँ। पर मैं जानती हूँ माँ कि आपने मेरी खुशियों के लिए अपनी हर खुशी को कुर्बान किया होगा। माँ, मैं खुश रहूँ इसलिए हर दर्द, हर आंसुओं को छुपाया होगा मुझसे। माँ, मैंने कई बार आपको देखा, कभी दिया जलाकर, कभी हाथ जोड़कर मांगती रहती हूँ हमेशा दुआएं अपने बच्चों के लिए। माँ, मैं जब बीमार होती थी तब तुम रात भर जागकर भी दिन भर काम करती थी, और कैसे थकती नहीं थी माँ तुम, केवल मेरे लिए जागती और दिन भर काम करती। आज भी खुद से पहले हर चीज़ अपने बच्चे को मिले यही सोचती हो ना माँ, गम का साया भी कभी मुझ पर नहीं आए यही दुआएं मांगती हो ना माँ। मेरे हर सपने, मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपना हर दर्द, परेशानी भूल जाती हो ना माँ। माँ, तेरी कुर्बानियों, तेरे दर्द का कोई हिसाब नहीं होता। माँ, आप जो कष्ट सहती हो हम बच्चों के लिए, उसका तो कोई जवाब नहीं हो सकता। खुद को मिटा कर भी हमें बना देती हो। मेरे बच्चे के लिए कुछ कहना चाहूँगी। मेरे बच्चे, कभी भी आना मेरे पास, वही आंचल की छांव, वही प्यार है तुम्हारे लिए। हर निवाला बड़े प्यार से खिलाऊंगी, बड़े प्यार से मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। तुम कभी परेशान मत होना, जब कभी परेशान हो मेरे गोद में सर रखकर सो जाना। सारा प्यार, सारा दुलार बस तुम्हारे लिए है, वो कभी कम कभी हो ही नहीं सकता, वो हमेशा रहेगा तुम्हारे लिए। बस सवर जाए मेरे बच्चों की जिंदगी, बस जिंदगी से यही तो चाहती हूँ ना मैं, और बस यही चाहती है हर माँ। माँ के लिए बहुत सारा प्यार, मेरी माँ, मेरी आई। नारी शक्ति पर मैंने कुछ लिखा है जो आप सभी सखियों से को सुनाना चाहती हूँ। नारी, तुम कमज़ोर नहीं, तुम बहुत सशक्त हो। विधाता ने तुम्हें एक जीव को पेट में 9 महीने पालने और फिर जन्म देने की ताकत दी है। पेट में और जन्म देने तक तुम कितना कष्ट सहती हो इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। केवल माँ बनने वाली एक नारी ही इसकी कल्पना कर सकती है। तुमने हर क्षेत्र में अपना नाम किया है, छोटे से लेकर बड़े बड़े काम भी किए हैं, फिर तुम अपनी शक्ति को कम कैसे आंक सकती हो। घर में और घर के साथ बाहर भी हर चुनौती को स्वीकार किया है तुमने, बात चाहे रानी लक्ष्मीबाई की हो या कल्पना चावला की, या अहिल्याबाई होलकर की, या देश के राष्ट्रपति की। कभी कभी शास्त्र पढ़कर, कभी शस्त्र उठाकर, कभी कलम थाम कर, जंग से लेकर हर मैदान में खुद का लोहा मनवाया है, फिर तुम कमज़ोर कैसे हो सकती हो। तुम कमज़ोर भी नहीं हो, तुम कायर भी नहीं हो। बड़े बड़े योद्धाओं से लेकर बड़े बड़े वैज्ञानिकों से लेकर हर महान व्यक्ति को तुमने जन्म दिया है, यही तुम्हारी कम महानता नहीं है। तुम तो पूरी शक्ति हो, तुम ही तो पूरी सृष्टि हो, ममता की ढाल हो। बच्चों के लिए ममतामयी माँ हो तो दुश्मन के लिए काल हो। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही हो तुम, वक्त और परिस्थितियों से कभी न हारी हो तुम। नारी, तुम शक्ति हो, तुम कमज़ोर नहीं, बहुत सशक्त हो। अपनी प्रतिभाओं से ऊंचाइयों के नए आकाश छुए हैं तुमने। सहनशीलता का गहरा सागर तो स्वाभिमान की मिसाल हो तुम। नारी, तुम केवल नाम नहीं,
जीवन का खुशनुमा एहसास।

पास हो जो सब जगह खुशियों को भर देती है जहाँ जाती हैं। नारी तुम केवल नाम नहीं जीवन जीने का खुशनुमा एहसास हो, बच्चे के लिए प्यार का आंचल हो, पति के लिए दुख बांटने वाली जीवन संगीनी हो, बहन के रूप में माँ सा प्यार देती हो तुम, बेटी बनकर घर का आंगन महकाती हो तुम, तो दादी नानी की प्यारी सी बातें भी हो तुम। हर तीज त्यौहार तुमसे ही तो अच्छे लगते हैं, घर में खुशियों के रौनक के मेले तुम्हीं से तो लगते हैं, तुम्हारे होने से घर घर सा लगता है, नहीं तो मकान क्या कभी घर बन पाते हैं। सब कुछ कर सकती हो तुम, बस डर से निकलकर एक खुला आसमान चाहिए, पंख तो है बस परवाज चाहिए। नारी तुम शक्ति हो, नारी तुम सशक्त हो, तुम कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं हो। संत कबीरदास जी का एक दोहा पढ़कर मुझे शब्द पर कुछ लिखने का मन हुआ जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। संत कबीरदास जी ने लिखा था कि ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। इन्हीं पंक्तियों से प्रभावित होकर शब्द पर कुछ लिखने का मेरा मन हुआ है। शब्द वो होते हैं जो बहुत प्यार देते हैं, पर शब्द घाव भी अपार देते हैं। जो शब्द जो जिंदगी में खुशियों से वार देते हैं, कभी शब्द शस्त्र बनकर चीर जाते हैं मन को दिमाग को, तो कभी शास्त्र बनकर विद्वान बना देते हैं। शब्द आपके व्यक्तित्व का दर्पण होते हैं। पर साथियों, गुस्सा आने पर शब्द को संभालना होता है, वरना सारी जिंदगी को बिगाड़ देते हैं शब्द। शब्द जो मन में गहरे चले जाते हैं, कभी शीतलता तो कभी तपिश से भर देते हैं। शब्द जो आशीर्वाद बनकर निखार देते हैं, तो कभी अभिशाप बनकर इतना विष दे जाते हैं। शब्द ही हैं जो प्रेम के धागे हैं, पर इनकी डोर बड़ी कमज़ोर है। इसलिए साथियों, बिना विचारे मत बोलिए, शब्दों को बड़े ध्यान से नाप तोलिए, फिर ही अपना मुंह खोलिए। आज मेरा मेरे देश पर कुछ लिखने का मन हुआ, मेरे मनोभाव को मैं अपने देश के लिए प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरा देश ही मेरी पहचान है, मेरा गौरव है, मेरा अभिमान है। देशवासियों, जब राष्ट्रगीत तो राष्ट्रज्ञान जब बजते हैं तो एक मन देश प्रेम से भर जाता है। अपने वतन से प्यार हम सभी करते हैं। तीन रंगों का राष्ट्रीय ध्वज जब किसी शहीद के वीर के शव पर आता है तो हर इंसान रोता है। इसकी गौरव गाथा मेरे देश की बड़ी निराली है। इसकी आज़ादी के लिए लड़ने वालों की गाथा पढ़कर आँखों में आंसू आ जाते हैं। किन तकलीफों किन कष्टों से हमें आज़ादी मिली होगी, उन आज़ादी के दीवानों का हम पर कर्ज है, अब हमें इसे संभाल कर रखना ही हमारा फ़र्ज है। मेरे देश में जहाँ खेतों में सोना उगता है, झरझर नदियाँ बहती है, जहाँ हिमालय हमारा मुकुट विशाल है, आसमान में जब तिरंगा लहराता है तो इसे सुरक्षित रखना यह भी हमें समझाता है। विविधता में एकता हमारी शान है, अलग अलग बोली अलग अलग पहनावा हमारी पहचान है। साथियों, जब हमें बहुत गर्व होता है, जब हम कहते हैं कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, यह हमारा नारा है। सीमाओं पर रक्षा करते हमारे जवान हैं, तो खेतों में अपनी मेहनत से सोना उपजाते हमारे किसान हैं, तो विज्ञान के क्षेत्र में नई उपलब्धियों को प्राप्त करते हमारे वैज्ञानिक और विज्ञान हैं विश्व पटल पर, इसी कारण से हमारा देश चमक रहा है। सत्य अहिंसा का संदेश देता हमारा देश है, आज हिंसा से खत्म हो रहा यह संसार है, विश्व में बढ़ रही है अहिंसा और परमाणु औजार है, धरती से खत्म हो रहा है शांति और प्यार है। ऋषियों की पावन भूमि है मेरा देश, जिनके ज्ञान और ग्रंथों से आज भी हमारा सही दिशा हमें मिलती है और

हमें वो जीना सिखाते हैं। कण कण में यह वीरों की गाथा है, शिवाजी, महाराणा प्रताप, लक्ष्मीबाई जैसे कई सारे वीरों के बलिदान और देश प्रेम से बनी हमारी पहचान है। मेरे देश के वीरों का क्या कहना है, जो हंसते हंसते देश पर कुर्बानियाँ देते हैं। जब देश में होली दिवाली हम मना रहे होते हैं, तब सीमा पर हमारे जवान सजग होकर पहरा देते हैं, ताकि हमारे देश पर कोई आँच ना आए। कितने वीरों ने हमारे लिए अपनी जान गंवाई होगी, कितनी माँ बहनों और घर वालों के आंसू नहीं रुकते होंगे अपने बेटे भाई और पिता को खोने पर। हमें हर शहीद पर आज गर्व है, नमन करते हैं हम उस वीरों की वीरता को, जो देश के प्रति उनकी समर्पित भावना को देश प्रेम के लिए, हम बहुत गर्व करते हैं, नमन करते हैं उन वीरों को।

मातृ दिवस पर अभी आप सुन रहे थे मातृ प्रेम की अभिव्यंजना, प्रस्तुति थी कविता नलगे की। इसी के साथ हमारा आज का विविधा कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: में आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: यह आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है नन्हे मुन्ने बच्चों का साप्ताहिक कार्यक्रम। प्रस्तुति है मेघना वैष्णव की।

0: सभी बच्चों को जय हिंद।
1: जय हिंद।
0: आज आप हम जो हमारे श्रोता हैं रेडियो के माध्यम से, आपके नन्हे मुन्ने दोस्त जो हम सबसे जुड़े हुए हैं, उनको क्या सुनाना चाहोगे?
1: पोयम।
0: अच्छा, पोयम। तो ठीक है, हम शुरुआत करें आज के कार्यक्रम की।
1: Yes.
0: तो सबसे पहले कौन अपना नाम बताएगा?
2: मैं।
0: बताओ बेटा आपका नाम।
2: सागांश राठौर।
0: अच्छा, तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
2: सिक्स
0: क्लास में पढ़ते हो। तो स्कूल जाना कैसा लगता है आपको?
2: बहुत अच्छा
0: लगता है। कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पसंद है आपको?
2: मेरे को साइंस।
0: साइंस पसंद है। अच्छा, तो आप बड़े होके क्या बनना चाहोगे?
2: साइंटिस्ट।
0: अरे वाह, सब ताली बजाओ बच्चे के लिए। देखो कितना अच्छी बात है ना कि हम लोग बड़े होके कुछ ना कुछ, और अभी से हम लोग सोचेंगे कि हमें क्या बनना है, तो हम आगे जाके उसके लिए मेहनत कर पाएंगे। बिल्कुल। अब कौन बताएगा अपना नाम?
3: मेरा नाम तन्विश राठौर है।
0: तन्विश राठौर है। तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
3: टू
0: में। तो आपको कैसा लगता है पढ़ना?
3: अच्छा
0: लगता है। और कौन सा सब्जेक्ट पसंद है आपको?
3: हिंदी
0: पसंद है। अच्छा, आपका क्या नाम है बेटा?
4: बन्या।
0: तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
4: सेकंड
0: में। तो आप क्या बनना चाहोगे बड़े होके? टीचर बनोगे। अरे वाह, बहुत ताली बजाओ सब बच्चों। अब आप बताओ आपका क्या नाम है बेटा?
5: प्रियल विश्वकर्मा।
0: प्रियल, तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा?
5: सेकंड
0: में। अच्छा, तो आप क्या बनना चाहते हो बड़े होके?
5: डॉक्टर।
0: अच्छा, आपको कैसे डॉक्टर क्यों पसंद है? आप क्यों बनना चाहते हो डॉक्टर? अच्छा, अब आपका नाम बताओ बेटा?
6: अनाया विश्वकर्मा।
0: अनाया, तो अनाया कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
6: सिक्स
0: क्लास में पढ़ते हो। तो आप क्या बनना चाहोगे बेटा बड़े होके?
6: IPS ऑफिसर।
0: अरे वाह, तालियां बजाओ सब बच्चे, तालियां बजाओ। अब आपका नाम बताओ?
7: वैदिक विश्वकर्मा।
0: वैदिक, तो वैदिक कौन सी क्लास में हो आप?
7: सिक्स।
0: तो आप क्या बनना चाहोगे बड़े होके?
7: नेवी
0: में जाओगे। अरे वाह, बहुत अच्छा। अब आप बताओ बेटा आपका नाम?
8: मेरा नाम रक्षिता राठौर है और मैं फिफ्थ क्लास में पढ़ती हूँ।
0: अच्छा,
8: मैं बड़ी होके पुलिस IPS ऑफिसर बनना चाहती हूँ।
0: अरे वाह, तो हमारे यहाँ पे तो बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट भी हैं जो बहुत पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं ना।
9: यस
0: बिल्कुल। तो अब हम सब मिलके हमारे जो दोस्त हैं जो हमारे कार्यक्रम से जुड़े, उनको क्या सुनाएंगे? कौन सुनाएगा सबसे पहले पोयम? हाँ, तो आपका नाम क्या होता है?
8: रक्षिता।
0: अब रक्षिता कौन सी पोयम सुनाओगे बेटा आप?
8: हाथी राजा कहाँ चले, सोन हिला के कहाँ चले, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, आओ बैठो कुर्सी पर, वो कुर्सी बोली चटर पटर।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी कविता सुनाई। अब कौन सुनाएगा?
10: मैं। तितली उड़ी उड़ ना सकी, तितली उड़ी उड़ ना सकी, बस मचड़ी सीट ना मिली तो रोने लगी, सीट ना मिली तो रोने लगी, ड्राइवर ने बोला आजा मेरे पास, ड्राइवर ने बोला आजा मेरे पास, तितली बोली हट बदमाश मेरा घर है पास।
0: अरे वाह, अरे वाह, तितली बहुत पसंद है आपको?
10: हाँ।
0: अच्छा, क्यों पसंद है वो आपको?
10: क्योंकि वो
0: उड़ती है। अच्छा, और उसके कलरफुल पंख होते हैं ना?
10: यस।
0: हाँ, तो वो देखने में बहुत अच्छी लगती है। अच्छी लगती है ना? हाँ, तो हम लोगों को भी बिल्कुल कलरफुल रहना है ना?
1: यस।
0: हंसी खुशी के साथ रहना है। अब कौन सुनाएगा अपनी पोयम?
8: मेरा नाम वन्या विश्वकर्मा है। मैं मीठा मीठा ताजा आम सुनाऊंगी, मीठा मीठा ताजा आम, सभी फलों का राजा आम, जो जो चाहे वो खाए आम, सब का जी ललचाए आम।
0: अरे वाह, और अभी तो हम लोग देख रहे हैं ना कि इस मौसम में क्या आ रहे हैं?
1: आम।
0: अरे किस किस को आम पसंद है?
1: मुझे।
0: तो आप आम कैसे खाते हो? काट के खाते और चूस के भी खाते हो?
1: हाँ।
0: और उसका और क्या क्या बनता है?
1: मैंगो जूस,
0: मैंगो शेक। किस किस को पसंद है?
9: मैंगो आइसक्रीम।
0: अरे वाह, तो सभी को पसंद है?
1: Yes.
0: अरे वाह, सबको पसंद है, मतलब फल फ्रूट आप लोगों को सबको पसंद है। तो पता है इसके फायदे क्या क्या होते हैं?
9: Yes. उससे सेहत अच्छी रहती है।
0: बिल्कुल। और क्या होता है?
9: बॉडी भी अच्छी बनती है।
0: बिल्कुल। तो हम लोगों को सबको फल फ्रूट, जो मौसमी फल फ्रूट होते हैं, उनको खाना चाहिए।

0: आज के फुलवारी कार्यक्रम में हमारे साथ नन्हे नन्हे दोस्त जुड़े हैं, जो कि आज हमें कुछ ना कुछ नई चीजें सुनाएंगे, कुछ ना कुछ नई चीजें सिखाएंगे और हमसे ढेर सारी बातें करेंगे। तो तैयार हो बच्चों?
1: यस!
0: तो सबसे पहले

0: निकालो।
1: बिल्कुल। तो अब आप सभी को पता है क्या कि इस 10 मई को क्या आने वाला है? कौन सा?
2: मदर्स डे।
1: मदर्स डे, अच्छा। और किस किस को पता है? यही आने वाला है ना। तो आप लोग क्या कर रहे हो अपनी मम्मी के लिए इस मदर्स डे पे? कुछ कर रहे हो स्पेशल?
2: मम्मी के मम्मी है ना, उनको है ना गिफ्ट देंगे।
1: अरे वाह। और आप क्या करोगे?
3: हम मम्मी के ऊपर कुछ सुनाना चाहते।
1: अच्छा, तो आप सुनाओ।
3: माँ मेरी अच्छी माँ, माँ मेरी सच्ची माँ, प्यार करती बहुत, मीठा बोलती हरदम, साथ में खेलती कहानियाँ करती, कभी ना डांटती, प्यारी सी माँ मेरी, फूलों से सुंदर, चंदा सी शीतल, सबसे बड़ी मेरी दोस्त मेरी माँ।
1: अरे वाह, बिल्कुल। सबसे अच्छी दोस्त कौन होती है हमारे घर में?
2: माँ।
1: अच्छा, कौन बताएगा क्यों होती है वो सबसे अच्छी दोस्त?
2: क्योंकि वो अपने को है ना
1: प्यार भी करती है
2: और है ना अच्छे से भी रखती है, खाना भी देती है, सब करती है।
1: अच्छा, और क्या करती है मम्मी? डांटती भी है। तो पता है आपको डांटता कौन है जो हमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है ना?
2: मम्मी
1: करती है। तो वो डांटती भी है। और वो क्यों डांटती है? ताकि हम लोग
2: अच्छे
1: के लिए। बिल्कुल। आप लोग तो बहुत समझदार बच्चे हो सारे, है ना? और क्या करती है मम्मी? हमें अच्छी अच्छी
2: चीजें बना के खिलाती है
1: और सीख भी सिखाती है और
3: दिलाती भी है।
1: हाँ,
2: दिलाती है।
1: कपड़े भी दिलाती है। और क्या करती है?
4: घूमने भी ले जाती है।
1: और
3: प्यार भी करती है।
1: सुबह सुबह कितनी जल्दी उठती है हमारी मम्मी? उठती है ना? आप घर में सभी देखते होंगे ना कितनी जल्दी उठती है।
2: सुबह जल्दी उठ के हमारा लंच बनाती है।
1: अरे वाह, बनाती है ना, सभी की मम्मी बनाती है ना। तो फिर आप हम लोगों को क्या करना चाहिए हमारी मम्मी के लिए? गिफ्ट देना चाहिए। लेकिन पता है, हमेशा अपन उनको कुछ चीज दें वही गिफ्ट नहीं होती है। हम उनका मम्मी के साथ जो काम करती है उसमें अगर हम उनका साथ दे, उनके पास बैठे, उनसे अपनी जो भी बातें होती ना दिन भर की वो शेयर करें, ये सब भी करना
2: अच्छा फील होता है।

0: गीता सुनाना चाहेगा? सुनाओ चलो फिर आप।
1: भारत प्यारा देश हमारा, हम उसके ही नन्हे बच्चे, कितने सच्चे कितने अच्छे है सबसे ही प्रेम हमारा, भारत प्यारा देश हमारा।
0: अरे वाह, भारत के ऊपर बहुत अच्छी कविता बोली हमारे इन बच्चे ने। सब ताले बजाए ना, अच्छी लगी सबको?
2: यस।
0: अब आप सुनाओ।
3: मेरा नाम तंदेश है, मैं एक पोयम बोलना चाहती
0: हूँ। हाँ बोलो बेटा।
3: आज मंगलवार है, चूहे को बुखार है, चूहा गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने लगाई सुई, चूहा बोला उई उई उई।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी कविता सुनाई। जब हम छोटे थे ना, हम भी यही वाली कविता बोलते थे। आप लोग भी बोलते हो? अरे वाह, अब आप सुनाओ।
4: मांगने पर जहाँ पूरी हर मन्नत होती है, माँ के पैरों में ही तो वो जन्नत होती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात, सही बताया ना इन्होंने। मम्मी के पैरों में
2: जन्नत होती है।
0: मम्मी का हमेशा
2: हाथ बताना है,
0: उनका हमेशा साथ देना है, अपने बड़ों की सबकी रेस्पेक्ट करनी है। तो अब बेटा आप क्या सुनाओगे?
5: मैं माँ के ऊपर एक कविता सुना।
0: बिल्कुल।
5: मेरी माँ है कितनी प्यारी, सबसे सुंदर सबसे न्यारी, मीठी मीठी लोरी गाती, लोरी गाकर मुझे सुनाती, मुझे पढ़ाती मुझे लिखाती, पहले खाना मुझे खिलाती, सच बोलना मुझे सिखाती, सच्ची राह मुझे दिखाती। मेरी माँ है कितनी प्यारी, सबसे सुंदर सबसे न्यारी।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी कविता सुनाई। तो अब सब लोग इस मदर्स डे पे अपने मम्मी के लिए कुछ ना कुछ करोगे ना? बिल्कुल, बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते हो आप लोग तो हमारे सारे दोस्तों को। गर्मी की छुट्टियां सबकी लगने वाली है ना?
2: लग गई।
0: अरे वाह,
6: मेरे एक पेपर और है।
0: अच्छा आपके एक पेपर हो रहे हैं और
6: हमारी तो लग गई।
0: अच्छा अच्छा, आपकी भी लग गई। तो आप गर्मी की छुट्टियों में आप सभी क्या करते हो?
2: घूमने जाते हो।
0: हाँ,
6: और खेलने भी जाते हैं और मस्ती भी करते हो।
0: तो कौन कौन कहाँ कहाँ पे जाता है खेलने?
6: ग्राउंड में और पार्क में
0: और
5: कई बाहर
6: नानी के यहाँ।
0: अच्छा, नानी के यहाँ पे भी जाते हो
6: और
0: घूमने भी जाते हो। अच्छा, आप बच्चों में से मुझे कौन ये बताएगा कि उनको, जैसे कि कोई बच्चे होते हैं ना जिनको गाड़ी चलाना अच्छा लगता है, साइकिल चलाना अच्छा लगता है, किस किस को साइकिल चलाना अच्छा लगता है?
2: मुझे।
0: और सड़कों पे अपन चलते तो आप लोगों को पता है किन किन चीजों का अपन को सावधानी रखनी चाहिए?
6: गाड़ी,
0: हाँ,
6: और बाइक
0: जी,
5: हमें फोन पे बात नहीं करनी चाहिए।
0: अरे वाह, बिल्कुल बहुत सही बात बोली है बेटे ने।
6: और हेलमेट भी लगाना चाहिए।
0: हेलमेट कब लगाना चाहिए? हेलमेट
6: जब अपन बाइक पे चल रहे हैं।
0: हाँ, और साइकिल पे चले तब हमें क्या बात का ध्यान रखना चाहिए बेटा?
5: क्या हमारा ध्यान सामने हो, साइकिल चलाने पे हो, किसी की बात पे ना हो।
0: बिल्कुल। और
5: कार चलाते समय हमें सीट बेल्ट पहन के रखनी चाहिए।
0: अरे वाह, बिल्कुल सही बात बताइए। और हम लोगों को और क्या क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए जब हम रोड पे चले? तो जब हम, या तो हमें रोड पे छोटे बच्चों को

0: चलना ही नहीं चाहिए, अकेले नहीं चलना चाहिए ना,
1: नहीं
0: ध्यान रखना चाहिए ना इस बात, बिल्कुल पार भी नहीं चलना करना चाहिए। और अगर हम लोग स्कूल जाते हैं या कहीं पे भी अकेले घूमने जाते हैं, पहली बात तो हमें जाना ही नहीं जाना चाहिए। फिर भी अगर हम जाते हैं स्कूल से आते टाइम, बस से अगर उतर रहे हैं, रोड को क्रॉस करते हैं, तो किस बात का ध्यान रखना चाहिए?
2: ट्रैफिक का। और उधर से कोई आ रहा है तो रुक के रहना,
3: और हमें रोड को पार जेब्रा क्रॉसिंग से करना चाहिए।
0: बिल्कुल। और
4: हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई आसपास से आना गाओ बाइक या कार।
0: बिल्कुल। हमेशा हम लोगों को सड़क के किनारे यानी कि सर्विस लेन, आजकल अपन देखते हैं ना सर्विस लेन पे सब लोग पैदल पैदल चलते, तो हमें उस लाइन पे ही चलना चाहिए। हाँ, और जब भी हम लोग रोड क्रॉस करें तो उसमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आगे पीछे दाएं बाएं सब चीजों का
5: ध्यान रखना चाहिए,
0: जिससे क्या होएगा हम लोगों की सुरक्षा होगी और हम सेफ घर पहुंचेंगे ना। आप लोग देते हो ना आजकल कितने सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं, वो क्यों होते हैं? एक तो मोबाइल पे बहुत सारे लोग अपना ध्यान मोबाइल पे रखते ना है ना,
1: और कोई हेलमेट भी नहीं पहनता।
0: अरे बिल्कुल सही बात, हम कभी भी अगर साइकिल भी चलाए तो साइकिल का भी हेलमेट होता है कि नहीं होता है? होता है ना, तो फिर उस हेलमेट को हमें लगा के
1: और हमेशा और है ना धीरे धीरे चलाना ही चाहिए,
0: धीरे धीरे चलाना चाहिए। और क्या करना चाहिए?
1: सतर्क रहना चाहिए।
0: तो फिर बच्चों आप लोग भी इस चीज का ध्यान रखोगे ना?
5: Yes.
0: और क्या क्या करना चाहिए बताओ? हम लोग बड़े बड़े शहरों में गए होंगे ना बहुत सारे।
5: Yeah.
0: आप लोगों ने देखा है बड़े शहरों में अपन लोग जाते हैं तो वहाँ पे एक जगह अपनी गाड़ी रुक जाती है जहाँ पे तीन बत्ती होती है।
5: Yeah.
0: किस किसने देखी हो तीन बत्ती?
1: मैंने।
0: सबने देखी है।
5: Yeah.
0: Yes. अच्छा, तो तीन बत्ती का कलर कौन बताएगा आप लोगों में से?
1: हरा, ऑरेंज और रेड।
0: अच्छा, तो मैं बताऊँ आपको कौन कौन से कलर होते हैं?
1: हाँ।
0: ग्रीन होता है एक, तो एक रेड होता है और एक येलो होता है। कौन सा होता है?
5: येलो।
0: अच्छा, तो कौन बताएगा कि ग्रीन कलर किस चीज का होता है?
4: ग्रीन कलर
1: आगे चलने का।
0: और रेड कलर किस चीज का होता है?
5: रुकने का।
0: अरे वाह, सारे बच्चे बहुत समझदार हो, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सभी अपने आप बता देते हो, तो आप सबके लिए एक बार ताली तो बनती है ना। अरे वाह, सारे बच्चों के लिए ताली, क्योंकि हमारे सारे बच्चे बहुत अच्छा बता रहे हैं। और उसके बाद में येलो कलर किस चीज का रहता है? जो सावधान रहने का भी होता है, और जैसे ही हम लोगों की गाड़ी रुकी रहती है ना, तो जैसे येलो कलर की बत्ती जलती है तो उसका मतलब सिग्नल ये होता है कि हम लोग अब चलने के लिए
1: तैयार
0: है, अब हमारी बारी चलने के लिए आने वाली है। तो हम भी कभी ट्रैफिक पे अगर कहीं जाए तो इन तीनों बत्तियों का
1: ध्यान रखें।
0: और वहीं अगर हम लोग देखते हैं ना कि सड़क पार कर रहे हैं हम लोग, तो हमें आंख और कान तो इनको हमेशा
1: खुले रखने चाहिए।
0: क्या करना चाहिए?
5: खुले।
0: हाँ, कानों से क्या करना चाहिए? हमें सुनना चाहिए कि कहीं हमारे आसपास कोई हॉर्न तो
1: नहीं
0: बज रहा है ना। और हाँ, और आंखों से क्या करना चाहिए?
5: देखना चाहिए।
0: क्या क्या देखना चाहिए?
1: कि कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है।
0: बिल्कुल,
4: वो तीन सिग्नल भी,
0: कि हमारे आसपास कोई चीज जल रही है। पहले तो हम लोगों को क्या देखना चाहिए कि हम बिल्कुल सड़क के किनारे किनारे चले है ना, आसपास मतलब सड़क पार करें तो आगे पीछे दाएं बाएं हर चीज का
1: ध्यान
0: रखें। तो अब आप लोगों में से गाना सुनना किसको पसंद है? सबको पसंद है।
5: Yes.
0: अच्छा, तो आप सभी हम कौन सा गाना सुनना पसंद करोगे?
4: कोई मोटिवेशनल गाना।
0: कौन सा?
4: हर हर मैदान फतेह।

0: फतेह।
1: अच्छा तो बच्चों आप सभी ने ये सॉन्ग सुना, कैसा लगा आप सबको ये गीत?
2: बहुत अच्छा
1: लगा ना। अच्छा तो इससे क्या प्रेरणा मिल रही, क्या सीख मिली आपको?
3: हमें हमारी मंजिल तक किसी भी हालत में पहुंचना चाहिए, उसे हासिल करना चाहिए।
1: क्यों? अच्छा कैसे कर सकते हो उसको हासिल आप? लेकिन
3: बिना रुके, मतलब
2: मेहनत से।
1: अच्छा और ताकत से,
2: हौसले से
1: है ना, करना चाहिए ना।
2: हाँ
1: तो क्या क्या आपको, सब लोग जो जो बनना चाहते हो उसमें अपनी मेहनत और अपनी ताकत और अपने जोश के साथ तैयारी करोगे तो वो चीज आपको
2: मिलेगी
1: ना। तो अब बच्चों आप क्या क्या सुनाना चाहोगे?
2: सॉन्ग।
1: तो कौन कौन सुनाएगा?
2: मैं।
1: तो सबसे पहले आप सुनाओ।
3: लहरा।

0: बहुत अच्छा गाना। अब कौन सुनाएगा
1: पहले?
2: ये तूने मेरे फुर्सत के दिल में इतनी बरकत की, ये तूने क्या किया, चैन से मारा मारा मैं
3: बिछड़ा,
2: ये तूने क्या किया, सारी दुनिया से जीत के मैं आई हूँ इधर, तेरे आगे बिहारी पिया, तूने क्या सर

0: मैं दिल का राज कहती हूँ कि जब जब सांसें लेती हूँ तेरा ही नाम लेती हूँ, ये तूने क्या किया।
1: अरे वाह, अब गाना कौन सुनाएगा?
2: पापा की है लाडली, मम्मा की है दुलारी, एक छोटी सी परी है ये तो हमारी। मम्मा की है लाडली, पापा की है दुलारी, एक छोटी सी परी है ये तो हमारी। बाबा मैं तेरी बल का टुकड़ा हूँ, तेरे दिल का दहलीज ऊंची है ये पार करा दे, मुड़ के ना देखो जिनवा दिलबरो, मुड़ के ना देखो जिनवा।
1: अच्छा गाना सुनाया ना। हाँ,
2: यस
1: आपको। अच्छा तो बच्चों, तो आप सब
2: यस,
1: लोगों को प्रोग्राम कैसा लगा आज का?
3: बहुत अच्छा।
1: बहुत अच्छा लगा। क्या क्या सीखा आज प्रोग्राम में आपने?
4: हमें जो बनना है हमें उसे किसी भी हालत में पाके रहना चाहिए, पूरी लगन मेहनत।
1: बिल्कुल। और
2: रोड पर है ना, अच्छे से देखकर चलो और हेलमेट लगा के चलो।
1: बिल्कुल। और
2: हमको ध्यान से गाड़ी चलाना चाहिए
1: बिल्कुल।
5: और मदर स्ट्रेप पे कुछ बनाना चाहिए।
6: क्रॉस करते समय हमें जेब्रा क्रॉसिंग से रोको।
1: बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों को बताया था ना कि क्या है आज?
3: मदर्स
1: डे। तो हमारी जो भी मम्मी ये कार्यक्रम सुन रही है उनको सब क्या बोलेंगे? हम लोग भी अब विदा लेना हमारे बाकी दोस्तों से।
3: yes.
1: तो सब क्या बोलेंगे?
3: बाय।
1: और
3: जय हिंद।

नन्हे मुन्ने बच्चे भी सुन रहे थे कार्यक्रम। प्रस्तुति मेघना वैष्णव की थी।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: महिलाओं में होने वाले सबसे आम कैंसर सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, अब बचाव संभव है।
3: अब ये कैंसर टाला जा सकता है, बस एक सही कदम,
2: सही समय पर। अपनी 9 से 14 वर्ष की बेटियों को HPV टीका जरूर लगवाएं और उन्हें स्वस्थ, सुरक्षित और लंबी उम्र का आशीर्वाद दें।
3: ये टीकाकरण सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क किया जा रहा है।
2: आइए मिलकर बेटियों के स्वास्थ्य की रक्षा करें और सर्वाइकल कैंसर मुक्त भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं।
3: मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ द्वारा जनहित में जारी।

0: आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: यह आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया। समग्र बौद्धिक विकास पर आज नई दिल्ली में परामर्शदाता सम्मेलन का आयोजन। प्रदेश भर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत ने अदालत में राजीनामे के जरिए लगभग 47 लाख मामलों का निस्तारण किया गया। और मातृत्व दिवस पर आज प्रदेश भर में कई कार्यक्रम।

0: समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि श्री सुब्रमणि पदभार ग्रहण करने के साथ ही सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी काम करेंगे। केंद्र ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को अगला नौसेना प्रमुख भी नियुक्त किया है। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि भारतीय सेना के अनुभवी और प्रतिष्ठित अधिकारी हैं। वे वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत है। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में काम कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लेंगे और आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वे वहां जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री का हैदराबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करने का कार्यक्रम है। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की है। समग्र बौद्धिक विकास पर आज नई दिल्ली में परामर्शदाता सम्मेलन होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से ये आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों में शैक्षणिक विकास के साथ साथ भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आरोग्य को बढ़ावा देना है। बोर्ड ने बताया कि इस परियोजना के दूसरे चरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 60 से अधिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य और परामर्शदाता भाग लेंगे। ये परियोजना इस साल जुलाई से 6 से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए लागू की जाएगी। इसके तहत कल्याण मॉड्यूल, सहकर्मी सहायता गतिविधियां और अभिभावक सहभागिता कार्यशालाएं शामिल हैं। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भिवाड़ी में जल भराव की समस्या के निवारण के लिए 34 एमएलडी का एसटीपी प्लांट तैयार हो गया है। इसका उद्घाटन इसी सप्ताह मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा करेंगे। इसके अलावा सीईटीपी से पानी की निकासी के लिए पाइपलाइन डालने का काम भी जल्द शुरू होगा और नेशनल हाईवे 919 की समस्या का भी समाधान जल्द किया जाएगा। श्री यादव कल अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे जहां भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार हर क्षेत्र में प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और वे अलवर जिले के विकास के लिए पुरजोर प्रयास करेंगे।
1: भिवाड़ी की जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है पानी की है। हमने 34 एमएलडी का जो संयंत्र है वेस्ट पानी का उसको कंप्लीट कर लिया है और माननीय बालकनाथ जी के साथ जो एक काम पूरा हुआ है इसी हफ्ते में मुख्यमंत्री जी को बुला करके उसका उद्घाटन करेंगे। पानी को निकालने के लिए जो पाइपलाइन का विषय है उसकी भी पैसा आवंटन करा दिया है और उसका भी उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी से करा के ये काम हम करेंगे। और जो हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी है उसका भी हम लोग काम कर रहे हैं, वो भी डीपीआर तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहला काम तो इसका 2/3 हिस्सा तो अब उद्घाटन हो जाएगा, 1/3 हिस्से का टेंडर हो जाएगा और बाकी बचा हुआ एनएचआई से हम जल्दी से जल्दी पूरा कराने का काम।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज अजमेर के एक दिन के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे पुष्कर क्षेत्र के कडेल गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित ग्राम विकास चौपाल में भाग लेंगे। चौपाल में श्री शर्मा ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याओं और सुझावों की जानकारी लेंगे। मुख्यमंत्री का कल गांव का भ्रमण कर स्थानीय व्यवस्थाओं और विकास कार्यों के अवलोकन का भी कार्यक्रम है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश भर में आयोजित इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत प्रदेश में राजीनामे के जरिए कुल 46,91,311 मामलों का निस्तारण किया गया। इनमें 7,15,00,000,000 रुपए से अधिक के अवार्ड जारी किए गए। लोक अदालत में राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने उपस्थित पक्षकारों को संबोधित करते हुए

0: कहा कि इस अदालत के माध्यम से ऐसे मामलों को तय किया जाता है जिससे पक्षकार का समय और धन दोनों बचाया जा सके। कई पक्षकारों के बीच सिविल और छोटे आपराधिक प्रवृत्ति के मुकदमे आपसी राजीनामे से सुलझाए जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा का स्थान रहा, जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। प्रदेश भर में आज मातृत्व दिवस उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। ये दिन माताओं के योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मातृत्व दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि माँ सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि ममता, त्याग और समर्पण की सबसे पवित्र भावना है। उन्होंने कहा कि माँ हमारे जीवन की पहली गुरु होती है, जो हमें संस्कार, साहस और सही मार्ग पर चलना सिखाती है। मातृत्व दिवस पर पेश है एक रिपोर्ट।
1: आज मदर्स डे के अवसर पर पूरा प्रदेश अपनी माताओं के सम्मान में भावनाओं के रंगों से सराबोर है। कहीं बच्चे अपनी माँ को उपहार दे रहे हैं, तो कहीं माँ के सम्मान में कार्यक्रम और समारोह रखे जा रहे हैं। माँ वह कविता है जिसे शब्दों में पूरा नहीं लिखा जा सकता। वह घर की धड़कन है जो अपने सपनों को चुपचाप बच्चों की मुस्कान में बुन देती है। उसकी दुआएं जीवन की हर कठिन राह को आसान बना देती हैं। आज का दिन केवल उत्सव नहीं, बल्कि उस अनकहे प्रेम को महसूस करने का अवसर है जो माँ हर दिन बिना किसी अपेक्षा के हमें देती है। आइए इस विशेष अवसर पर हम अपनी माताओं को केवल धन्यवाद ही नहीं, बल्कि सम्मान, समय और अपनापन भी दें। प्रदेश की सभी माताओं को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। समाचार कक्ष से ज्योति पारीक।
0: प्रदेश में मौसम के दो रूप देखने को मिल रहे हैं। पश्चिमी जिलों में लगातार मौसम शुष्क बने रहने से भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित है। वहां अधिकतम तापमान एक बार फिर 45 डिग्री तक पहुंच गया है। कल बाड़मेर में पारा 46 डिग्री सेल्सियस रहा। जोधपुर, बीकानेर, फलौदी और चित्तौड़गढ़ में पारा 43 डिग्री से ज्यादा रहा। वहीं कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं बादल गरजने के साथ आंधी चली और बारिश हुई। नागौर के मेड़ता में 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य के अधिकांश भागों में आगामी दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी के आसार हैं। हालांकि एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से कल और परसों बीकानेर संभाग, शेखावटी क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर संभाग के उत्तरी भागों में कहीं कहीं आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है।
2: आगामी 2-3 दिनों में और 1-2 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने और पश्चिमी राजस्थान में अगले 4-5 दिन हीट वेव का दौर दर्ज होने की प्रबल संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान के भी ज्यादातर इलाकों में अगले 2-4 दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इसके अलावा केवल उत्तर पूर्वी और उत्तरी राजस्थान में 11, 12 और 13 मई को मेघ गर्जन और कहीं कहीं आंधी चलने की संभावना है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया। समग्र बौद्धिक विकास पर आज नई दिल्ली में परामर्शदाता सम्मेलन का आयोजन। प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामे के जरिए लगभग 47 लाख मामलों का निस्तारण किया गया। और मातृत्व दिवस पर आज प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब आपको लिए चलते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा मुंबई के कार्यक्रमों की ओर।

0: आखिरी फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना सोना महापात्रा की आवाज में। इस गीत को राम संपत ने सुरों में ढाला है।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था। उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से
3: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी इस परिंदे में जान बाकी और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

बाजीराव मस्तानी फिल्म का ये गीत है पंडित बिरजू महाराज और श्रेया घोषाल की आवाजें। सिद्धार्थ गरिमा ने इसे लिखा है और इसकी धुन बनाई है टबी पारेख, साहिल, प्रीतेश और संजीव सेन ने।

चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए सुनिए मोनाली ठाकुर का गाया ये गीत दम लगा के है शाह। इस फिल्म से वरुण ग्रोवर ने इस गीत को लिखा है, अनु मलिक की धुन।

फ्लाइंग जेट, इस फिल्म का गीत सुनिए सुमिधा कर्मे की आवाज में। प्रिया सरारिया का लिखा यह गीत, सचिन जिगर की आवाज।

0: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
2: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना। विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
2: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी।
3: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
4: और इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न करने की नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था, एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

0: सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। और देखिए ना, चारों तरफ फूल खिले हैं और मत भरी रुत जवान है। इन मीठी स्वर लहरियों की तरंगों पर सवार होकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी आध्यात्मिक यात्रा पर चल पड़े हैं।
1: मिलन को जा

के फनकार कार्यक्रम में आज बातें बहुत ही मीठे गायक, विरल और दुर्लभ संगीतकार और अद्भुत व्यक्तित्व पंकज मलिक की।

0: बेटा।
1: पंकज मलिक का जन्म 10 मई 1905 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता का नाम था मणिमोहन मलिक और माता का नाम मनमोहिनी था। उनके पिता पारंपरिक बंगाली संगीत में खास दिलचस्पी रखते थे। पंकज मलिक ने दुर्गादास बंदोपाध्याय के संरक्षण में भारतीय शास्त्रीय संगीत की अपनी शुरुआती तालीम ली। बहुत कम उम्र में उन्होंने ख्याल, ध्रुपद, टप्पा और दूसरे शास्त्रीय संगीत का ज्ञान हासिल कर लिया था। इसके बाद उन्होंने एडमिशन लिया कोलकाता यूनिवर्सिटी के स्कॉटिश चर्च कॉलेज में। अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। उनका संपर्क दीनेंद्रनाथ टैगोर से हुआ, जो कवींद्र रवींद्र के भतीजे थे। उन्होंने दीनेंद्रनाथ टैगोर से रवींद्र संगीत सीखा। बांग्ला भाषियों में रवींद्रनाथ टैगोर की कविताओं को लोकप्रिय बनाने में पंकज मलिक के गाए गीतों का बड़ा योगदान माना जाता है। पंकज मलिक आकाशवाणी से जुड़ने वाले शुरुआती कलाकारों में से एक थे। पंकज मलिक का फिल्मी सफर मूक फिल्मों के दौर से ही शुरू हो गया था, लेकिन उन्हें सही पहचान सन 1930 के दशक में बोलती फिल्मों की शुरुआत से मिली थी। हिंदी और बांग्ला दोनों भाषाओं को मिलाकर उन्होंने करीब 100 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया और कई फिल्मों में उन्होंने अभिनय भी किया। पंकज मलिक के संगीत निर्देशन वाली शुरुआती हिंदी फिल्मों में से एक थी धरती माता। ग्रामीण भारत के जीवन पर आधारित इस फिल्म में किसानों की समस्याओं और उन मुसीबतों से जूझने का रास्ता दिखाया गया था। पंकज मलिक ने इस फिल्म में बेहतरीन संगीत दिया था। आइए ये गाना सुनिए।

संगीत समीक्षकों ने फिल्म धरती माता के संगीत की बहुत प्रशंसा की। सन 1938 में शरद चंद्र के उपन्यास पर आई फिल्म बड़ी दीदी, इस फिल्म में पंकज मलिक का संगीत था। सन 1939 पंकज मलिक ने फिल्म दुश्मन में संगीत दिया। इस फिल्म में पंकज मलिक के संगीत निर्देशन में कुंदनलाल सहगल ने ये गाना गाया।

0: भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास के सबसे अद्भुत गीतों में इस गाने का शुमार होता है। सन 1939 फणी मजूमदार ने बनाई बंकिम चंद्र के उपन्यास पर आधारित फिल्म कपाल कुंडला, और इस फिल्म में पंकज मलिक ने स्वयं गाया ये गाना।
1: पिया मिलन को जाना,

सन 1940 लीला देसाई के अभिनय वाली फिल्म नर्तकी में आया पंकज मलिक का संगीत। इस फिल्म के गाने पंडित आरजू ने लिखे थे। खास तौर पर इस गाने को अक्सर ही विविध भारती पर सवेरे सवेरे सुना जाता है।

सन 1940 में आई फिल्म जिंदगी। इस फिल्म के गीतकार थे केदार शर्मा। पंकज मलिक के संगीत निर्देशन में इस फिल्म में कुन्नलाल सहगल ने ये गाना गाया था।

0: आज इतने बरस बाद भी इस गाने का जादू उतरा नहीं है। राग यमन पर आधारित इस गाने को स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर बहुत पसंद करती रहीं और जब आगे चलकर उन्होंने श्रद्धांजलि नामक अपना एल्बम तैयार किया तो पंकज मलिक को नमन करते हुए इस गाने को दी अपनी आवाज।
1: मैं

इसी फिल्म में एक और बेमिसाल गाना था, हिंदी फिल्म संगीत की एक शुरुआती लोरी, कुंदनलाल सहगल की आवाज, और इस गाने को भी आज तक बहुत याद किया जाता है।

सन 1941 फिल्म आई डॉक्टर, और इस फिल्म में पंकज मलिक संगीतकार और अभिनेता के रूप में शामिल थे। इस फिल्म का ये गीत

पंकज मलिक भारतीय फिल्म संगीत जगत के इतिहास के एक ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने पाश्चात्य और भारतीय संगीत का सुंदर संयोजन किया। पंकज मलिक ने पश्चिमी वाद्यों का कुशल इस्तेमाल किया, हालांकि बाद के दौर के संगीतकारों ने धड़ल्ले से पश्चिमी साजों का इस्तेमाल किया, लेकिन पंकज मलिक ने जिस तरह से उन्हें अपने संगीत में संयोजित किया है वो अद्भुत है। सन 1944 में आई न्यू थिएटर्स की फिल्म माय सिस्टर, इस फिल्म में पंकज मलिक के संगीत निर्देशन में कुंदन लाल सहगल ने गाया, दो नैना मतवाले तिहारे हम पर जुल्म करें। इस गाने को सुनकर आज भी आपकी गर्दन थिरकने लगेगी।

सन 1952 में न्यू थिएटर्स की फिल्म यात्रिक आई। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की रचना पर आधारित इस फिल्म के गानों में पंकज मलिक का योगदान था।

पंकज मलिक ने कुछ गैर फिल्मी रचनाएं भी गाईं, जैसे उनका गाया राग यमन कल्याण पर आधारित ये भजन सुनकर आपके मन में आस्था का दीपक जल उठेगा।

पंकज मलिक लंबे समय तक आकाशवाणी कोलकाता से जुड़े रहे और पूजा के दिनों में महिषासुर मर्दिनी नामक कार्यक्रम का संचालन करते रहे। एक झलक सुनिए।

भारतीय डाक विभाग ने सन 2006 में पंकज मलिक की जन्मशती पर एक विशेष डाक टिकट उनकी याद में निकाला था। 19 फरवरी 1978 को पंकज मलिक ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। रह गया तो बस उनका दिव्य स्वर, उनके बनाए गाने और उनकी मधुर स्मृतियां। गायक और संगीतकार पंकज मलिक को हमारा विनम्र नमन।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज जाने माने गायक और संगीतकार पंकज मलिक पर केंद्रित था। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से। प्रमिला दातार सुनहरी यादें नामक एक ऑर्केस्ट्रा से जुड़ी रही हैं और उन्होंने न जाने कितनी भाषाओं में गीत गाए हैं। ये है कन्नड़ गाना।

0: और ये मराठी लावणी।
1: पाडाला पिकलाय आंबा, आला बाय पाडाला पिकलाय आंबा, हो नीट बघ पाडाला पिकलाय आंबा।
0: और ये हिंदी गाना।
1: हो पंख होते तोड़ आती रे।
0: तो चलिए सुनते हैं प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत का पहला भाग।

0: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनहरी यादें। जी हां, सुनहरी यादें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी जो मेहमान हैं उनके नाम से ही ये शब्द जुड़े हुए हैं, सुनहरी यादें। दोस्तों, याद कीजिए वो जमाना जब फिल्मों के अलावा जब हम घर से बाहर निकलते थे मंचीय मनोरंजन को ढूंढने के लिए, तो मंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले फिल्मी गीतों का जो कार्यक्रम होता था जिसे हम ऑर्केस्ट्रा के नाम से जानते थे, ऐसा ही एक नामचीन ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था 1975 के जमाने से। और वो जो ऑर्केस्ट्रा था, वो जो वाद्य वृंद था, उसका नाम था सुनहरी यादें। जी हाँ, आप में से कई श्रोताओं ने इसे पहचान लिया होगा हमारी मेहमान कौन है। तो स्वागत करते हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका और मंच गायिका प्रमिला दातार जी का। प्रमिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार मेरे सब विविध भारती के दर्शकों को, मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। और आज यहाँ पे आने का मुझे मौका मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं हमारे सुनने वालों से जुड़ जाऊंगी।
0: जी,
1: हालांकि 25 साल प्रोग्राम करने के बाद बहुत सारे लोग, मतलब जो आके बोलते हैं आपका शो देखा, मुक्त इतने साल पहले आपका शो देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: हाँ।
1: और उससे ज़्यादा खुशी आज यहाँ आने से मुझे मिली है कि और दर्शकों तक मैं पहुँच जाऊँगी और गाने भी पेश कर पाऊँगी।
0: क्या बात है,
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: प्रमिला जी, सुनहरी यादें की शुरुआत जब हुई थी, असल में आपके करियर की शुरुआत उससे भी पहले हुई थी।
1: जी,
0: तो हम तब से बात शुरू करें।
1: जी,
0: कि वो पहला कौन सा मौका था कि आपको फिल्म इंडस्ट्री के लिए गाने का मौका मिला?
1: फिल्म इंडस्ट्री के गाने का, तब के बहुत ही मशहूर संगीतकार वसंत देसाई जी थे, सी रामचंद्र थे
0: जी,
1: उनके पास मैंने मराठी फिल्मों में गाने गाए।
0: हाँ।
1: और फिर थोड़ा सा मेरा नेचर ऐसा था कि किसी के पास जाए और मुझे आप काम दे दे या कोई मुझे गाना दे दे, ये मेरा नेचर नहीं था।
0: हाँ, हाँ, हाँ।
1: तो मेरे हस्बैंड को भी वो मालूम था कि ये ऐसी नहीं बनने वाली। तो एक बहुत अच्छी यादगार है कि मराठी ड्रामा जो हमारे हैं उसमें मुझे काम करने के लिए पूछा गया था। वो प्रभाकर पणशीकर जी हैं, राजा राम शिंदे जी थे। तो मैंने मेरे हस्बैंड से पूछा कि मैं करूं क्या, तो बोले तेरा मन है तो कर, लेकिन तुम अपना कुछ शुरू करो तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा।
0: वाह।
1: तो वो हिसाब से फिर सोचते सोचते भी सुनहरी यादें, फिर नाम क्या रखे।
0: हाँ।
1: तो एक बहुत अच्छे पत्रकार थे, अभी वो दिल्ली में, उनका नाम नहीं मुझे याद, अशोक जैन करके।
0: जी जी जी।
1: तो उन्होंने ये नाम का सुझाव दिया कि आप ज़्यादातर पुराने गाने लोग पसंद करते हैं, तो आप सुनहरी यादें नाम रखिए।
0: हाँ।
1: बहुत यूनिक और थोड़ा अलग सा है, प्रमिला नारायण ऑर्केस्ट्रा, और इससे सबसे पहले ही वो थोड़ा सा अच्छा लगता है नाम, क्योंकि पुराने गाने ज़्यादा पेश करने का इरादा था उसमें।
0: वाह वाह
1: जी।
0: तो पहला शो कब हुआ था सुनहरी यादें?
1: पहला शो 1975 14 अप्रैल, जो दिन गुड़ी पाड़वा था, हमारे साल शुरू होता है गुड़ी पाड़वा के दिन।
0: हाँ, हाँ।
1: तो उस दिन 14 अप्रैल को मैंने पूना के बाल गंधर्व थिएटर में पहला शो किया।
0: क्या बात है
1: जी,
0: हमारे यहाँ महाराष्ट्र में सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाता है।
1: मुहूर्त माना, हमारे एक 3.5 मुहूर्त बोलते हैं अच्छे जिस दिन, उनमें पाड़वा बहुत अहमियत रखता है, गुड़ी पाड़वा।
0: क्या बात है
1: जी।
0: ये सिलसिला शुरू हुआ, मगर उससे पहले आप मराठी फिल्मों के लिए गा चुकी?
1: हाँ, फिल्मों के लिए गा चुकी हूँ। जैसे मैं कहना अन्ना जी के साथ घरकुल करके पिक्चर था अन्ना जी का, वो हाउस ऑफ बैम्बू मन्नादा के साथ गाना था।
0: हाँ, हाँ,
1: तो मेरे लिए तो इतना अच्छा मौका था, वो सुवर्ण संधि बोलते हैं कि मन्नादा के साथ मैं गाना गा रही हूँ। वो गाना अभी भी लोग याद करते हैं, पप्पा संगा कुणा से, वो जो गाना है मुझे देखते ही पप्पा संगा, छोटे बच्चे भी पप्पा संगा कुणा। मुझे याद है छोटे से किस्सा है, मैं अमेरिका गई थी
0: जी।
1: मेरी एक पोती वहां रहती है, मैं छोटी सी थी 4-5 साल की। तो मुझे देख के ऐसे हो गई, तो क्या हुआ उसको, तो बोले हमने उनको बोल दिया है कि पप्पा संगा कुणा से ये आजी ने गाना गाया है। तो वो इतनी खुश हो गई, मुझे बोली तू मेरे लिए गाओगी? तो बोले हाँ जरूर गाओगी। बहुत मजा आया उससे, बच्चों से लेकर।
0: तो 14 अप्रैल को जो पहला शो सुनहरी यादें का हुआ
1: जी,
0: तो पहले शो के लिए आपने गीतों की जो फहरिस्त बनाई होगी, लिस्ट बनाई होगी, आपको याद है?
1: इतना सा तो नहीं, लेकिन एकदम मराठी लावणी और पुराने गीतों में वो जो तुम न जाने किस जहां में खो गए, अजीब दास्तां है ये।
0: हाँ, हाँ,
1: इस तरह के सब पुराने गाने हुआ करते थे उस वक्त।
0: बिल्कुल, जो आपने जितने शो किए हैं उसकी बातें होंगी, बहुत से कलाकारों के साथ आपने टूर्स किए हैं उनकी भी बातें होंगी, मगर साथ में आपके पसंदीदा गीतों की भी बात होगी। आप किसी गायिका से ये पूछना कि आपके पसंद का गाना कौन सा है, जरा मुश्किल है।
1: राइट।
0: तो फिर भी पहला गाना इस कार्यक्रम के लिए आप कौन सा चुनना चाहेंगी?
1: मैं ऐसे एक नॉन फिल्मी गीत है मुझे। हाँ।

0: बहुत पसंद है वो, आज जाने की जिद ना करो, वो जो
1: ओह क्या बात
0: आई
1: है,
0: लव दैट सॉन्ग, बहुत अच्छा
1: अलग अलग
0: गाना
1: गायिकाओं ने अलग
0: है।
1: अलग
0: हाँ
1: मौके पे इसे
0: ऐसे
1: गाया
0: मैं
1: है।
0: मेरे शो में एक मेडली करके एक आइटम पेश कर दी थी,
1: हाँ
0: अलग अलग
1: हाँ
0: गायिकाओं के गाने हुए,
1: जी
0: उसकी
1: जी
0: झलक
1: हाँ
0: उसमें, मुबारक बेगम, शमशाद बेगम, रेशमा जी
1: जी
0: और ऐसे सब गायिकाओं के, सलमा आगा गाने, एक एक अंतरा, वो लोग बहुत पसंद करते थे उस आइटम को।
1: अच्छा,
0: जी
1: तो आप एक लाइन इसकी गुनगुनाइए।

0: प्रमिला जी, अब आपके बचपन की ओर चलते हैं। बचपन कहाँ बीता?
1: बचपन बहुत मतलब जैसे मध्यम वर्ग बोलते हैं।
0: जी जी।
1: मेरे पिताजी स्कूल में हेडमास्टर थे, उसी स्कूल में मैं पढ़ी।
0: ये किस शहर की बात हो रही है?
1: बम्बई।
0: अच्छा, मुंबई। मुंबई में?
1: गिरगांव में।
0: गिरगांव
1: में हमारा रहना भी वहाँ था।
0: मुंबई
1: सब चाल थे सब
0: जी,
1: ऐसे
0: जी, जी, जी।
1: और वैसे चाल थे लेकिन पूरा चाल एक कुटुंब जैसा था।
0: हाँ, हाँ।
1: किसी घर में कोई कुछ कार्य हो जाए पापड़ बेलना सब जो
0: मिलकर
1: सब मिलकर काम करते थे, बहुत मजा आता था। लेकिन पूरा एक चाल कुटुंब जैसा था और सब सब गणपति दिवाली सब त्योहार इतने अच्छी तरह से मनाए जाते थे कि जैसे कि लगता था हम सबका एक ही त्योहार है।

0: सब
1: जी
0: लोग मज़े कर रहे हैं, बहुत ही मज़ा आता था। और जैसे कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा, मेरे पिताजी ने बाहर होटल में चार आने की चाय कभी नहीं पी जाके,
1: अच्छा
0: लेकिन
1: हाँ
0: घर में दूध सब सब इतना खाना का माहौल, इतना अच्छा सकस खाना मिलता था घर
1: अच्छा
0: में।
1: अच्छा
0: बाहर खाने का उस वक्त इतना सा बहुत शौक नहीं था लोगों को,
1: जी जी
0: जो घर में बनता था वो ही अच्छा बनता था, तो
1: हाँ
0: बाहर जाने की जरूरत महसूस नहीं होती थी। इसलिए कि स्कूल के दिन से मुझे गाने का जो शौक था,
1: जी
0: मुझे
1: जी
0: गाने तो पसंद थी मेरी, तो हमारे स्कूल में नाश्ता नवरंग करके बहुत ही बड़े अच्छे गुरुओं के हिसाब से बहुत अच्छे थे,
1: अच्छा
0: तो उनके क्लासेस चलते थे मेरे स्कूल में,
1: अच्छा
0: तो इसीलिए जाना हुआ।
1: हाँ
0: कहने का मतलब यह है कि हम गिरगांव में रहते थे
1: जी
0: और
1: जी
0: गिरगांव से दादर भी नहीं भेजते थे,
1: ओ
0: अगर दादर में क्लास होता
1: अच्छा
0: तो
1: अच्छा
0: बहुत ही स्कूल में था, और स्कूल ख़त्म करके अपना क्लास ख़त्म करके घर आ जाए, और घर का स्कूल 5 मिनट का रास्ता था चलने का,
1: अच्छा
0: तो इसलिए वो सब इतना सुविधाएं थी, तो उसकी वजह से वो हो गया।
1: वाह
0: पहली बार मैं मुंबई से बाहर गई, मैंने SNDT कॉलेज में गई, क्योंकि
1: जी
0: वहाँ म्यूज़िक एक वन ऑफ द सब्जेक्ट्स था,
1: जी जी
0: तो SNDT कॉलेज में गई तो यूथ फेस्टिवल हुआ करता था
1: हाँ
0: दिल्ली में,
1: हाँ
0: तो यूथ फेस्टिवल में हमारा एक नाटक करके
1: संगीत शारदा
0: संगीत शारदा,
1: जी जी
0: तो स्कूल के दिनों में मैंने उसमें कोदंड की भूमिका निभाई थी,
1: ओ
0: ये मेरी
1: अच्छा
0: आवाज़ ज़रा भारी थी, जाड़ी थी,
1: हाँ हाँ
0: तो
1: हाँ
0: पुरुष के गायक के लायक थी, और
1: अच्छा
0: हाइट भी अच्छी थी,
1: जी
0: तो मैं
1: जी
0: कोदंड और दूसरी शारदा, फिर मैं कोदंड का रोल किया है, कृष्ण का रोल किया है,
1: जी जी जी
0: नारद का रोल किया है स्कूल में, तो
1: हाँ
0: स्कूल
1: चूंकि ये महिला
0: के
1: विश्वविद्यालय है
0: महिला विश्व
1: तो
0: नहीं,
1: सारे
0: वो ये स्कूल की बात कर रही हूँ,
1: अच्छा
0: महिला विश्वविद्यालय में हमने वो शारदा नाटक, शारदा का भी एक हल्दी कुंकू जो होता है उसका सीन था,
1: अच्छा
0: तो वो हमने उधर किया
1: ओहो
0: यूथ फेस्टिवल में। तो पहली बार मैं बम्बई छोड़ के अकेली
1: हाँ
0: दिल्ली गई यूथ
1: क्या बात
0: फेस्टिवल के,
1: अच्छा अच्छा
0: बाकी फ्रेंड्स वगैरह थे साथ,
1: अच्छा
0: बहुत
1: हाँ
0: मजा आया दिल्ली में, और पहली बार गए थे तो ऐसा क्या देखो और क्या नहीं, ऐसा हुआ था
1: क्या बात है।
0: बहुत मजा आया।
1: उस संगीत शारदा से कोई नाट्य पद जिसकी एक लाइन आप सुना
0: जरूर
1: सकें।
0: जरूर,

0: वाह वाह, क्या बात है। बिल्कुल, अपने श्रोताओं को हम बताना चाहेंगे कि संगीत नाटक जो हुआ करता था मराठी में महाराष्ट्र के मंचों पर, उसका एक स्वर्णिम युग था। और तब स्त्रियां जो है, महिलाएं जो है, भूमिका नहीं करती थी,
1: नहीं करती,
0: पुरुष पर, तो पुरुष किया करते थे, जिसके लिए नारायण राजहंस यानी बाल गंधर्व जाने जाते हैं।
1: राइट, राइट।
0: और बहुत से केशवराव भोसले हुए, बहुत से ऐसे कलाकार प्रसिद्ध हुए अपनी उन स्त्री भूमिकाओं के लिए।
1: यहाँ उल्टे मामला हुआ,
0: और मामला उल्टा हुआ, आपने पुरुष की भूमिका इस नाटक में निभाई थी। जीवन में वो कौन सा अवसर था, वो कौन सा समय था जब पहली बार संगीत उद्योग से या फिल्म उद्योग से जुड़ा हुआ एक अवसर आपकी झोली में ऊपर वाले ने डाल दिया?
1: एक तो एक यूथ फेस्टिवल का ये था, हमारे जब मैंने जो पेश किया उसको बख्शीश भी मिला, प्राइज भी मिला। और बाद में मैं एक फिल्म डिवीजन की छोटी सी वुमेन्स एजुकेशन करके फिल्म बनाई थी उन्होंने, तो उसमें भी मैंने रोल किया था।
0: अच्छा।
1: क्योंकि एक वहाँ के लोग, दो तीन लोग हमारे स्कूल में आए थे शाला में कि किसको मतलब चुना जाए इस रोल के लिए, तो हम 10-12 लड़कियाँ खड़ी थी, तो उन्होंने मुझे चुना। और वुमेन्स एजुकेशन करके एक शॉर्ट फिल्म थी। पहले ज़माने में पिक्चर से पहले ये सब फिल्म डिवीजन वाली छोटी छोटी फिल्में दिखाते थे, अभी तो वो मामला बंद हो गया, शायद फिल्म डिवीजन भी चालू है, कहीं पता नहीं। तो वो पहला मौका मिलना चाहिए ऐसा कहना चाहिए। फिर बाद में कॉलेज में गई मैं, तो कॉलेज में बीए किया मैंने म्यूजिक लेके, तो म्यूजिक का एक सब्जेक्ट था, बाकी और भी सब्जेक्ट थे उसमें बीए तक। और बीए का वो एग्जाम हुआ, और इंटर में जब थी मैंने 16 साल की, तब शादी हो गए।
0: अच्छा।
1: 42 साल का मेरा जन्म है, और 58 को शादी हो गई, 16 साल की।
0: हाँ।
1: तो 58 को शादी हो गई, फिर मैं ऐसे घर में, तो बीए हो गया, मैं बैठ गई घर में, मतलब अभी 20 साल की मैं हो गई, तो पहली

0: बेटी हो गई तो 1962 में
1: जी
0: उसके बेटे का जन्म हुआ। फिर बाद में इन्होंने ही मुझे कहा, मेरे हस्बैंड ने, कि अभी तुम्हारा गाना इतना अच्छा है, तुम कर रही हो तो क्यों रोकती हो, एमए करो। एमए में इंटायर म्यूजिक था एसएनजीटी में, तो उनकी बदौलत मैं एमए करने के लिए गई।
1: वो
0: घर में भी ऐसा सुविधा थी कि मेरी सासू जी थी और बहुत अच्छी तरह से वो, मतलब बेटी घर में हो तो थोड़ा सा मतलब जिजिक होती है कि जाओ कि नहीं, तो वो तरफ से कोई मुझे चिंता नहीं थी, कि वो बहुत अच्छी तरह मुझसे भी ज़्यादा अच्छा संभालती थी बच्चों को। तो 62 में मैंने एमए किया फिर, और फिर एमए किया, और फिर 68 में पहला मौका आया तलत साहब के साथ।
1: अच्छा।
0: हाँ, तलत साहब के साथ एक नंदी दुगल करके प्रमोटर थे, तो मेरे हस्बैंड लायंस क्लब के मेंबर थे, तो वहाँ पे मैं इधर उधर एक दो गाने चली, प्रमिला जी आप गाने गाइए, कुछ फंक्शन हुआ लायंस क्लब का, तो नंदी दुगल जी ने सुना मुझे और मुझे आए, उन्होंने पूछे कि आप चलेगी क्या। हमने चलेगी
1: दौड़ेगी
0: कूदते जाऊंगी। तो
1: जी।
0: तलत साहब के साथ ये ऐसा अच्छा मौका मिला, 3 महीने का वो टूर था हमारा
1: क्या बात
0: और

0: तो मेरे हस्बैंड लायंस क्लब के मेंबर थे, तो वहाँ पे मैं इधर उधर एक दो गाने चली, प्रमिला जी आप गाने गाइए, कुछ फंक्शन हुआ लायंस क्लब का, तो नंदी दुगल जी ने सुना मुझे और मुझे आए, उन्होंने पूछे कि आप चलेगी क्या? हमने चलेगी
1: दौड़ेगी
0: कूदते जाऊंगी तो तलत साहब के साथ ये ऐसा अच्छा मौका मिला। 3 महीने का वो टूर था हमारा,
1: क्या बात,
0: और 2 बेटियां, एक 4 साल की, एक 6 साल की, लेकिन सासू जी थी तो वो कोई चिंता नहीं थी घर की। मैं बिंदास चली गई और बहुत कुछ सीखने को मिला तलत साहब से। और वेस्ट इंडीज में हम लोग यहाँ कहते हैं कि हमारे जो प्लेबैक बड़े बड़े लीजेंड्स है
1: जी जी,
0: उनका यहाँ वहाँ इतना नाम था वेस्ट इंडीज में, हमको मतलब देखा हुआ जाके कि कोई गाने ऐसे थे तो तलत साहब हमको ये गाना मेरा है ऐसा पूछते, इतना उनको भी याद नहीं थे उनके गाने, ऐसे ऐसे गाने को लोग फरमाइश देते थे। बहुत मजा आया टूर में, उनसे वो सीखने को मिला।
1: तलत साहब को आपने याद किया तो कोई गाना उनका इस वक्त हम सुनाए अपने श्रोताओं को। तलत साहब ने मराठी में भी गाने गाए हैं,
0: मराठी में गाने थे
1: जी जी।

0: आप अलग अलग देशों में घूमी हैं
1: घूमी
0: जी, तो पहला टूर जो था वो किस देश का था?
1: नहीं, सबसे
0: आपने वेस्ट
1: पहले
0: इंडीज के बारे में बताया,
1: ज्यादा तो जी
0: वेस्ट इंडीज आप तलत साहब के साथ गए?
1: वशिष्ठ तलत साहब के साथ गए, फिर
0: हाँ
1: उसी उसी को नंदी दुगल जी ही थे
0: जी,
1: प्रमोटर अगली बार,
0: हाँ हाँ
1: तो उन्होंने किशोर कुमार जी के साथ
0: हाँ हाँ
1: जाने के लिए, मैंने कहा बाबा भाई मेरे जीवन में इतना अच्छा मौका और किसको नहीं मिलेगा,
0: जी जी
1: तो किशोर दादा के साथ ईस्ट अफ्रीका का दौरा किया, हमने टूर किया
0: अच्छा
1: ईस्ट अफ्रीके का।
0: हाँ
1: उनके तो क्या एक किस्से में, अब सबसे पहले तो मैं बहुत छोटी थी, नाम भी नहीं था, ना तो प्लेबैक गाया हुआ था फिल्मों
0: जी
1: के लिए,
0: जी
1: तो उन्होंने पहले ही शर्त डाल के मैं दो गाना डुएट नहीं गाऊंगा।
0: हाँ
1: मैंने कहा बाबा दादा आप बड़े हैं
0: हाँ
1: और आपको कोई बोलेगा नहीं मेरे साथ डुएट गाए, तो मैं अपने गाने गा के मतलब शो की शुरुआत में पहली एंट्री मेरी होती थी,
0: जी जी
1: तो उस वक्त ये गाना बहुत मशहूर था, दम मारो दम। तो दम मारो दम गाना उषा उत्तम जी की
0: जी
1: रेंज और आशा भाई की रेंज, तो
0: हाँ
1: दोनों में मैं संभालती थी कैसे भी करके,
0: अच्छा
1: तो लोगों को बहुत पसंद आता था वो गाना, तो इनवेरिएबली हर प्रोग्राम में वो गाना वंस मोर होता था
0: अच्छा
1: दम मारो दम।
0: हाँ हाँ हाँ
1: तो किशोर कुमार जी मेरे बाद उनकी एंट्री थी,
0: जी जी
1: तो स्टेज पे आए थे दम मारो दम ऐसा करते
0: अच्छा
1: थे तो वो कहा मैं कहा, फिर भी मुझे मतलब, और बहुत बहुत अस्वस्थ रहते थे उनको, जो मैंने नोटिस
0: हाँ
1: किया
0: हाँ
1: उनको,
0: जी जी
1: इतने बड़े बहुत बहुत ही बड़े सारे सब गायक कलाकार लेजेंड्स हैं, लेकिन शो शुरू होने से पहले जो स्टेज के बाजू में जगह रहती वहाँ शेर कैसा है इधर उधर इधर ऐसा घूमता है, बहुत अस्वस्थ रहते थे।
0: जी जी
1: और उनका अब्दुल था मैन फ्राइडे, वो
0: जी
1: अब्दुल मेरा टॉवल का है, अब्दुल मेरा ये का है, अब्दुल मेरा, और एक बार स्टेज पे गए
0: हाँ
1: छुट गए, फिर मेरी ये नसीब में इतना अच्छा है थे का कि अपने तीन चार गाने गा के ये
0: हाँ
1: लोगों को सामने से सुनते बैठू,
0: हाँ
1: बहुत ही भाग्य था
0: क्या
1: मेरा
0: बात
1: इस
0: है।
1: बारे। रफी
0: मगर
1: साहब को
0: किशोरदा ने फिर मंच पर कोई ड्यूएट आपके साथ
1: डुएट नहीं गाए
0: नहीं गाया? अगर किशोरदा को याद करने के लिए कोई गीत हम
1: जरूर
0: सुने तो कौन सा
1: जरूर
0: होगा वो?

बहुत ही सुंदर सा ये गीत सुजाता फिल्म से अपने श्रोताओं को हमने सुनाया। प्रमिला जी, फिर एक बार सुनहरी यादें के बारे में हम बात करते हैं कि इस शो को लेकर के

0: कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और लोगों ने क्या कहा जब आपने मंच पे
1: लोगों
0: प्रस्तुत
1: ने
0: किया?
1: बहुत नाम भी रखे,
0: हाँ,
1: क्योंकि ये क्या है, बोले दूसरों
0: मतलब
1: की
0: टीका टिप्पणी की आप, जो आपका
1: टीका
0: कहना है।
1: टिप्पणी
0: जी
1: की,
0: जी जी
1: वो
0: जी
1: मेरे लिए अच्छी थी, साबित हुई।
0: हाँ
1: हाँ, उसकी वजह यह है कि लोगों टीका टिप्पणी मतलब ये, अब 3 घंटे
0: जी
1: स्टेज पे खड़ा होना, कंपेयरिंग मैं ही करती थी उसमें।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: ओ हो
1: खड़ा होना, गाने गाना, फिर बाकी सब म्यूजिशियन को संभालना, ये भी बातें आती थी उसमें।
0: जी जी
1: तो ये जिनको मालूम नहीं कि
0: हाँ
1: इसमें कितने कष्ट है या इसमें कितनी कठिनाइयाँ हैं,
0: जी,
1: तो लोग क्या, हाँ, वो दूसरे के गाए हुए वो जो पॉपुलर गीत है वही गाती है।
0: अच्छा।
1: हाँ, मतलब अपना कुछ नहीं, ये उनका शायद रोक होगा, मुझे पता नहीं। लेकिन फिर उसमें मैं किसी की नकल नहीं कभी करती थी, लता
0: हाँ
1: जी, आशा जी, गीता दत्त, मैं अपने ढंग में। फिर अभी भी मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी मैं एक पिछले 4 साल से
0: जी
1: लोगों ने कहा कि अब तुम खाली बैठे बैठे क्या कर रही हो, इतने सालों से शोध बन के इतने साल हुए, कि कुछ करो, कुछ लिखो, तुम्हारे
0: अच्छा
1: अनुभव एक्सपीरियंसेस कितने होंगे जो 25 साल के टूर किए या
0: जी
1: प्रोग्राम
0: जी
1: किए। तो मुझे उससे ये मिल गया कि सूचना कि कुछ तो करना चाहिए अभी बैठ के नहीं काम। तो मैंने अपना ये लिखना शुरू किया, एक छोटा छोटा
0: अच्छा
1: एक्सपीरियंस जो मुझे बहुत सारे दरमियान आए थे,
0: हाँ हाँ
1: तो वो शुरू किए। बाद में वो किसी ने बोला भी, वो लिख रही हो तो एक गाना भी गाओ ना साथ में।
0: अच्छा
1: मेरी सब सहेलियाँ, मेरे सब, तो सिर्फ हारमोनियम के साथ
0: ओहो,
1: मैं गाने गा के भेजती हूँ। रोज सुबह मेरा ये काम होता
0: क्या
1: है,
0: बात है,
1: कुछ लिखा हुआ। कभी कभी नए लोग भी जुड़ जाते हैं
0: सोशल मीडिया
1: तो
0: पर,
1: सोशल मीडिया पे,
0: ओहो हो,
1: व्हाट्सएप पे मैं सबको शेयर करती
0: क्या
1: हूँ।
0: बात है।
1: हाँ, तो मुझे एक बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिलता है इसके जरिए कि कोई भी गाना हो वो
0: हाँ
1: तुम्हारा करके गाती हो। वो
0: हाँ
1: प्रमिला दादा का गाना लगता है,
0: अच्छा,
1: क्योंकि लता बाई जो रेंज में गाती है मेरी आवाज़ नहीं जाती, आशा बाई जो रेंज में, उन मतलब उनके सबके रेंज में, अभी उम्र के हिसाब से भी पहले मैं उनके रिकॉर्ड के स्केल में गाती थी
0: जी
1: पहले
0: जी
1: गाने,
0: जी
1: अभी नई आवाज़ जाती है, काली एक, काली पाँच, काली एक तक
0: हाँ हाँ
1: जाती है।
0: हाँ
1: तो मैं अपने हिसाब से वो गाना गाती हूँ ना, थोड़ा
0: बराबर
1: सा मैं अपने वैरायटी करती हूँ जो मुझे ज्ञान मिला है इस
0: जी
1: क्लासिकल
0: जी
1: म्यूजिक का।
0: हाँ
1: तो इसलिए लोगों ने ये कहा तो मुझे बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट लगा कि तुम जो गाना गाती हो वो तुम्हारा हो जाता है, क्योंकि मेरे स्टाइल में वो मैं गाती हूँ। ये
0: जी
1: मुझे कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा लगता है, और वो उसका मेरा उत्साह और बड़ा करीब करीब, अभी मैंने 700 गाने रिकॉर्ड करके
0: ओहो,
1: हारमोनियम पे सिर्फ
0: क्या बात है।
1: भेजे।
0: अच्छा
1: कभी
0: अच्छा
1: कभी अगर फास्ट गाना हो तो तबला मशीन साथ में लेके
0: जी
1: उसके साथ
0: जी
1: गाए,
0: जी
1: लेकिन बहुत सारे गाने मैंने ऐसे ही गाए, मजा आता है,
0: जी
1: मुझे भी
0: जी
1: अच्छा लगता
0: हाँ, तो
1: है।
0: इसमें आपने किसी नए सिंगर का गाना गाया हो, ऐसा भी हुआ?
1: नए में मुझे नहीं याद आता है, अलका
0: अच्छा अच्छा
1: याग्निक का एक गाना गाया शायद, अलका
0: हाँ
1: याग्निक
0: हाँ
1: का,
0: अच्छा,
1: मोह मोह के धागे,
0: मोमो के धागे, दम लगा कर है इस फिल्म का
1: दम
0: गाना
1: लगा के है
0: है। जी
1: उसका
0: जी
1: अलका
0: गीत
1: याग्निक।
0: लेकिन आपने ट्राई किया है, आप पे गाया है हारमोनियम
1: हाँ,
0: पे,
1: मोह
0: तो
1: मोह के है। और
0: इसकी एक झलक हमारे श्रोताओं को।

0: आप जब सुनहरी यादें में गीतों का चयन करती थी कि आज मंच पर ये गीत हमें
1: हाँ
0: प्रस्तुत करना है, तो अलग अलग गायिकाओं के गीत
1: जी,
0: हैं, उस हर गीत को अपने ढंग से अपनी तरह से गाना
1: तरह
0: है,
1: से
0: ये
1: गाती थी
0: आपका हमेशा से रवैया रहा है
1: या
0: क्या?
1: नकल नहीं किसी का,
0: नकल किसी की नहीं,
1: नहीं,
0: यानी मिमिक्री नहीं किया आपने?
1: मिमिक्री नहीं।
0: अच्छा,
1: अपनी गीता
0: हाँ,
1: दत्त के गाने बहुत मुझे
0: लेकिन
1: पसंद है,
0: आशा जी का
1: गीता।
0: गाना है तो उसको आशा जी के अंदाज, आपको अपने अंदाज में
1: हाँ
0: भी
1: वो
0: गाना
1: तो
0: है,
1: अंदाज लहजा थोड़ा आता ही था,
0: आता ही था।
1: क्योंकि ओरिजिनल उन्होंने गाया हुआ है,
0: हाँ
1: मतलब
0: हाँ
1: शब्दोच्चार
0: जी
1: या
0: जी
1: कोई हरकत या कोई मुर्की या उनकी
0: हाँ
1: उनकी तरह से, तो
0: जी,
1: वो आता ही था अपने आप से,
0: अपने आप आ
1: नॉट
0: जाता।
1: नकल करने का हिसाब से नहीं आता था वो।
0: जी जी जी
1: क्योंकि
0: जी
1: इसीलिए मैंने बोला कि अपनी आवाज नहीं जा रही है तो क्यों ये हट, क्यों कि लता जी के रेंज में ही मैं गाऊं,
0: बिल्कुल, वो
1: फिर
0: जिद का
1: ऊपर
0: कोई,
1: जाके फिर वो आवाज
0: बिल्कुल
1: डबल हो जाएगी। उसके बदले अपने जिसमें तुम कंफर्टेबल हो
0: उसी रेंज में,
1: उसी रेंज में गाओ ना, वो ज्यादा अच्छा लगता
0: बिल्कुल। ये नए गाने सीखने वालों के लिए भी एक बहुत अच्छी बात आपने बताई
1: है।
0: है।
1: ऐसा लगता है कि मैं अनुभव से ये कह रही
0: जी जी जी बिल्कुल
1: हूँ
0: बिल्कुल, अनुभव
1: क्योंकि
0: आप कह रही
1: आजकल वो
0: हैं।
1: जो कैरियो के जो प्रकार आया है ना,
0: जी
1: आई
0: जी
1: हेट दैट, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं भी गाता हूँ, मैं भी गाता हूँ, ऐसा
0: हाँ
1: ऐसा
0: हाँ
1: नहीं होना चाहिए।
0: हाँ
1: कुछ सीखो, अच्छी तरह से तालीम
0: जी
1: पाओ,
0: जी
1: और इतना आसान नहीं है। नहीं तो एक ही
0: बिल्कुल
1: लता मंगेशकर, एक ही आशा भोसले नहीं होती थी,
0: बिल्कुल
1: बहुत सारे
0: सही,
1: निकलते
0: बहुत
1: थे
0: सारे हो
1: गली
0: जाते थे,
1: चौड़े में
0: क्या बात है। तालीम बहुत ज़रूरी है,
1: जी,
0: क्लासिकल
1: बहुत ही
0: सीखना
1: बहुत
0: कितना
1: ही
0: ज़रूरी है आपको लगता है?
1: बहुत। पहले 3 4 5 साल तो फिर साइड बाय साइड तुम गाते रहो लाइट म्यूजिक,
0: जी
1: लेकिन आवाज की तैयारी, ये जो
0: हाँ
1: हरकतें मुरकतें, फिर अपने गले से, नहीं तो कोई अपने हिसाब से लेता है, दैट इज
0: हाँ
1: नॉट। मैं
0: हाँ
1: अलग गाती हूँ वो बात अलग है, लेकिन ओरिजिनल उनका गा के फिर मैं जो मेरा मेरे हिसाब से करना होता है, कुछ
0: जी
1: समझो
0: जी
1: वराइटीज,
0: हाँ
1: वो करती
0: हाँ
1: हूँ। बहुत सारे गाने ऐसे उसमें
0: जी
1: मैं करती हूँ, लेकिन उसके लिए पहले उनके जैसा गाओ, मतलब वो जो हरकत है वो ऐसी ही आनी चाहिए,
0: जो
1: वो
0: ओरिजिनल है
1: हिसाब
0: पहले वो तो
1: ओरिजिनल वो
0: गाओ।
1: तो गाओ,
0: हाँ
1: नकल नहीं आती उसमें,
0: जी जी
1: लेकिन
0: जी
1: उसमें आवाज़ की तैयारी भी हो जाती है,
0: हाँ
1: और वो हिसाब से बहुत ज़रूरी है।
0: बिल्कुल,
1: आवाज़ अच्छी है मैं भी गाती हूँ वो गाना नहीं होता,
0: हाँ हाँ हाँ
1: ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं अभी।
0: खैर बिल्कुल सही।
1: नहीं तो ये जो बड़ों बड़े जो उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी गंवाई तपस्या में,
0: जी
1: वो
0: जी
1: क्यों करते थे।

0: इतना
1: बिल्कुल
0: ऐसे ही गाते थे
1: सही बात,
0: ना।
1: बिल्कुल सही। मन्नदा की बात करते हैं,
0: जी
1: आपने पहला गाना मराठी में उनके साथ रिकॉर्ड
0: मन्नदा
1: किया,
0: के साथ
1: संगीतकार थे श्री रामचंद्र,
0: श्री रामचंद्र।
1: तो मन्नादा को किस तरह से आप याद करना चाहेंगी? आपने उनके साथ शो भी किया?
0: एक शो किया बड़ौदा में।
1: अच्छा
0: हाँ, बड़ौदा में मन्नादा ने मुझे एक मतलब एक उनको मैंने पूछा था कि मेरी प्रॉब्लम थी कि हम लोग बड़ौदा में बाय ट्रेन जा रहे थे, तो मेरी आवाज़ में वो जो मॉड्यूलेशन होता है जो लाइट म्यूजिक के लिए बहुत ही ज़रूरी है,
1: जी जी
0: क्लासिकल में आप प्लेन सुर लगाओ और वही सुर अगर आप लाइट में गाते हो तो उसमें मॉड्यूलेशन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो फ्लैट लगेगा और भाव नहीं आएंगे उसमें। तो मेरी आवाज़ में नहीं था, किसी के आवाज़ में जाता होता है किसी के आवाज़ में, तो मैंने मन्नादा को पूछा कि मन्नादा ये कैसा लाने का अपने आवाज़ में, तो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से मुझे बताया कि एक सुर लगाओ और उसमें ऐसे आघात करते जाओ।
1: अच्छा।
0: और मेरे आवाज में अपने आप आ गया वो सब रियाज करके,
1: क्या बात,
0: बहुत ही अच्छा। फिर भी उन्होंने ये भी बोला
1: हाँ,
0: कि ज्यादा नहीं करना,
1: हाँ,
0: लेकिन कंप होगा तेरे आवाज में। बहुत ही
1: अच्छा।
0: उनका और मेरा जो डुएट है हाउस ऑफ बैम्बू,
1: जी जी
0: तो ये नॉन मराठी लोग जो उनके च छ झ मराठी का थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो एक लाइन थी ऐसी वो गाने में,
1: जी जी
0: बाम्बू चा वना च ज झ बहुत से बाम्बू चा वना झऱ्याच्या काठी येशील सजणे सजणे माझ्याच पाठी।
1: बिल्कुल
0: ये
1: उनके
0: लाइन
1: लिए
0: थी,
1: टंग ट्विस्टिंग
0: बहुत
1: रहा
0: बहुत तीन बार हुआ ठीक, चार बार हुआ इतने या अन्ना तेरी मराठी भाषा मेरे को नहीं होगा। अन्ना बोले डरो डरो डरो मैं कुछ करता हूँ, तो उन्होंने वो नीचे डांट वगैरह देते हैं वो उनको बराबर ये करके लाइन में।
1: क्यों ना इस गीत की एक झलक आप सुनवा दे हमें?
0: हाउस ऑफ बैम्बू।
1: जी जी
0: नंबर 54 द हाउस ऑफ द बैम्बू डोर नंबर 54 द जिसे मॉड्यूलेशन कि उसके कम करना उसके ज्यादा फोर्स में गाना वो भी डिपेंड करता है।
1: जी जी जी
0: नंबर 54 द हाउस ऑफ द बैम्बू डोर हो बांबूचे घर बांबूचे दार बांबूची जमीन पिवळी शार बांबूचे घर बांबूचे दार बांबूची जमीन पिवळी शार बांबूच्या घरात आहा आहा स्वप्नाचा झुला लला लला झुलवित राहील पापा पापा तुलाने मला। नंबर 54 है द हाउस ऑफ द बॅम्बू डोर नंबर 54 द हाउस ऑफ द बॅम्बू डोर।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर।
0: उनका तो क्या
1: वाह वाह। मन्नादा अपने क्लासिकल सिंगिंग के लिए ज्यादा जाने जाते हैं।
0: जी जी जी
1: हालांकि हर गाना क्लासिकल बेस ही होता है
0: हाँ।
1: मगर प्योर क्लासिकल गाने प्योर जिनको कहा जाए जो लाइट कमर क्लासिकल ज्यादा लगते हैं ऐसे उनके कई गाने हैं।
0: लेकिन दूसरे सिंगरों में भी लक्ष्मी साहब थे क्लासिकल गाने हैं, ऐसी बात नहीं,
1: बहुत से
0: थे। लेकिन उनका जो आवाज में जो ये था दर्द या भारीपन था आवाज में वो उस पर बहुत असर करता था गाने पे, ऐसा मुझे लगता है। मुझे उनका एक गाना बहुत पसंद है, मेरे प्यारे वतन।
1: वाह
0: बहुत अच्छा, थोड़ा सुना था

0: क्या बात है,
1: बहुत अच्छा। ये गाना गाते वक्त रोना आता है, जो एक अंतरा है, माँ का दिल बन के कभी तू सीने से लग जाएगा, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता।
0: वाह वाह,
1: बहुत अच्छी लिखावट। गाने लिखे जाते थे, गाए जाते, संगीतकार।
0: जी जी जी, प्रमिला जी, इतने शोज आपने किए हैं और बहुत नामचीन कलाकारों के साथ भी आपको मंच पर गाने का मौका मिला है। हम रफी साहब को अभी याद करते हैं, रफी साहब के साथ।
1: रफी साहब तो मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है, सॉफ्ट कॉर्नर है उनके। उनके साथ बहुत सारे टूर किए, साउथ अफ्रीका, फिजी, मिडल ईस्ट, फिर जाम्बिया, मलावी, बहुत टूर किए रफी साहब के साथ। और जो उनसे सीखा है ना, मतलब सिर्फ गाना नहीं, स्वभाव के हिसाब से भी। इतने नम्र, और जितना ऊंचा आदमी उतना नम्र स्वभाव। और उनको किसी ने सवाल पूछा, एक पत्रकार परिषद थी, कि आप गायक तो मतलब चोटी के है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आप साथ साथ थोड़ा कंपोजिशन, म्यूजिक कंपोजिशन में क्यों नहीं आप हाथ अपना आजमाते? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं जो कर रहा हूँ, मतलब मेरा गाना, उसमें ही मुझे नहीं लगता कि मैं परिपूर्ण हूँ, तो मैं और क्या करूँ, और किसमें हाथ क्यों डालूँ?
0: विनम्रता की हद है,
1: हद है, हद है।
0: ओ, ओ, ओ, ओ।
1: और इतने नम्र दूसरे अपने साथ में कलाकार। मैं तो उनके सामने बहुत ही छोटी थी, लेकिन जो तारीफ करनी होती है, तो एक दिन मैंने नए नए गाने हम लोग चुनते थे, वो मैंने वो कव्वाली गाई, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, तो उसमें एक तो बड़ी लंबी चौड़ी, उसमें सरगम भी थी, उसमें तान भी थे, तो वो गाया तो लोगों को भी बहुत, साउथ अफ्रीका की याद है
0: जी जी,
1: बहुत पसंद आया लोगों को, वो गाना ही ऐसा है। तो रफी साहब, सब लोग बैठे थे, हम प्रोग्राम खत्म हुआ, तो प्रमिला जी आजकल बहुत कठिन कठिन गाने चुन रही है। अपनी तरफ से उन्होंने जो दाद दी है।
0: जी जी, क्या बात, वाह वाह,
1: बहुत अच्छा लगा।
0: रफी साहब के इतने सारे गाने हैं
1: जी,
0: मगर उनका कौन सा गाना आपको ज्यादा पसंद है?
1: ज्यादा पसंद नहीं बोलूंगी, सबसे सब पसंद, कि ये जो गाना है उनका, तुम जो मिल गए हो,
0: हाँ जी हाँ जी,
1: जो वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, वो गाने के लिए थोड़ा चैलेंजिंग भी है, और तुम जो मिल गए हो
0: जी जी,
1: हाँ,
0: हंसते
1: जख्म
0: जी जी,
1: तो वो गाना मुझे बहुत पसंद है,
0: हंसते जख्म फिल्म का। जी बिल्कुल, वही सुनते हैं।

0: के जहां मिल गया।
1: तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है ऐसा कब किसी ने आपके लिए कहा?
2: जो मैंने कहा 16 साल की थी जब भी उनके मिलने के बाद जहाँ ही मिल गया।
1: क्या बात है,
2: क्योंकि माय हस्बैंड उनके लिए बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। मैं जो कर रही थी उनमें मैं 5% कर रही थी, 95% उनका सहयोग था।
1: क्या बात,
2: बहुत। एक छोटा इंसिडेंट बताती हूँ, उनके पूरे आयुष्य में उन्होंने बहुत बहुत सर्जरीज हुए, उनके 5 मेजर सर्जरीज, उसमें 2 हार्ट बाईपास, 2 एक मैन्यूरिज्म करके है और 2 किडनी स्टोन की। उस वक्त के रेजर वेजर कुछ लाया था, स्ट्रेट फाड़ो जाओ किडनी तक और करो जो। तो ऐसा होके भी एक दिन उनकी अचानक से अर्जेंट सर्जरी करनी पड़ी किडनी स्टोन की। डॉक्टर एस डी बापट करके दादर में है, उन्होंने किया। और दूसरे दिन मुझे टूर पे जाना था, 8 दिन का टूर था। अच्छा। घर में सासू जी थी। लेकिन मैंने बोला नहीं अभी मैं टूर कैंसिल, क्योंकि ये सब अचानक आया। प्रीप्लान तो हमारा टूर था, तो बोला नहीं मैं कैंसिल करती हूँ, कोई बात नहीं, जो नुकसान होगा वो भर देंगे उनका।
1: अच्छा।
2: और बहुत जल्दी इतला कर रहे हैं तो उनको भी सुविधा हो जाएगी कैंसिल करने की। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
1: अच्छा।
2: तुम कैंसिल नहीं करोगी, तुम जाओ वही नहीं, मतलब हम सासू जी को वही नहीं बोलते थे।
1: अच्छा।
2: वही नहीं मेरे पास है, वो देखेगी, तुम बिंदास जाओ।
1: ओहो।
2: उस वक्त फोन भी ये भी कुछ नहीं था।
1: हाँ।
2: तो बीच में प्रोग्राम के बाद ट्रंक कॉल बुक करो।
1: हाँ।
2: फिर वो आधे पौने घंटे के बाद लगे। हाँ। तो ऐसे सब होके भी उन्होंने ऐसे एक इंसिडेंस है।
1: हाँ।
2: ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए जिसमें उन्होंने जो मेरा साथ दिया है।
1: हाँ, हाँ।
2: वो मैं लगा दुनिया में किसी हस्बैंड अपनी वाइफ को देगा।
1: बिल्कुल, बिल्कुल। कितनी भाग्यशाली आप हैं।
2: बहुत बहुत, मैं तो बोलूं आपको हर स्तर में मैं भाग्यशाली हूँ।
1: जी, जी, जी।
2: बचपन से गाना सीखने को उत्तेजन मिला, फिर मौके मिलते गए, कंपटीशन में भाग लिए, फिर प्रोग्राम शुरू किए।
1: हाँ।
2: फिर रसिकों के आग्रह से और रसिकों के मिला मुझे का साथ मिला, उससे वो चले, बहुत चले, 25 साल तक किए। बीच में ये सब रफी साहब जैसे उनके साथ ये टूर हुए। तो मेरा जो एक आयुष्य का आलेख बोलते हैं जिंदगी का, वो चढ़ उतार रहता है, ऐसा बोलते हैं, कभी कभी चढ़ कभी।

0: मेरा शुरू से लेकर चढ़ता ही जा रहा है,
1: वाह वाह,
0: इसलिए मैं ईश्वर के भी आभार और बाकी मेरे आसपास जो लोग हैं बाकी के,
1: हाँ हाँ
0: उनके भी आभार मानने चाहिए कि उनकी सबकी बदौलत ये सब हुआ।
1: क्या बात है। परिवार की बात चली है
0: जी,
1: तो आपकी अगली पीढ़ी में
0: मेरी
1: आपके
0: दोनों
1: बच्चों
0: बेटियां
1: में
0: मेरे साथ गाती थी
1: अच्छा
0: शो में,
1: हाँ,
0: शुरू
1: हाँ,
0: से
1: हाँ,
0: मतलब उन्होंने तब कुछ कि मेरा ही वक्तव्य में कंट्रोल कर रही हूँ,
1: अच्छा
0: क्योंकि उन्होंने तब कोई सिखा नहीं था गाना, वो
1: अच्छा
0: छोटी थी दोनों,
1: हाँ हाँ
0: तो उनका जाते हैं उनके पास मतलब वो हुनर था, तो दोनों मेरे शो में गाती थी।
1: अच्छा,
0: हाँ मतलब बाद में बड़ी बेटी की शादी हो गई तो छोटी पे बाहर आ गया,
1: बचपन से ही उन्होंने आपको गाते हुए
0: उन्होंने
1: देखा
0: गाते
1: सुना
0: देखा
1: है
0: तो उन्होंने
1: तो
0: वो
1: उनके
0: भी
1: अंदर वो
0: गाती
1: अपने
0: थी
1: आप,
0: और लोग पसंद भी करते थे, ऐसे
1: अरे
0: नहीं
1: वाह
0: कि
1: क्या
0: कैसा
1: बात है
0: क्यों आए या ऐसे
1: क्या
0: ऐसे
1: बात
0: नहीं।
1: है।
0: और हम तब तो जब वो बड़ी हो गई तो मैं थोड़ी सी मतलब उनकी जैसी, हम तीनों जैसे, तो किसी
1: हाँ
0: ने एक बार स्टेज पे बोला, किसी ने आदमी ने आके बाद में, तुम तीनों बहनें कितनी अच्छी दिखती हो स्टेज पे,
1: क्या
0: तो
1: बात
0: बड़ी बेटी एकदम, ए हमारी माँ है वो, हमारी बेटी नहीं, हमारी बहन नहीं, बहन नहीं ये।
1: क्या बात है क्या बात,
0: वह
1: कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट,
0: बहुत बड़ा
1: क्या बात। जी जी जी जी
0: कॉम्प्लीमेंट।
1: अगर आपसे कहा जाए कि अपने परिवार के लिए एक गाना चुनिए तो कौन सा गीत होगा, आप तीनों ने मिलके जो स्टेज पर गाना गाया होगा
0: हाँ
1: ऐसा
0: हम
1: कोई
0: लोग
1: गाना।
0: तीन डुएट भी गाते थे,
1: जी,
0: वो मन क्यों बहका रे बहका वो है,
1: ओहो क्या
0: फिर
1: बात है,
0: कजरा मोहब्बत वाला वो है,
1: हाँ
0: फिर अन्ना
1: हाँ
0: जी का अपलम चपलम, उस पे डांस भी
1: क्या
0: होता
1: बात
0: था
1: है
0: मेरे
1: क्या
0: शो में,
1: बात है,
0: ऐसे सब डुएट डुगाने हम लोग ने, तो
1: क्या बात।
0: उसका पैटर्न गाना मेरी बड़ी बेटी का, पंख होती तो उड़ाती रे।
1: वाह
0: हाँ फिर उसकी शादी हो गई तो दूसरी ने लिया वो पंख
1: अच्छा
0: होती तो, लेकिन वो गाना जरूरी था हमारे शो
1: अच्छा
0: में,
1: अच्छा अच्छा
0: बहुत लोगों को पसंद
1: तो क्यों
0: आता
1: ना
0: था।
1: यही गीत सुनवा दिया जाए श्रोताओं
0: अरे
1: को,
0: बाप रे।
1: हाँ रामलाल जी का कंपोजिशन है।

ये थी जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत। आज इस बातचीत का पहला भाग आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग अगले हफ्ते।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
4: अपने आप रातों में चिलमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
5: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
6: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
6: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
6: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: विविधा के सभी श्रोताओं को मनीषा जैन
1: और अमरकांत का नमस्कार।
0: बहुत दिनों बाद आज अमरकांत जी इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं और अमर जी कुछ खास रिकॉर्डिंग्स आज हमने अपने श्रोताओं के लिए चुनी है
1: जी।
0: क्योंकि मुझे याद है पिछली विविधा में हम कह रहे थे कि एक विविधा खत्म होती है और हमें फिक्र हो जाती है कि अगले शुक्रवार को हम अपने श्रोताओं को क्या सुनाएंगे,
1: क्या उनके लिए ऐसा खास लाएंगे कि जिसे सुनकर वो कहें वाह क्या खजाना है विविध भारती का।
0: जी, तो कौन से हमारे ऐसे कलाकार हैं जिनको आज के इस अंक में हम याद करेंगे, इसका जिक्र कर रहे हैं अमर जी।
1: देखिए ऐसा है मनीषा जी कि हमारे श्रोता जो लगातार विविधा सुनते रहे हैं और सुनते हैं वो अब तक इतना तो समझ चुके हैं कि जब भी हम किसी कलाकार का जिक्र इस कार्यक्रम में करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है उस दिन उसका जिक्र करने की। तो आज जिन तीन कलाकारों के बारे में हम बात करने वाले हैं उनके पीछे भी कोई कारण होगा।
0: बिल्कुल।
1: तो पहले तो मैं नाम बता दूं कि वो तीन कलाकार कौन से हैं।
0: बिल्कुल।
1: अदाकारा रीमा लागू, अपने जमाने के चरित्र भूमिकाएं निभाने वाले सशक्त कलाकार जिन्होंने बहुत सी फिल्मों में खलनायक की भूमिका भी निभाई, सज्जन कुमार
0: जी,
1: और एक बहुत ही नामी गिरामी किंग मेकर कह सकते हैं,
0: मैं नाम बता रही हूँ और वो है मशहूर निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा।
1: बिल्कुल ठीक।
0: तो आज विविधा में ये तीन कलाकार हैं और इनके अलग अलग रंगों से सजी है आज की महफिल।

0: सबसे पहले किसकी रिकॉर्डिंग हम सुनवाएंगे?
1: सबसे पहले रिकॉर्डिंग भी सुनवाएंगे और कोशिश करेंगे एक गाना भी अगर हम सुनवा सकें,
0: जी जी,
1: रीमा लागू जी का।
0: बिल्कुल, रीमा जी चरित्र अभिनेत्री के रूप में बहुत मशहूर हुई, खास तौर पर माँ का चरित्र बहुत निभाया उन्होंने फिल्म
1: जी, लेकिन रीमा जी के फेमस होने के पीछे टेलीविजन का भी बहुत बड़ा हाथ था
0: जी।
1: दो ऐसे सीरियल थे जिनके कारण रीमा जी ने अपने मतलब एक्टिंग की जितनी भी उनकी खूबियां थी वो सारी की सारी दिखाई। एक सीरियल था श्रीमान श्रीमती और एक सीरियल था तू तू मैं मैं। श्रीमान श्रीमती में तो ये पत्नी बनी थी और तू तू मैं मैं में ये सास बनी थी,
0: और वो बनी थी सचिन जी की धर्मपत्नी जो है सुप्रिया
1: पिलगांवकर,
0: पिलगांवकर उनकी सास, और बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर उन्होंने उसमें प्ले किया था।
1: अब यहाँ मैं ये बता दूं मनीषा जी कि रीमा लागू जी का जो नाम था वो पहले था नयन भात भड़े
0: जी।
1: 21 जून 1958 को इनका जन्म हुआ और दुर्भाग्य की बात है कि बहुत ही कम उम्र यानी 18 मई 2017 को रीमा जी ने इस संसार से अलविदा कह दिया,
0: मात्र 59 वर्ष की आयु
1: जी।
0: बहुत कम उम्र में वो चली गई। मराठी और हिंदी सिनेमा की तो अभिनेत्री थी ही, थिएटर भी उन्होंने बहुत किया था।
1: हम ये भी बता दें आपको दोस्तों कि रीमा जी चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में भी काम करती रही हैं
0: जी।
1: मराठी में इन्होंने काम किया, फिर मराठी फिल्मों में काम किया, थिएटर में काम किया, इस तरह से इनकी जर्नी चलती रही। और जब सूरज बड़जात्या ने हम आपके हैं कौन फिल्म प्लान करी तो उस दौरान मनीषा जी हुआ क्या कि वो फिल्म को पूरा एक नया लुक दे रहे थे सूरज बड़जात्या
0: जी।
1: वो आपको तो पता ही है कि नदिया के पार का रीमेक था वो।
0: जी हाँ, एक अर्बन नदिया के पार कह लीजिए
1: जी जी। और उसमें इनकी कोशिश थी सूरज बड़जात्या के कि सब कुछ एकदम मॉडर्न हो, पिक्चर भी पूरी ग्लॉसी ग्लॉसी थी और सब बड़े खूबसूरत चेहरे, बहुत ही
0: अच्छी स्टार कास्ट जबरदस्त जी।
1: अब ऐसे में इनको एक ऐसी माँ चाहिए थी जो एक अभिजात परिवार की एक कमांडिंग
0: मदर हो। मैं कहूँ तो एक ग्लैमरस माँ,
1: ये बिल्कुल सही शब्द आपने पकड़ा
0: जी।
1: और वो ग्लैमरस माँ ढूंढते ढूंढते इनकी नजर रीमा लागू पे पड़ी और फिर वहीं अटक गई।
0: और कितनी हसीन लगी है उस फिल्म में,
1: बिल्कुल
0: वात्सल्य की मूर्ति रीमा लागू, और उनके पीछे वो छुप के माधुरी दीक्षित का कहना माई री माई मुंडेर पे तेरी बोल रहा है कागा। अमर जी आपने कहा था गीत सुनाए,
1: बिल्कुल तो, गाना सुनते हैं उसके बाद बातचीत सुनेंगे
0: जी।

0: तो फिर
1: जिस
0: देर किस बात की है?
1: बिल्कुल बातचीत उनसे की थी यूनुस खान ने, तो उस रिकॉर्डिंग को हम सुनते हैं और याद करते हैं अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री रीमा लागू।
2: रीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में।
3: शुक्रिया, इट्स माय प्लेजर। एक्चुअली रेडियो से मेरा नाता बहुत पुराना है, तो वो नॉस्टैल्जिक मेमोरीज आ रही है। व्हेन आई वाज अ किड, वो उस वक्त मैं प्लेज पढ़ने के लिए रेडियो स्टेशन आती थी।
2: जी जी।
3: मैं जब स्कूल में पढ़ती थी तो पढ़ाई करते वक्त रेडियो के गाने सुनना मेरे लिए जरूरी था, तो
2: अच्छा।
3: कई बार डांट भी खाती थी मम्मी से, बट उस वक्त के बिना का गीतमाला जो हुआ करती थी, या रात के 10 से 10:30 के गाने, या सुबह के क्लासिकल एक बीट आता था
2: जी,
3: जो शायद अभी भी आता होगा। तो एक वक्त रहता था कि जब उस वक्त के लिए मैं घर पे आके वो गाने सुन के वापस जाती थी।
2: ये जो रेडियो का दौर है, ये एक बार फिर कहना चाहिए लौट रहा है।
3: एक्चुअली यू आर राइट, बिकॉज वो वेव रहती है, जैसे हमारे फिल्मों में कभी फिल्में अच्छी चलती है कभी बुरी चलती है, वैसे रेडियो का हुआ था। और भी कंपटीशन भी है, फिर भी आजकल मेरे साथ तो ये होता है कि गाड़ी में मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ तो रेडियो मेरा हमेशा चलता रहता है। ये फ्रेंड बन गया है रेडियो आजकल,
2: यानी बचपन से लेके आज तक रेडियो से आपका नाता तो जुड़ा हुआ
3: जुड़ा
2: है।
3: हुआ है बिल्कुल।
2: लेकिन अभिनय से आपका नाता कैसे शुरू हुआ था?
3: वो भी शायद बचपन से ही है। मेरी मम्मी मंदाकिनी, शी इज फ्रॉम थिएटर, उन्होंने थिएटर से शुरुआत की थी, तो उनके साथ मैं जाया करती थी, तो आई थिंक वहाँ से मैंने पिकअप किया होगा और आई स्टार्टेड डूइंग प्लेज।
2: घर से आपको एक तरह से रंगमंच के संस्कार मिले थे?
3: हाँ जी, एक्चुअली रंगमंच के संस्कार ही मुझे ज्यादा मिले हैं। फिल्में तो मैंने बहुत लेट करना शुरू किया।
2: बचपन से क्या आपने ये तय कर लिया था कि आपको अभिनय ही करना है?
3: जी बिल्कुल नहीं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मगर मैं करती थी, काम करती थी, अच्छा लगता था। और आई थिंक मैट्रिक तक मेरा एक गैप रहा, क्योंकि मैं हॉस्टल में पढ़ती थी, उसके बाद जब मैं मैट्रिक के बाद जब बॉम्बे आई तब से फिर से ये सिलसिला शुरू हुआ।
2: कैसे वो दिन थे और किस तरह से तैयारी करना, रिहर्सल्स, वो सारा माहौल कैसा था?
3: एक्चुअली इट्स वेरी मेस्मराइजिंग, यू नो, एक्चुअली मुझे आज भी प्ले ओपन होने तक का जो एक समय रहता है
2: जी,
3: यानी रिहर्सल से 1 महीना 1.5 महीना जितना भी, वो मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है, इसलिए कि उसमें आप बनते हैं,
2: यू ग्रो करते
3: ग्रो करते हैं एज एन आर्टिस्ट। और लेट तक रिहर्सल करते रहो, मजा आता है। फिर
2: खाने पीने की कोई सुध नहीं और वो,
3: हाँ,
2: जो
3: एक वो अजीब सी फीलिंग होती है शो पहला ओपन होने तक, यानी पहली एंट्री लेने तक पेट में बटरफ्लाइज रहते हैं, बट इट्स अ वंडरफुल पीरियड फॉर मी।
2: ये बताएं कि आपका पहला यादगार नाटक कौन सा था?
3: ऐसे प्लेज मैंने काफी किए हैं, बट सक्सेस के तौर पे जिसको कह सके, या लोगों की तरफ से जो मुझे एक्सेप्टेंस हुई, वो था पुरुष करके, जयवंत दलवी जी का प्ले था, जो विजय मेहता जी ने डायरेक्ट किया था।
2: बाद में उन्होंने दोबारा
3: वो हिंदी में हुआ
2: जी,
3: मगर दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट आई कैन से।
2: वैसे तो जो हिंदी दर्शक हैं उन्होंने आपको मैंने प्यार किया इस फिल्म से पहचाना, लेकिन आपकी सिनेमा में एंट्री इससे पहले हो गई थी, शायद 1980 में आपकी पहली फिल्म आई थी आक्रोश, अगर मैं सही हूँ।
3: जी मुझे हंसी इसलिए आई, उसमें मैंने लावणी डांस किया था।
2: अच्छा।
3: इसलिए मुझे हंसी आई, रोल नहीं था मेरा कुछ, मुझे लावणी से बहुत लगाव था। ये डांस इस तरह का मुझे बचपन से मैं देखती आ रही थी और मेरा ड्रीम था जो उस फिल्म में पूरा हुआ, यू नो।
2: जी।
3: सो या यू आर राइट कि उस फिल्म में मैंने वो किया था, वो लगातार दोनों फिल्म मेरे ख्याल से, कलयुग भी आई थी उसी वक्त एंड आक्रोश भी आई थी
2: जी।
3: उसके बाद अगेन देयर वाज अ बिग गैप।
2: लेकिन उस दौर में आपकी कुछ मराठी फिल्में आती रही थी।
3: हाँ, सिंहासन आई थी और 2-3
2: माझा घर माझा संसार।
3: हाँ, माझा घर माझा संसार, फिर अंतरपाट आई, ननंद भौजाई आई थी, कह सकते।
2: तो आपकी मराठी सिने यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी?
3: वैसे बचपन में एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट आई हैव डन लॉट ऑफ फिल्म्स, तू सुखीरा है, काफी फिल्में की थी मैंने, बट सिंहासन, फिर ये ननंद जो अभी मैंने बताई, वही फिल्में मैंने, मेरी शुरुआत हुई थी। कुल मिला के 7-8 फिल्में की होगी मैंने मराठी में एज अ लीडिंग लेडी, उसके बाद फिर गैप आया एंड देन।
2: और रंगमंच तो आपका चल ही रहा था?
3: हाँ, वो तो मैंने प्यार किया तक चल रहा था।
2: अच्छा, ये कहानी क्या है कि मैंने प्यार किया में आपका चुनाव किस तरह से हुआ?
3: एक्चुअली मुझे राजश्री की ऑफिस से गुप्ता जी करके उनका फोन आया था, उन्होंने शायद मेरा पृथ्वी थिएटर में, उस वक्त मैं प्लेस करती थी, हिंदी प्लेस करती थी, तो शायद उन्होंने वो प्ले मेरा देखा होगा
2: जी,
3: और उन्होंने बुलाया मुझे ऑफिस में, तो मैं वहां गई तो सूरज जी नरेटेड मी द एंटायर थिंग, तो मुझे पता नहीं, उनका प्रेजेंटेशन बहुत प्यारा लगा, द वे ही वाज नरेटिंग मी द स्टोरी। मैंने खाली सब सुनने के बाद इतना ही पूछा कि जो आप मुझे बता रहे वैसे ही आप शूट करेंगे? बोले

0: आप ऐसा क्यों पूछ रहे? मैंने कहा नहीं, कई बार ऐसा होता है बताया कुछ जाता है, दिखाया कुछ और जाता है.
1: जी
0: तो बोले नहीं, मैं ऐसे ही दिखाऊंगा. आई लाइक द फ्रेशनेस ऑफ द एंटायर कॉन्सेप्ट, यू नो. तो मैंने कहा नहीं, ये कर लेती हूँ मैं. एंड लकीली इट गॉट सुपर हिट. एंड राजश्री पीपल, दे आर रियली वेरी नाइस पीपल. लाइक ऐसा लग रहा था कि कोई घर का फेस्टिवल चल रहा है, यू नो.
1: जी
0: तो इस तरीके की ट्रीटमेंट आज तक उनकी वैसी ही है. तो ऐसे लोगों के साथ काम करते वक्त भी मजा आता है.
1: मेरे ख्याल से सिनेमा में पहली बार आपने माँ की भूमिका की होगी.
0: जी.
1: और उसके बाद फिर एक
0: फस
1: तरह से वो रिवाज.
0: फंस गई मैं.
1: मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो गंभीर भूमिकाएं हैं वो आपको ज्यादा पसंद हैं या कॉमेडी?
0: मुझे तो कॉमेडी में करने में बड़ा मजा आता है. हंसने हंसाने में बड़ा मजा आता है. सीरियस में थोड़ी तकलीफ होती है दिमाग को, यू नो. बट कॉमेडी इज मोर डिफिकल्ट. आई फील लोगों को हंसाना इतनी आसान बात नहीं है. रुलाना मेरे ख्याल से आसान बात है. बट लाइक सीरियस भी वास्तव जैसे रोल है, जो एक गंभीरता से अगर आप करें तो उसका इम्पैक्ट भी बहुत काफी दिन तक लोगों के दिमाग पे बसा रहता है. तो
1: कैसे वास्तव के रोल के लिए आपने अपने आप को तैयार किया था?
0: मैंने कुछ तैयार नहीं किया अपने आप को. बिकॉज एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे डिटेल में पता नहीं था कि ये रोल क्या है. बिकॉज महेश के साथ मैं कभी ये सवाल ही पूछती नहीं हूँ. एक भरोसा है, एक ट्यूनिंग है हम दोनों की. वेन एवर ही ऑफर्स मी अ रोल आई डू इट. तो एक दिन पहले मुझे पता चलता है कि कल ये आपको सीन करना है. तो ऐसे कोई तैयारी थी नहीं. एक सीन करते वक्त पता चलता है कि अच्छा इस ट्रैक पे आप जा रहे हैं. एंड वास्तव का रोल करने में मुझे बड़ा आसान रहा, क्योंकि मेरा जो बचपन था वो ऐसे ही लोकेलिटीज में, नॉट एकदम चालसी बट उससे थोड़ा बढ़ के. बट आई वॉज फेमिलियर विद दिस टाइप ऑफ एटमोसफेयर. टू पोर्ट्रे दिस काइंड ऑफ एटमोसफेयर वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. मैंने देख चुकी थी मैं जहाँ रह रही थी तो कि ऐसे माहौल में कैसे लोग बड़े होते हैं. या जो प्रिंसिपल्स उस औरत के दिखाए थे वो थोड़े सीन के पहले तैयारी कर लेती थी मैं, थ्रू डायलॉग्स ओनली.
1: जब पूरी फिल्म तैयार हुई और वो रोल अपने आप में एक बुलंदी के साथ एक सशक्त तरीके से
0: निकला
1: बाहर आया, तो कैसा लगा?
0: अच्छा लगा. बिकॉज एक तो मुझे अभी तक ना फिल्मों का, जैसे थिएटर में एक स्क्रिप्ट हमें पता होती है बिगिनिंग से लेके एंड तक, ये स्क्रिप्ट है, ये रोल का ग्राफ है. वैसे फिल्मों में नहीं होता, बिट्स में समझ में आता है. तो बहुत ऐसे कम लोग हैं जो पूरा सिनेरियो आपको बताते हैं, उस वक्त पता चलता है. बट कई बार ऐसे होता है कि नहीं, वो सीन बाय सीन आपको पता चलता है. देन वी टेक द प्रिकॉशन कि पूछ लेते हैं कि इसके पहले क्या हुआ है, आगे क्या ग्राफ बनने वाला है, यू नो. तो जब मैंने वो सीन किया, उसके बाद वो जब जुड़ के मेरे सामने खड़ा हुआ कैरेक्टर, तो मैं ताज्जुब में रह गई कि ओ ओ व्हाट अ सशक्त कैरेक्टर मिला है मुझे. काफी लोगों ने मुझे ये सवाल पूछा कि आपको अच्छा लगा कि आपने अपने बेटे को मारा. जब आपने, आपको अच्छा लगा अपने बेटे को, मतलब दे भूल गए कि कई लोगों का ऐसा कि नहीं नहीं माँ है, मार कैसे सकती है. अच्छा, एक तरीके से मुझे अच्छा लगा कि दे हैड फॉरगॉटन कि इट्स अ फिल्म का रोल.
1: अच्छा, आपके पूरे फिल्मी करियर में आप अपनी कौन कौन सी भूमिकाओं को बड़ा यादगार मानती हैं, जो आपके अपने दिल के करीब हैं?
0: आशिकी का एक सीन मुझे बहुत अच्छा लगा था, जहाँ पे प्रोग्रेसिवनेस की बात आती है औरत के. बिकॉज ज्यादातर के अपने यहाँ पे हिंदी फिल्मों के रोल्स एक ही ढांचे के रहते हैं, तो उसमें अलगपन बहुत कम जगह मिलता है. तो उसमें से इसलिए मुझे आशिकी का जो प्रोग्रेसिवनेस था उस औरत का दिखाया था, सिंगल लेडी हु इज वर्किंग ऑल्सो, तो वो ग्राफ मुझे अच्छा लगा था. बाकी ऐसे नहीं कुछ मेरे दिमाग में आ रहा है.
1: जी.
0: और एक मराठी फिल्म आई कैन से आपली मानसकर के था, उसका रोल मुझे बहुत ही अच्छा लगा.
1: किस तरह का रोल था?
0: इट वॉज अ वेरी सीरियस काइंड ऑफ रोल, बट इट वॉज आई डोंट नो, मुझे करते वक्त मैं अभी तक उसकी मेमोरीज मेरे दिमाग में है.
1: रीमा जी, आप किस तरह का संगीत पसंद करती हैं?
0: मुझे क्लासिकल अच्छा लगता है, और हिंदी फिल्मों का संगीत या मराठी गाने. बट वेस्टर्न का मुझे पता नहीं है, या शायद बचपन से कभी सुनने का मौका नहीं मिला, या कभी वो उस तरह का माहौल ही नहीं था उस वक्त. तो मम्मी और डैडी के साथ मैं कभी क्लासिकल गाने बहुत सुनती थी, कोई प्रोग्राम्स को जाती थी, तो क्लासिकल अच्छा लगता है. और लाइट
1: आज भी शास्त्रीय संगीत की महफिलों में जा पाती हैं आप?
0: कभी कभार, नॉट एवरी टाइम, बट कभी कभार अगर वक्त मिला तो मैं जाती हूँ. किशोरी आमोनकर जी का गाना मैंने सुना है. देन वीणा सहस्त्रबुद्धे जी मुझे अच्छी लगती है, और देवकी पंडित है. काफी आर्टिस्ट जो बहुत मशहूर है, उनके गाने. भीमसेन जोशी का मैंने गाना सुना है, जो मुझे बहुत ही, यानी वो एक प्रेरणा मिलती है उनका गाना सुनो. उनकी जो आवाज है ना, उससे अंदर हो जाता है एंड यू गेट द स्ट्रेंथ.
1: बिल्कुल भारतीय संगीत का गंधर्व सुर है वो.
0: जी बिल्कुल, मैं बहुत आवाज की उनकी तारीफ करती हूँ.
1: आइए एक गीत सुन लिया जाए.
0: जी बिल्कुल. भीमसेन जी का एक अमूल जी की फिल्म थी,

0: समझते हैं, जानते भी हैं। एक जमाने में एक सीरियल आया करता था टेलीविजन का, जिसमें सज्जन साहब ने रोल किया था राजा विक्रमादित्य के, जो कांधे पे चढ़े हुए बेताल का।
1: जी
0: मुझे लगता है एक बार उसका म्यूजिक हम अपने श्रोताओं को सुना दें तो जरा वो भी उस दौर में चले जाएं।
1: सिर्फ म्यूजिक क्यों, हम सज्जन साहब की आवाज भी सुनवाएंगे आपको।
0: लेकिन पहले
1: फिलहाल
0: जरा
1: उस म्यूजिक को सुन लीजिए, क्योंकि उससे ही आपको बड़ा मजा आ जाएगा।

0: बातचीत सुनने के बाद ऐसा लगता है कि ऐसे अच्छे अच्छे कलाकार, ऐसे अच्छे अच्छे इंसान क्यों इतनी जल्दी चले जाते
1: सच
0: हैं।
1: में
0: खैर, ईश्वर की मर्जी के आगे तो कुछ चलता नहीं। एक और बहुत ही अच्छे कलाकार जिनका मैंने जिक्र किया, सज्जन,
1: जी
0: जिनको सज्जन कुमार भी कहते रहे हैं, सज्जन के नाम से ज्यादा फेमस रहे वो। मैं ये बता दूं आपको कि सज्जन साहब के जो फैंस हैं वो सिर्फ उम्रदराज लोग नहीं हैं, सज्जन साहब के फैन तो छोटे छोटे बच्चे भी रहे हैं।
1: उसकी वजह बहुत अच्छे से हमारे श्रोता

0: मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा।
1: ये थे विक्रम और बेताल के सज्जन, और सज्जन साहब की आवाज में वो जो डायलॉग है ना उनका, वो बच्चे बच्चे की जुबान पे था। और आज भी हमें विश्वास है कि आपको वो सीन याद आ गए होंगे और एक बार दोबारा आप उसे देखने को फिर से लालायित हो जाएंगे।
2: इनका पूरा नाम मनीषा जी सज्जन लाल पुरोहित था और 15 जनवरी 1921 में ये जयपुर में पैदा हुए थे। और वो दौर जो था वो अंग्रेजों के जमाने का दौर था, ब्रिटिश लोगों का राज था। और इनको लेकिन जो सबसे ज्यादा इनका जो मन था फिल्मों की तरफ ये झुकाव शुरू से रहा और ये गीतकार बनना चाहते थे
1: जी।
2: और इस चक्कर में 1941 में ये जयपुर से कलकत्ता चले गए, क्योंकि उस दौर में कलकत्ता में फिल्में बना करती थी, आप बेहतर जानते हैं।
1: गढ़ था उस समय फिल्मों का
2: जी। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों की थी उस समय वहां उनकी लेबोरेटरी वगैरह भी थी। और यही वो दौर था जबकि इनको मासूम, चौरंगी इन फिल्मों में काम मिला, लेकिन वहां इनका मन ज्यादा लगा नहीं और वहां से ये गए मुंबई। और यहां आकर उस समय के बहुत ही नामी निर्देशक केदार शर्मा साहब से इनकी मुलाकात हो गई। बस मुलाकात इनसे हुई, उसके बाद जो एक और बड़े कलाकार थे गजानन जागीरदार साहब, जिनके बारे में ज्यादा क्या कहें, सब लोग जानते हैं उनको,
1: ऐसे बड़े बड़े नाम जी।
2: और उसके बाद तो इनकी गाड़ी जो है वो चल पड़ी। इनकी शुरुआत हुई थी सिर्फ 35 रूपए से शुरुआत हुई थी।
1: 35 रूपए की सैलरी उस वक्त अच्छी खासी हुआ करती थी। और हम श्रोताओं को बताना चाहेंगे की फिल्म मीना जो 1944 में आई थी उसके डायलॉग्स भी सज्जन साहब ने लिखे थे। और 1946 की फिल्म जो दूर चली रिलीज हुई थी उसमें गीत लिखे थे, एक पोएट व्यक्ति थे, कवि थे वो, तो जाहिर है कि उनका ये जो शौक था ये फिल्मों में जाहिर हुआ। धन्यवाद फिल्म के भी गीत उन्होंने लिखे थे और कुछ पृथ्वी थिएटर्स के जो ड्रामे हुआ करते थे उसमें वो एक्टिंग भी करते थे।
2: अब उनकी जो फिल्मों की बतौर हीरो जर्नी शुरू हुई 1950 में मुकद्दर फिल्म बॉम्बे थिएटर्स की थी और उसमें उनकी हीरोइन थी नलिनी जयवंत।
1: क्या बात है,
2: आज के जो हमारे श्रोता हैं उनको मैं याद दिला दूं कि नलिनी जयवंत ये वही हैं जो नास्तिक फिल्म में अमिताभ बच्चन की मदर बनी थी।
1: हाँ, और नलिनी जी पर तो बहुत सुंदर सुंदर गीत एक जमाने में फिल्माए गए थे। मुझे याद है हम एक प्रोग्राम में विविधा के ही नलिनी जी की रिकॉर्डिंग भी सुनवा चुके हैं, तो हमारे श्रोता और भी इंतजार करें आगे भविष्य में।
2: ये समझ सकते हैं श्रोता कि किस जमाने में कहां से एक कलाकार की जर्नी शुरू होती है और वो वहां से शुरू होके कहां विक्रम बेताल तक पहुंचता है। अब अगर बीच के कुछ एक दो फिल्मों के नाम लूं तो बहुत से श्रोता जो हैं उनको तुरंत याद आ जाएगा कि सज्जन कौन है।
1: जॉनी मेरा नाम
2: जी,
1: उसमें उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल था, याद है आप लोगों को,
2: राय साहब भूपिंदर सिंह
1: जी।
2: जो राय साहब भूपिंदर सिंह को उनका भाई रणजीत सिंह यानी प्रेमनाथ कैद करके रख लेता है
1: जी। हाँ,
2: वो
1: और उन पर एक बहुत मशहूर गीत भी फिल्माया गया है।
2: वो फिलहाल हम आपको गाना नहीं सुनवा सकते हैं, लेकिन आपको एक और फिल्म याद दिलाता हूँ मनीषा जी।
1: याद दिलाइए,
2: चलती का नाम गाड़ी।
1: हाँ, उसमें भी बहुत दिलचस्प किरदार
2: जी
1: सज्जन साहब का था और
2: विलन थे
1: थोड़ा सा जी। हाँ, थोड़ा नेगेटिव रोल था। खैर, आपको बहुत कुछ याद आ गया होगा, हमने सज्जन साहब के बारे में बहुत बातें की, अब उनकी आवाज सुनते हैं।
2: बिल्कुल
3: सज्जन साहब, शुरुआत आपकी हुई फिल्मों में करेक्टर आर्ट से या कि हीरो से, आजकल आप दोबारा जब फिल्मों में आए तो ज्यादा आप करेक्टर रोल्स में देखे।
4: अब ये देखिए कि शुरुआत हुई हमारी फिल्मों में एक जूनियर आर्टिस्ट जो पहले एक्स्ट्रा कहलाया जाता था, उसके बाद में अरसे तक ये चला, 7-8 बरस तक चला, और उसके बाद में फिर पृथ्वीराज जी का पृथ्वी थिएटर हमने ज्वाइन किया।

0: वहाँ कुछ अच्छे रोल मिलने लगे तो फिल्म वालों ने भी हमको बुलाया और फिर फिल्मों में हीरो बने। काफ़ी अरसे तक हीरो रहे। नरगिस हमारी हीरोइन थी, मीना कुमारी थी, गीता वाली थी। और उसके बाद में हम बुढ़े हो गए समझे, तो हम हीरोइन के बाप बन गए, हीरो के बाप बन गए, और वो सिलसिला आज भी चालू है और रहे।
1: लेकिन आपको ये सब कुछ अजीब नहीं लगता?
0: बिल्कुल नहीं अजीब लगता। हमने तो ये समझा कि जैसे जूनियर आर्टिस्ट थे तब भी नशा लेके काम करते थे, हीरो थे तब भी मजा लेके काम करते थे, और आज भी जो रोल मिलता है हम उसके अंदर अपना पूरा मन लगाते हैं और उसके बाद में अपनी तरफ से अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं।
1: आजकल आपको, अब भी इस नए जमाने में जब आप काम करते हैं और आर्टिस्टों के साथ और किरदारों के साथ फिल्म में, तो जैसा पहले आपको सुकून मिलता था आर्टिस्टों के साथ काम करते, क्या आजकल भी इस नए जमाने में ऐसा लगता है कि नहीं?
0: ये तो
1: तो या ऐसा लगता है कि
0: असंभव
1: समथिंग इज रॉन्ग समवेयर?
0: नहीं, ये तो असंभव है कि वैसा का वैसा सुकून कैसे मिल सकता है। आप जनरल बात ये समझिए कि पहले डायरेक्टर लोग भी कुछ कहानी ऐसी लेते थे जिसमें चरित्र चित्रण होता था, कुछ कहने को बात होती थी, कुछ दिखाने को बात होती थी, अभिनय करने का मौका होता था, और इत्मीनान से फिल्म बनती थी। तो मतलब कुछ सिखाया समझाया भी जाता था और फिर वो की वो बात उस चरित्र में से और उस कलाकार में से बाहर निकाली जाती थी। अब तो ऐसी आपाधापी चल रही है, भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़, उसमें किसी को फुर्सत नहीं है कि वो कहानी को देखे, कि चरित्र चित्रण देखे, कि अभिनय देखे, कि बाकी की बातें देखे। और उसके बाद में जब दो दो शिफ्ट हैं, तीन तीन शिफ्ट हैं, अब कोई आदमी सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे ही फिल्मों में काम करने के लिए आता है और दिन में 5-6 जगह काम कर रहा है, तो उसके साथ के काम वालों की तरफ किधर जान जाएगा डायरेक्टर का, और उसकी तरफ भी जाएगा तो उसके नजर घड़ी पर है, अभी ये आया है, अभी 1 घंटे 1.5 घंटे में भाग जाएगा, तो अब वो बात रही नहीं, उसमें कोई मजा नहीं रहा। हम जैसे स्टेज पे जाके 1 मैन शो करते हैं अपने, मतलब एक शो करते हैं समझो कि 6-8 महीने के लिए बैटरी चार्ज हो गई, वहां कोई हमारे सामने बंदिश नहीं है। शाइलॉक भी करते हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का सर जेफना पंडरनाथ करते हैं समझे, गुरुदेव टैगोर क्या करते हैं, बिना पैसे का भोज करते हैं, हफीज जालंधरी का अभी तो मैं जवान हूँ इसको अभिनय करके बताते हैं, पेंटोमाइम करके बताते हैं। हमने अब तक 74 शो किए हैं समझे, लंदन में भी किए तो अमेरिका में भी किए। तो कहने का मतलब ये है कि हम, हमारी ये जो भूख है या हमारी ये जो एक इच्छा है कि कुछ किया जाए, वो हम वहाँ पूरा करते, घर पे थोड़ी बैठे रहते। अगर जो हमने वहाँ परेशान किया या परेशान हुए तो उसमें सबकी गड़बड़। इसलिए मैं अपनी पोजीशन जानता हूँ, मैं इसलिए ना तो दखल देता हूँ और न ये उम्मीद करता हूँ कि मेरे दखल देने से यहाँ कुछ होने वाला।
1: मतलब आपको सेटिस्फेक्शन तो मिलती रही?
0: सेटिस्फेक्शन इतनी है भाई कि हम अपना काम ईमानदारी से करने की कोशिश कर, बस ये
1: ज्यादा सेटिस्फेक्शन कहाँ मिली, थिएटर में या कि फिल्मों में?
0: हमेशा थिएटर में, हमेशा थिएटर में मिली है, मिल रही है और मिलती भी रहेगी। हमने स्टेज पे काम करके वापस आए कि नहीं आए, हम जूनियर आर्टिस्ट थे समझे, अभिनय तो उसमें भी बराबर करना है। और आज का जमाना एक ऐसा आया है कि जिसमें हम स्टेज अभिनय या फिल्म अभिनय या टीवी अभिनय समझे, या कलर फिल्म की अभिनय और ब्लैक एंड व्हाइट की अभिनय, ऐसे ही तो कोई अलग अलग भेद तो है नहीं, सब जगह अभिनय।
1: हमारे यहाँ के जो लोग हैं आजकल, तकरीबन 90% लोग हैं, वो सब फिल्मों में आना चाहते हैं, चाहे वो इंजीनियर है साहब, चाहे वो क्लर्क हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, लेकिन सब चाहते हैं कि हम अपने आप को पर्दे पर देखें।
0: आपके दिल और दिमाग के अंदर ये जो परसेंटेज है वो शहरी आबादी को देखते हुए है समझे। आप एक काम कीजिए, जब आपको फुर्सत मिले 8-10 दिन की, तो किसी बहुत दूर देहात में चले जाइए जहाँ रेलगाड़ी नहीं जाती और बस भी नहीं जाती और सड़क भी नहीं है समझे, और कम से कम वहाँ 400-500 आदमी आपको मिलेंगे जो रहते हैं, उनमें से पूछे कितने लोग फिल्मों में जाना चाहते। तो ये 90% वगैरह ऐसे एग्जेजरेशन नहीं करना चाहिए अपने को, काफी लोग,
1: काफी लोग
0: जो शहर, जो शहर
1: नहीं,
0: मुंबई हिंदुस्तान नहीं है, तो पढ़े लिखे लोग अगर जो इसकी तरफ झुकाव है उनका, तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, ये चीज ही ऐसी है। मगर उसके बाद में अगर जो मेरी आंखें कमजोर समझे, और उसके बाद में मेरे दिल में मैं ये ख्वाहिश पालूं कि मैं तो पायलट बनूंगा, मैं तो पायलट ही बन के रहूंगा, तो ये गलत बात है समझे। मेरा नाक टेढ़ा, मेरी शक्ल सूरत ठीक नहीं, मुझे पूरी हिंदुस्तानी बोलनी आती नहीं, मुझे अभिनय की ABC मालूम नहीं, मैंने भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का नाम सुना नहीं, कुछ पढ़ा नहीं, कुछ ये अनुभव किया नहीं, रंगमंच के ऊपर पांव रखे नहीं, कभी रखे तो पसीना आ गया, और उसके बाद में दिल में ये अरमान पालना कि नहीं मैं तो बस एक्टिंग ही करूँगा और मैं तो अपने आप को पर्दे पर ही देखूंगा, तो उसका इलाज आप और हमारे पास नहीं है समझे। और उनको ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए समझे, एक्टिंग करना है, बर्न योर बोट्स, सारी तैयारी करके आइए, उतरिए मैदान में, आजमाइए अपनी तकदीर।
1: जब आप खाली होते हैं तो अपने वक्त का इस्तेमाल कैसे करते हैं?

0: फिल्मी मैगजीन पढ़ते हैं या
1: नहीं,
0: कुछ
1: नहीं,
0: और
1: नहीं,
0: करते
1: नहीं,
0: हैं?
1: मेरे घर में देखिए,
0: पोइट्री वगैरह लिखते हैं क्या?
1: ये भी लिखता हूँ, इसमें क्या चोरी थोड़ी कर रहा हूँ। हमने कुछ गीत लिखे हैं, समझे। हम शुरू शुरू में मतलब इंडस्ट्री में जब आए तो एज ए डायलॉग राइटर और सॉन्ग राइटर ही के तौर पे आए थे। फनी मजूमदार ने एक पिक्चर बनाई थी दूर चले, तो उसके गाने भी हमने लिखे थे और डायलॉग भी हमने लिखे थे, समझे।
0: आप क्या क्या करते थे?
1: कमाल है, मैं अपनी मर्जी से तो नहीं करता, ऊपर वाले ने कुछ दिया है, समझे, तो वो करते हैं। तो आज भी मैं अपने गीत लिखते रहता हूँ। जब चीन ने अटैक किया था 1962 की बात है शायद, समझे, उस वक्त हमने काफ़ी वैसी वीर रस की कविताएं लिखी, 4 एडिशंस उस किताब के छपे, नेहरू जी तक को सुनाई, लाल किले से पढ़ के सुनाई कविताएं, समझे। और उसके अलावा गीत तो चलते ही रहते हैं। ये गीत मैं चाहूं तब थोड़ी है, तो अपने आप आते हैं। वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकले होंगे गान, और निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो ये तो आ जाती है, तो लिख देते हैं, समझे। अब मेरा प्यार मुझे लौटा दो, मैं चाह करके थोड़ी लिख सकता था। चुपचाप अकेले छुप छुप के मैं गीत किसी के गाता हूँ, और दिल के जख्मों को छील छील मैं अपना जी बहलाता हूँ। तो हम अपना जी बहलाते रहते हैं, समझे। तो वो है, बगीचे के अंदर काम है, बहुत कुछ पढ़ने को बाकी है, समझे। और उसके बाद में जैसे हमने आपको बताया कि हम रेडिएशन की एक एग्जीबिशन तैयार कर रहे हैं, जिसमें जब सारा एटमॉस्फेयर रेडिएशन से सरचार्ज्ड हो जाएगा तो ये जो जीवित लोग हैं उनके ऊपर क्या असर होने वाला है, समझे। तो वो हमने 250-300 पीसेस बना लिए हैं और वायदा किया अपने आपको 500 पीसेस तैयार होंगे तो हम एग्जीबिशन बाहर निकालेंगे। बहुत करने को काम है जी, बहुत काम है।
2: मनीषा जी, ये रिकॉर्डिंग सुन के सचमुच बहुत अच्छा लगा
3: जी, बहुत अच्छा लगा।
2: सज्जन कुमार साहब, उन्होंने लगभग सभी बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया
3: जी हाँ।
2: अमिताभ बच्चन साहब के साथ भी रहे वो। अब यहाँ मैं बताना चाहूंगा जो बड़ी दुखद बात है कि 17 मई 2000 में सज्जन साहब ने इस संसार से अपने आप को बिल्कुल दूर कर लिया, वो चले गए। और जब वो चले गए वाली बात है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं किस राजा विक्रम ने उनकी बात का जवाब दे दिया, तो वो नाराज हो गए और बोले, तू बोला तो मैं चला।
4: सच कहा विक्रम, पर मैंने तुम्हें कहा था ना कि तू बोला और मैं चला जाऊंगा, तू बोला और अब मैं जा रहा हूं।
3: श्रोताओं, हम याद कर रहे थे अपने जमाने के मशहूर अभिनेता सज्जन साहब की, उनकी रिकॉर्डिंग आपने सुनी। सज्जन साहब के बारे में जब हम बातचीत कर रहे थे तब आपको याद होगा कि अमर जी ने जिक्र किया था कि वो आए थे गीतकार बनने और बन गए अभिनेता। वैसे ही एक कलाकार और फिल्म इंडस्ट्री में आए जो आए थे दिल में हसरत लिए गीतकार बनने की और बन गए निर्माता निर्देशक, और क्या ब्लॉकबस्टर फिल्में उन्होंने दी। जी हाँ, हम किसकी बात कर रहे हैं?
2: प्रकाश मेहरा साहब की। और ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, इसमें कोई सस्पेंस नहीं है दोस्तों, बस ये है कि रेडियो में काम करते हैं ना तो थोड़ी आदत हो जाती है हमारी इस तरह से बोलने की कि ढंटन टन, वो फिल्मों में नहीं होता है, वो बच्चे जब कहानी सुनाते हैं।
3: आप तो ऐसे लग रहा है कि जैसे सच में प्रकाश मेहरा साहब की
2: ये वो जोर की फिल्म है ना, कि जब हम पिक्चर देख के आते थे और हमसे कोई पूछता था कौन सी फिल्म देखी, आज तो यार हमने देखी मुकद्दर का सिकंदर। अच्छा, फिर क्या होता है? क्या होता है? अमिताभ बच्चन आता है और मोटरसाइकिल चलाता है, और उसके बाद क्या? ढंटन टन, बस वो कुछ इसी तरह से हम बचपन में भी कहानियां सुनाया करते थे, सुनते थे। तो प्रकाश मेहरा साहब का नाम आते ही मुझे भी वो ढंटन टन याद आ गया, क्योंकि उस दौर की फिल्में थी। और एक से एक फिल्में बनाई मनीषा जी उन्होंने। बिजनौर से आया एक बंदा, आया था गीतकार बनने। एक फिल्म दोस्तों याद होगी आपको, एक कुंवारा एक कुंवारी, उसका एक गाना, मैं मनीषा जी उसके बोल आपको बताता हूँ।
3: बताइए।
2: वो बोल है, अगर दिल हमारा शीशे के बदले पत्थर का होता।
3: क्या बात है, बहुत प्यारा गीत है।
2: ना मानता ना रूठता, ना बार बार हंसता, ना जार जार रोता।
3: तो अमर जी, आपने इतने प्यारे गीत को याद दिलाया है
2: जी,
3: सुनना पड़ेगा, और फिर हम आगे एक रिकॉर्डिंग सुनवाएंगे श्रोताओं को।
2: तो चलिए सुन लेते हैं।

0: अमर जी
1: जी,
0: क्या गाना, वाह। बहुत दिनों बाद हमने इस गाने को सुना। न टूटता न फूटता, न मानता न रूठता, न बार बार हंसता, न जार जार रोता।
1: जार जार रोए प्रकाश मेहरा के प्रशंसक
0: जी।
1: 17 मई 2009 को, 45 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर में जन्म हुआ था
0: प्रकाश मेहरा साहब का।
1: और फिर ये आ गए मुंबई। आए तो थे ये गीतकार बनने, मनीषा जी
0: जी,
1: लेकिन शुरुआत में आप तो जानती हैं, फिल्म हमारी जो माया नगरी है यहाँ पे बहुत पापड़ बिलवाती है, तो इन्होंने पहले प्रोडक्शन कंट्रोलर का काम किया। उस हैसियत से अपना जब काम ये कर रहे थे, उसके बाद इनको फिल्म मिली हसीना मान जाएगी,
0: शशि कपूर साहब की,
1: बिल्कुल। और उसमें इन्होंने गाना भी लिखा और वो हिट भी हुआ।
0: कौन सा वाला गाना?
1: हसीना मान जाएगी टाइटल सॉन्ग जो था वो
0: इनका
1: था। और भी कई गाने इन्होंने लिखे और बाद में तो बहुत से गाने लिखे। और मनीषा जी, यहाँ मैं आपको बता दूं कि खान ब्रदर्स फिरोज खान और संजय खान साहब की एक बड़ी मशहूर फिल्म थी मेला, गोरी के हाथ में चांदी का छल्ला, ऐसी हो किस्मत मेरी भी अल्लाह,
0: याद आ गया वो भी गाना। आज न जाने क्यों बड़े दिलचस्प गीत आपकी जबान से।
1: ये भी डायरेक्ट उन्हीं ने की थी फिल्म, प्रकाश मेहरा साहब।
0: जी हाँ, जी हाँ।
1: तो इस तरह से इनका ये सिलसिला चलता रहा। और उसके बाद इन्होंने वो किया जो इतिहास में, मतलब प्रकाश मेहरा को भी अमर कर गया और एक और कलाकार को अमर कर गया,
0: जिसने हमें महानायक दिया। फिल्म बनी जंजीर।
1: मनीषा जी, फिल्म जंजीर से जुड़े कुछ किस्से हैं, अगर आप कहें तो मैं सुनाऊं।
0: बिल्कुल,
1: आप फिर रिकॉर्डिंग बाद में सुनवाएंगे।
0: बिल्कुल, इंतजार करेंगे हमारे श्रोता, आप जरा किस्सा सुनाइए।
1: अब किस्से कुछ ऐसे हैं कि फिल्म जंजीर एक गीतकार की फिल्म थी
0: जी।
1: पहले तो जब प्लान की गई, जब लिखी गई, इसमें तब कोई गाने नहीं थे, लेकिन बाद में रिलीफ के लिए 4-5 गाने डाले गए, या जिसको आज आइटम सॉन्ग कहते हैं, उस जमाने में कैबरे कहलाते थे
0: जी।
1: और उसमें बिंदु जी पे जो फिल्माया गया कि दिल जला के, प्राण साहब पे कव्वाली फिल्माई गई, एक हीरोइन पे गाना फिल्माया गया, एक और था गाना दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए। आप जानती हैं गाना पिक्चराइज किस पे हुआ था?
0: आप ही बता दीजिए ना।
1: गीतकार गुलशन बावरा थे वो।
0: क्या बात है,
1: जो हारमोनियम बजाते हुए नजर आते हैं वो गीतकार गुलशन बावरा।
0: देखिए श्रोताओं, अमर जी के साथ जब किस्सा गोई शुरू हुई तो न जाने कितनी कितनी बातें निकलती चली गई।
1: अब जो दूसरा किस्सा है वो बहुत से लोग हालांकि जानते हैं कि जंजीर फिल्म पहले गई थी देवानंद साहब के पास। देवानंद साहब से इन्होंने गुजारिश की कि साहब आप इस फिल्म में काम कीजिए। तो जैसे मैंने पहले बताया कि पहले इस फिल्म में गाने नहीं थे, तो देवानंद साहब ने कहा कि देखो भाई, मैं तो वो फिल्में करता नहीं जिसमें गाने ना हो, तो मैं तो रोमांटिक फिल्मों का हीरो हूं। तो उन्होंने इनकार कर दिया। अब ये कहानी जो थी वो थी सलीम जावेद की
0: जी।
1: अब ये कहानी धर्मेंद्र साहब ने पहले ही खरीद ली थी।
0: अच्छा।
1: लेकिन वापस ले ली थी इन्होंने सलीम साहब ने उनसे।
0: अच्छा।
1: और फिर प्रकाश मेहरा साहब से गुजारिश की कि भैया आप इसको बनाइए। और फिर ये फिल्म गई राजकुमार साहब के पास।

0: लेकिन राजकुमार साहब ने तो अलग सा कारण बताकर उन्होंने इनकार कर दिया कि साहब मैं नहीं करूंगा। तब जाकर आपको पता है अनवर अली जो महमूद साहब के भाई थे
1: जी,
0: उनके साथ अमिताभ बच्चन शेयरिंग में रहते थे
1: यही मुंबई में
0: और अमिताभ बच्चन महमूद की फिल्म बॉम्बे टू गोवा कर चुके थे
1: जी।
0: और अनवर से कहकर महमूद से सिफारिश करवाई प्रकाश मेहरा पे। तब
1: अच्छा।
0: जाकर प्रकाश मेहरा अमिताभ बच्चन से मिले और मिलते ही प्रकाश मेहरा ने कहा कि ये है मेरा हीरो।
1: क्या बात है, कहां से कहां, कहां से कहां, कैसी बातें निकली।
0: अब एक और किस्सा है। अब ये बात तो आपको अच्छे से मालूम है कि प्राण साहब को खलनायकी से चरित्र भूमिकाओं में लेकर आए मनोज कुमार।
1: जी हाँ।
0: तो जब जंजीर फिल्म प्राण साहब ने साइन कर ली शेर खान के किरदार के लिए, उसी समय फिल्म शोर प्लान कर रहे थे
1: मनोज कुमार,
0: उसमें एक खान का किरदार था।
1: अच्छा।
0: और वो मनोज कुमार ने कहा कि भाई ये तो प्राण साहब ही करेंगे।
1: बिल्कुल।
0: और उन्होंने पूरे हक के साथ प्राण साहब से कहा कि ये तो आपका रोल है, आपको करना है। प्राण साहब का एक उसूल था कि प्राण साहब एक जैसा किरदार दूसरी किसी फिल्म में नहीं करते थे।
1: वाह।
0: और उस समय क्योंकि उन्होंने शेर खान वाला किरदार जंजीर के लिए एक्सेप्ट कर लिया था तो वो उन्होंने बना कर दिया। तब शोर में खान का किरदार प्रेमनाथ साहब ने किया।
1: क्या बात है। तो देखिए श्रोताओं, जिस तरह से मैं अवाक होकर के पूरे किस्से को सुन रही थी, मुझे लगता है इसी दिलचस्पी से आप भी सब रेडियो से कान लगाकर इस बात को सुन रहे होंगे कि अमर जी ने कौन सी जानकारी आपको दी। खैर श्रोताओं, अब हम आपको रिकॉर्डिंग सुनवाते हैं जो हम अपने खजाने से लेकर आए हैं। अमर जी, तो अब सुनवाएं इस रिकॉर्डिंग को।
0: बिल्कुल।
1: प्रकाश मेहरा साहब से बातचीत की कमल शर्मा जी ने।
2: प्रकाश मेहरा साहब, ये तो हमें मालूम है कि आपका जन्म बिजनौर में हुआ, मुंबई किस उम्र में आया?
3: ये बड़ा डिफिकल्ट सवाल है क्योंकि मैं आया फिर गया अराउंड 58, तो मेरे पास टोटल 42 रुपए थे। मैंने कहा भाई ये काफी है, यहाँ आके थोड़ी सी मैं बुनियादें बना गया था। फिल्म डिवीजन में इधर उधर दो चार लोगों से मेरा कांटेक्ट हो गया। हमारे एक दूर के रिश्ते के मामा थे, कजन मामा, वो मरीन ड्राइव पर रहा करते थे। तो मरीन ड्राइव एक ऐसा इलाका था जहाँ हमारे मामा रहते थे, उसके ठीक बगल में सामने वाली खिड़की पर चौथे या पांचवें फ्लोर पे ओपी नैयर थे, ये हारमोनियम पे गाने कंपोज किया करते थे, हम सुना करते थे। एक दिन हम पहुंच गए इनके पास, दो चार गाने मैंने उल्टे पुल्टे जैसे भी थे मेरे पास मैंने सुना दिए। बोले भाई काबिलियत है तुम्हारे अंदर, तुम कर सकते हो, मेहनत की बहुत जरूरत है। ये तो पूरा महीना मैं रिकॉर्डिंग में बहुत बिजी हूँ, तुम अगले महीने आके मुझे मिलने। वहां से एक साहब थे मौर्य साहब, वो फिल्म डिवीजन में प्रोडक्शन मैनेजर थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई यहाँ कुछ स्टॉक शॉट लेने विनोद देसाई आए थे, तो मुझसे कह रहे थे कि आपके पास कोई काबिल लड़का हो तो आप उसे हमारे पास भेजिएगा। उन्होंने मुझे खत दिया, मैं विनोद देसाई के यहाँ पहुँच गया। क्या जानते हो, ये जानते, एक सीन दे लिखोगे? हमने कहा साहब बताइए। हमने एकांत में बैठ के वो सीन लिख दिया, उन्हें बहुत पसंद आया। बोले 150 रुपये महीना हम तुम्हें देंगे, तुम्हें कहीं रहने की इसकी उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा मरीन ड्राइव का इतना बड़ा फ्लैट है, हमारी पत्नी जो है वो सेपरेट अलग जगह रहती है, वो अब पत्नी से सेपरेट हो गए थे, बेटा हमारा साथ है, और ये सामने जो बालकनी है समुद्र की हवा थी, तो बालकनी में उन्होंने सोफा कम बेड था, सिटिंग बनाई हुई थी, ग्लास से कवर कर ली थी। बोले ये बालकनी तुम्हारा बेडरूम है, बाकी हर चीज़ की फैसिलिटी यहाँ है, तुम काम करो। उसी बिल्डिंग में शंकर जयकिशन थे, जयकिशन 5 माले पे, और 6 माले पे थे मोहन सहगल। अब हमारी एम्बिशन ये नाग देवता और नागपंचमी और ये सब थी नहीं, हमारी एम्बिशन थी सोशल फिल्में। तो मोहन सहगल की हमने न्यू दिल्ली कुछ 20 मरतबा देखी थी। नीचे ये दीवार पे शाम को मरीन ड्राइव की जो दीवार है, शाम को ये सब खलीफा जितने भी थे, जयकिशन भी और मोहन सहगल भी, विनोद देसाई भी, ये सब वहाँ दीवार पर बैठते थे। वहाँ दीवार पर बैठ के फ्यूचर प्लानिंग, कल सीन क्या होगा, परसों क्या होगा, उनके राइटर्स भी होते थे वहाँ, मोहन सहगल भी आते थे। मोहन सहगल का विनोद का एक ही बिल्डिंग में चूंकि रहना था, तो और विनोद क्या चल रहा है, तुम्हारी पिछली फिल्म बहुत अच्छी गई भाई। बोले हाँ मोहन जी। अब मेरे दिमाग में ये कि मैं मोहन सहगल से बात कैसे करूँ, वरना विनोद देसाई मुझे निकाल दें। एक दिन लकीली मोहन सहगल लिफ्ट में अकेले थे, तो मैंने बोला मोहन जी ऐसे ऐसे है ना, आई एम वेरी एम्बिशियस पर्सन, मुझे कुछ करना है। अभी माइथोलॉजिकल ग्रुप में आगे कोई

0: भविष्य नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, आपके ग्रुप में है। कह लगे मेरी एक फिल्म खत्म हो रही है, अभी दूसरी शुरू होगी, मगर मैं विनोद से पूछ लूंगा, तुम यू डोंट वरी। वो ऐसा आदमी नहीं कि एक आदमी दो जगह काम कर सकता है, भाई काबिलियत है तो करो यार, मुझे मालूम है तुम्हारे बारे में। विनोद बहुत तारीफ करता है, बोलता ऑन द स्पॉट कोई भी सीन दो बैठ के लिख देता है। इन्होंने कहीं विनोद देसाई को बोला तो विनोद ने बोला जब मेरी शूटिंग नहीं होगी तो आपके यहाँ काम करे मुझे कोई एतराज नहीं है। बोले यार फिर तुम यहाँ फ्लैट से तो नहीं उसको निकाल दोगे, रहेगा यहाँ? बोले नहीं नहीं रहेगा मेरे पास ही, क्योंकि मैं इसे छोड़ नहीं रहा हूँ। इस तरह सिलसिला हमारा शुरू हुआ।
1: वो भी आपको बिल्कुल बेटे जैसा मानते थे,
0: वेरी वेल बिहेव पर्सन, इतना खूबसूरत उनका ट्रीटमेंट था मेरे साथ, उनसे ज्यादा सरशार सैलानी मरहूम जो राइटर थे, ग्रेट राइटर।
1: तो प्रकाश जी आप बेसिकली बनना क्या चाहते थे, राइटर बनना चाहते थे, फिल्म इंडस्ट्री
0: आए थे राइटर बनने? अच्छा उससे पहले का जो पीरियड है मौर्या साहब से और यहाँ तक, वो बहुत खतरनाक गया है। जब तक हम अपने मामा को मिले हैं तब तक हम फुटपाथों पर सोते थे, चने खाते थे, मैं उसके बाद जो किस्मत ने पलटा लिया तो वहीं हमारी फिर दोस्ती हो गई, काम करते करते बोनसागर के, और उसके तो हमारे दोस्त थे इंदू भूषण, बहुत पैसे वाले के बेटे, तो इंदू भूषण से दोस्ती हो गई। इंदू भूषण को बड़ा शौक था कि यार एक पिक्चर बनाएंगे, तो मैं देखिए मैं इंदू भूषण को यहाँ तक बोलता रहा कि इंदू भूषण तू थोड़ा सा ठहर जा, बेसिक चीजें मैंने जो है वो सीख ली, थोड़ा सा प्रैक्टिकल मुझे एक साल बोनसागर के साथ और काम करने दो, विल मेक ए फिल्म। और एक सब्जेक्ट है, हमारे मित्र हैं, मित्र हो गए थे वहां से, नमोन सहगल के वहां से, एस एम अब्बास, उनके पास एक सब्जेक्ट है, उन्होंने वो सब्जेक्ट मुझे सुनाया है हसीना मान जाएगी। मैंने कहा अब्बास साहब एक साल के बाद रुक जाइए, बहुत जबरदस्त प्रोड्यूसर इसके लिए हमारे पास है। एक साल के बाद हमने इनसे कहा कि सब्जेक्ट सुने, वो इंदू भूषण यंगस्टर, वो भी खाने पीने वाला आदमी, बड़े बाप का बेटा, परवाह उसे थी नहीं पैसे की, नोट तो वो ऐसे फेंकता था कि जैसे कोई

आशा भोसले का गाया हुआ भाभी फिल्म का ये गाना आपने सुना। गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने, धुन बनाई थी चित्रगुप्त ने, और अब आपको सुनवा रहे हैं राजेंद्र कृष्ण का ही लिखा और चित्रगुप्त के संगीत निर्देशन में सुहाग सिंदूर फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज़ है।

0: आप सुन रहे थे बारात फिल्म का ये गाना, मोहम्मद रफी और गीता दत्त के युगल स्वरों में। गीत लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई थी चित्रगुप्त ने।
1: आएगी जरूर,
2: पता है अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
2: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
3: चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है,
2: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
3: पल पल दिल के
2: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
2: तो फटाफट पोस्टकार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
1: खत लिख दे।
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अब आपको जो गाना सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है किंग कॉन्ग फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज में। बोल मजरूह सुल्तानपुरी के हैं, धुन चित्रगुप्त की है।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। आइए अब सुनते हैं सात समंदर पार फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और कमल बारोट की आवाजों में। शब्द रचना फारूक कैसर की है और सुरों में पिरोया है चित्रगुप्त ने।

0: या हुआ आवाजें थी मन्ना डे और लता मंगेशकर की।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से
3: मैंने पढ़ा, जाने कितनी उड़ान बाकी इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जाने

यादों की महफिल कार्यक्रम में अब सुनते हैं नवरात्रि फिल्म का गाना, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले का गाया हुआ। जी एस नेपाली के लिखे गीत को संगीत से संवारा है चित्रगुप्त ने।

मजरू सुल्तानपुरी का लिखा और चित्रगुप्त का संगीतबद्ध किया हुआ सैमसन फिल्म का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ों में। और अब सुनवा रहे हैं हम मतवाले नौजवान फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज़ है, जोड़ी है मजरू सुल्तानपुरी और चित्रगुप्त की।

बेजुबान, ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर की आवाज़ में गाना आपने सुना, प्रेम धवन के बोल थे और चित्रगुप्त का संगीत था। और अब सुनवा रहे हैं कल हमारा है, इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोलों को संगीत से संवारा है चित्रगुप्त ने।

प्यार की बाजी इस फिल्म का गाना आपने सुना गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ। इंदिवर के लिखे गीत को संगीत से सवारा था चित्रगुप्त ने। और अब सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत अली बाबा 40 चोर फिल्म से। आशा भोसले और उषा मंगेशकर की आवाज़ों में सुनते हैं ये गीत।

अली बाबा 40 शोर फिल्म का ये गाना बना कार्यक्रम का आखिरी गीत। और अब दीजिए यादों की महफिल से राजुल को इजाजत। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: अभी आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा मुंबई के कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी झालावाड़ चंद्रभागा चैनल है 3.2 MHz पर। 1 बजने को है तो प्रादेशिक समाचार होंगे जिन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से प्रसारित करेंगे।
1: यह आकाशवाणी का जयपुर अजमेर केंद्र है। कुछ थोड़ी ही देर में होंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें जयंती समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपये की हैं। तमिलनाडु में टीवी के पार्टी के संस्थापक सी जोसेफ विजय ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। श्री विजय की टीवी के पार्टी को 234 सदस्यों वाली विधानसभा में 108 सीटें मिली हैं और उन्होंने 120 विधायकों का समर्थन जुटाया है। श्री विजय 1967 के बाद राज्य के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो किसी भी द्रविड़ पार्टी से नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही और श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इन उपायों से संविदा कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी और वैधानिक रूप से दी जाने वाली राशियों के भुगतान में चूक कम हो सकेगी। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। 1 सप्ताह का ये शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार समावेशी और समान शिक्षा के दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। झुंझुनू के बगड़ कस्बे में करीब 150 साल पुरानी फतेह सागर और भूतनाथ तालाब अब नए स्वरूप में नजर आएंगे। केंद्र सरकार की अमृत 2.0

0: ओ योजना के तहत करीब 1,38,00,000 रुपए की लागत से दोनों तालाबों के कायाकल्प का काम शुरू हो गया है। परियोजना के तहत तालाबों के घाटों और सीढ़ियों का पुनरुद्धार किया जाएगा। तालाबों के जीर्णोद्धार से स्थानीय पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश भर में आज मातृत्व दिवस उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। ये दिन माताओं के योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मातृत्व दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि माँ सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि ममता, त्याग और समर्पण की सबसे पवित्र भावना है। उन्होंने कहा कि माँ हमारे जीवन की पहली गुरु होती है जो हमें संस्कार, साहस और सही मार्ग पर चलना सिखाती है। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर तेज गर्मी से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग के अनुसार अधिकांश जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 45.7 डिग्री सेल्सियस तापमान बाड़मेर में रहा, जैसलमेर में 45, फलौदी में 44.8, जोधपुर में 43.9, चित्तौड़गढ़ में 43.8 और बीकानेर में 42.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। विभाग ने आज जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर जिलों में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिनों तक पश्चिमी जिलों में तेज गर्मी और लू चलने की संभावना को देखते हुए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पूर्वी जिलों में इसके विपरीत आंधी और हल्की बारिश की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं FM 103.2 MHz पर। अब विविध अंगी कार्यक्रमों के लिए आइए आपको सीधे जोड़ते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा मुंबई के कार्यक्रमों से।
2: जब जो जो होना है तब तब वो होता है। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, इसे ना हम बदल सकते हैं ना आप। हा हा हा, क्या बात है। ये तो बस आनंद का संवाद नहीं, हकीकत है। हमें तो शाम गम काटनी है, जिंदगी अपनी। जाने वो कैसे लोग हैं जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। नसीब में जिसके जो लिखा है वो ही मिलेगा। आज तो हमें उन गीतों का सुरीला सफर पूरा करना है जो मैं चाहती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी फरमाइश, जो आपने गीत चुने हैं उनमें से भी कई सारे गीत शामिल हैं। तो अब बातों से बढ़कर गीत की तरफ चलते हैं। देखिए तो ज़रा कौन सा गीत पहला बना है। और हाँ, एक सवाल है। सवाल कुछ यूं है कि जो समय है उसकी उपस्थिति देखने के लिए घड़ी बनी, और एक वक्त था जब उसे सही तरह से देखने की भी ट्रेनिंग होती थी घर पर, जिसमें अक्सर जो सबसे मुस्तैद शिक्षक होती थी वो होती थी हमारी माँ। अब तो खैर डिजिटल घड़ियों का ज़माना है, और आपको ये बताना है कि आपको पहले पहल घड़ी से परिचित किसने करवाया था, और वो डिजिटल घड़ी थी या घंटा, मिनट, सेकेंड बताने वाली सुइयों वाली घड़ी थी, ये बताइए। और ये गाना सुनिए, बताइए कि प्रमुख कलाकार कौन है।

तो भाई जीवन का पहिया चल रहा है और इस संगीत को सुनने का आनंद लेते रहिए, ये हमारे एक साथी कह रहे हैं। बहुत सुंदर बात कही है आपने और सही जवाब भी आ गया है कि ये गाना रामपुर का लक्ष्मण का है, जिसमें रणधीर कपूर और रेखा दिखते हैं। और घड़ी के बाबत जो हमने पूछा था तो उसका जवाब सिर्फ यही आया है कि पिताजी के पापा ने सिखाई थी घड़ी देखना, सूर्य घड़ी थी वो। संदेश अब मुझसे खो गया है और मुझे मिल नहीं रहा है। हाँ, सूर्य वाली घड़ी थी और पहला परिचय घड़ी से मेरे पापा ने करवाया था। तो भाई आप भी अब बताइए ना कि घड़ी से पहला परिचय किसने कराया था। और अब बात जब हो रही है इबारत की, तो अगला शब्द जो बन रहा है, समय पर तो बात बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने की है और दुनिया की भी बात है, क्योंकि दुनिया जो है वो गोल तो है और कहीं ना कहीं हमारे रास्ते भी मिल जाते हैं। ये गीत भी हो सकता है, लेकिन कौन सा गीत आने वाला है ये सोचिए। एक श्रोता कह रहे हैं कि समय हर पल बदलता रहता है, जिंदगी उसी के अनुसार चलती रहती है। ख्वाब, मेला, मिलन, बहार, पायल, झनकार, तन्हाई, माँ की लोरी, दिल के तराने या फसाने, सुर में सुर मिला के चलते जाना है, यही है जिंदगी। और कुछ गानों का भी जिक्र किया है हमारे इन साथी ने। निस्वार्थ प्रेम, त्याग और समर्पण की मूरत, माँ सभी को मातृ दिवस की बधाई और शुभकामनाएं, ऐसा हमारे एक और श्रोता कह रहे हैं। परिवर्तनशीलता और उसकी अनिश्चितता और समय की परिवर्तनशीलता, उसकी अनिश्चितता और जीवन पर उसके गहरे प्रभाव का एक बहुत ही काव्यात्मक और दार्शनिक चित्रण है आज की इबारत। समय ऐसा संगीतकार है जो लगातार धुन बदलता रहता है। दुनिया का मेला इसी धुन पर बिगड़ता संवरता है। समय का गीत कभी सपनों की गूंज है तो कभी निराशा का वीराना। आशा और निराशा से इन्होंने मिलाया है, बिल्कुल सही बात है। आशा और निराशा भी होती है जब कुछ मिलता है या जब कुछ खो जाता है। ये भी कहा है कि ये जीवन के द्वंद्वों, मिलन और जुदाई, बहार और खामोशी की धुन छेड़ता रहता है। ये माँ की लोरी जैसा ममतामयी भी हो सकता है और आत्मसंघर्ष का प्रतीक भी हो सकता है। और भी कुछ बातें लिखी हैं, शब्द बताए हैं, समय हर पल सिलसिले, ख्वाब, मेला, मिलन, बहार, पायल, झनक, तन्हाई, माँ, लोरी, दिल के तराने या फसाने, सुर हो सकते हैं। वाह, क्या बात है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि समय के साथ बदलते संगीत की बात कितनी सही है। वाह, बिल्कुल सही है। आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम से जुड़कर आप बराबर अपने फीडबैक्स देते रहते हैं और हमें बताते रहते हैं कि कैसा लगता जा रहा है ये सफ़र। तो अब दुनिया के बारे में क्या कह रहे हैं।

बदली बदली सी इस दुनिया का ये जो राग है ये किस फिल्म का है ये आपको बताना है। और घड़ी को लेकर बहुत सारे संदेश आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे एक श्रोता बता रहे हैं कि हमारे पास पहले घड़ी जो थी उसमें चाबी दी जाती थी, यानी चाबी भरी जाती थी और दीवार पर टांगी जाती थी, लंबी घड़ी हुआ करती थी जिसमें कि हर समय घंटे के ऊपर आवाज़ आती थी टन टन की। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि हमें हमारी बड़ी बहन ने घड़ी में समय देखना सिखाया था। और एक और श्रोता ने कहा है, ये संदेश पढ़ लेती हूँ, ये घड़ी से अलग है लेकिन कार्यक्रम के बारे में है। मुझे कई बार लगता है कि आप लोगों के टेक्स्ट और प्लेलिस्ट में कोऑर्डिनेशन की कुछ कमी है। बुरा ना माने पर टेक्स्ट कुछ वेग सा लगता है, वैसे कार्यक्रम बहुत ही खूबसूरत है। देखिए टेक्स्ट को लेकर अगर आप उसके भाव पर जाएंगे तो आपको शायद उसी के हिसाब से, अगर आप प्लेलिस्ट के बारे में सोच रही हैं तो वो तो नहीं है। हाँ, उस टेक्स्ट में से आप जो बातें हो रही हैं उन बातों में हिस्सा लीजिए और कार्यक्रम में उस शब्द को चुनकर जो बहुत ही ख़ास शब्द दिख रहा है उसको चुनकर अपनी पसंद का गीत सुनिए। अगर आपकी पसंद इस प्लेलिस्ट से मिलती है जो कि गाने हमने चुने हैं आज के इस इबारत से। हाँ, घड़ी के बारे में एक और संदेश है, मेरे दादाजी ने मुझे सुइयों वाली घड़ी लाकर दी थी। सबसे पहले 1984 में 10वीं की बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होने पर घड़ी मिली थी। क्या बात है, समय की और घड़ी की बात हो रही है। 1975 में नौकरी कर 250 रुपये पहली बार कमाए और 245 रुपये की GMT सोना घड़ी लेकर हाथ में बांध कर समय देखा जिसमें सेकेंड मिनट घड़ी घंटे के कांटे होते हैं। जी हाँ, पहले तो ऐसी ही घड़ी होती थी। एक और साथी बता रहे हैं कि मेरे को घड़ी देखना मेरे बाबूजी ने और बड़े भैया दोनों ने एक बार में सिखाया था। और ऐसे ही परीक्षा लेने के लिए थोड़ी देर बाद पूछा कि बता घड़ी में अभी कितने बजे हैं। मैंने घड़ी देखी और बोला 1:30 बजे हैं। तब बाबूजी ने समझाया कि अभी 1:30 बजे हैं। शुद्ध हिंदी में 1 और 2 के साथ जब आधा जोड़ा जाए तो 1:30 और 2:30 कहा जाता है। जी हाँ, ये

1.5 का चक्कर जो है ये कई बच्चों के साथ होता है। एक और श्रोता कहते हैं कि पहले के ज़माने में चाबी वाली गोल अलार्म घड़ी अति घड़ी थी। सबसे पहले मेरे दादाजी ने उसे घड़ी में समय कैसे देखा जाता है ये सिखाया था। और एक और श्रोता बता रहे हैं कि बचपन में मेरी माता जी ने मुझे मुंबई से घड़ी लेकर दी थी और पहचान कराई थी, जिसमें सुइयां थी और चाबी रोज़ घुमाना होता था। पेंडुलम वाली बड़ी घड़ी थी, ये भी एक साथी ने बताया है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि सबसे पहले मुझे घड़ी की पहचान मेरे नाना जी के घर

और चाबी रोज घुमाना होता था। पेंडुलम वाली बड़ी घड़ी थी, ये भी एक साथी ने बताया है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि सबसे पहले मुझे घड़ी की पहचान मेरे नाना जी के घर दीवार पर एक ब्लैक घड़ी लगी थी, वो टिक टिक करती थी और जब घंटा होता तो तेज आवाज में टन की आवाज होती, तब मेरे नाना जी ने समय देखना सिखाया था। क्या बात है, समय की कितनी सारी यादें ताज़ा हो गई। और बात आज माँ की भी हो रही है, घड़ी की भी हो रही है, समय की भी हो रही है। और जो समय है वो जिस तरह सबसे बड़ा शिक्षक होता है, उसी तरह माँ भी होती है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? और ये गीत सुनकर बताइए किस फिल्म का है।

भाई हमारे साथियों ने तुरंत ही कहा कि इसमें पूछने की क्या बात है, ये तो गाना सुनकर ही समझ में आ गया है कि गीत गाता चल फिल्म का गाना है। बिल्कुल, जसपाल सिंह और साथियों की आवाजें हैं गीत और संगीत रविंद्र जैन का। बहरहाल आसान सवाल भी रहने चाहिए जिंदगी के इस सुरीले सफर में, क्योंकि कभी कभी आसान सवालों का भी दिल करता है। घड़ी से जुड़ी यादों के बारे में हमारी एक साथी ने शेयर की है अपनी बात। पुरानी घड़ी और बचपन का समय, बचपन की सबसे सुनहरी यादों में एक याद उस पुरानी घड़ी की है जो घर की मुख्य दीवार पर टंगी रहती थी। उसकी टिक टिक की आवाज़ सन्नाटे में भी एक संगीत की तरह महसूस होती थी। मुझे याद है स्कूल से घर आने के बाद मेरी पहली नज़र उसी पर जाती थी, ये देखने के लिए कि खेल का समय होने में अभी कितने मिनट बाकी हैं। क्या बात है। और एक और श्रोता कह रही हैं कि हमें तो अभी भी कुकू घड़ी ही सबसे अच्छी लगती है। क्या बात है भाई, घड़ियों के बारे में भी ये होता है कि कौन सी घड़ी कब मिली उससे भी बात होती है, जैसा कि हमारे इन श्रोता ने बताया है। सबसे पहले मुझे घड़ी मेरी सगाई के दौरान 21 साल की उम्र में मिली थी, वो जापानी घड़ी थी, बड़ी साइज और पीतल की चेन की थी और चाबी भरने वाली थी, तारीख भी दिखाती थी। हाँ, ये उस वक्त बड़ा चार्म होता था जब तारीख दिखाने वाली घड़ियां भी आ गई थी। एक और श्रोता ने बताया सुरेंद्रनाथ त्रिपाठी जी के मखमली स्वर संगीत से सजा संगीत सम्राट तानसेन का बेहतरीन गीत स्वर लता जी महेंद्र कपूर जी के स्वर में शैलेंद्र जी का लिखा सारगर्भित गीत। एक और श्रोता ने कहा है कि राजू जी, मेरी दादी माँ और नानी दोनों घरों में बड़ी पेंडुलम वाली घड़ी बैठक वाले कमरे में लगी थी और हर घंटे टन टन बोलती थी चाबी भरने वाली। फिर पापा लाए थे इलेक्ट्रॉनिक वॉल क्लॉक। एक और श्रोता बता रहे हैं कि मुझे हमारे टीचर ने घड़ी में टाइम देखना सिखाया था और हमारे घर एक टाइम पीस होता था जो मेज पर रखा होता था और उसमें सुबह 4 बजे का अलार्म देकर सोते थे। हाँ, वो सुबह 4 बजे वाला अलार्म लगाने वाला किस्सा भी तो है। बताइए आप सब में से किसने वो अलार्म लगाया है। और एक सवाल और है, ये बैकग्राउंड संगीत की बात जब हमने कही तो बताइए कि बहुत सी फिल्में ऐसी होती हैं जिनका बैकग्राउंड संगीत बड़ा खींचने वाला होता है, आकर्षित करने वाला होता है और कई बार याद भी रह जाता है। क्या आपको किसी फिल्म का कोई बैकग्राउंड संगीत अभी तक याद है? हो तो हमें बताइए और ज़रा इस गाने को सुनकर बताइए कलाकारों के नाम।

वैसे एक श्रोता ने बताया कि आज की भारत में कई ऐसे संकेत हैं जिनसे कुछ मुख्य शब्द उभरते हैं। मेरे हिसाब से आज के संभावित शब्द ये हो सकते हैं, समय, बैकग्राउंड संगीत, धुन, दुनिया, मेला, ख्वाब, सिलसिला, वीराना, मिलन, बहार, पायल, तन्हाई, गीत, माँ। आगे लिखा है, लोरी, सबक, दिल, नगमा, तराना, जिंदगी, इंतजार। एक और श्रोता कह रहे हैं कि यूं ही कट जाएगा सुरीला सफर कार्यक्रम का गीत नजर आएंगे इबारत को पढ़ने से। और ये ख्वाब के सिलसिले शब्द लेकर गीत

बहुत बहुत शुक्रिया। फिल्म के कलाकारों का नाम बताया, अमिताभ बच्चन और रेखा का नाम हमारे ज्यादातर श्रोताओं ने लिखा है, जया भादुड़ी और संजीव कुमार भी थे इस फिल्म में। अब मदर्स डे की बात है तो हमारी एक श्रोता कहती हैं कि आज मदर्स डे भी है और आज विविध भारती पर घड़ी की बात, तो वो दिन याद आया जब मैंने अपनी माँ की बात नहीं मानी और उनकी दी हुई एक बहुत महंगी और रेयर घड़ी खो दी थी। बात उन दिनों की जब मैं स्कूल में थी, स्कूल के लिए रेडी हो रही थी, बाहर बहुत तेज बारिश पर उस दिन स्कूल जाना जरूरी था। माँ ने चलते चलते कहा आज घड़ी मत पहन कर जा, बारिश में खराब हो जाएगी। मैंने बात नहीं मानी और ना जाने कैसे वो घड़ी रास्ते में गिर गई। बहुत दुख हुआ, लगा माँ की बात को मानना चाहिए था। हाँ, माँ की बात हमेशा माननी चाहिए। एक और श्रोता कह रहे हैं कि गणित विषय पढ़ते समय सचित्र अध्ययन किया गया था और घड़ी का ज्ञान तभी से है। विवाह में मिले घड़ी को इनके एक रिश्तेदार जो थे वो घड़ी देखने के बहाने कलाई से उतार कर ले भागे थे। अब घड़ी की पूर्ति गैजेट्स के रूप में मोबाइल और दीवार घड़ी भी है। क्या बात है। एक और साथी कह रहे हैं कि आज कलाई घड़ी कम पहनी जाती है क्योंकि मोबाइल फोन का चलन बढ़ गया है, मगर मैं हमेशा घड़ी पहनता हूँ। जी हाँ, घड़ी पर नजर रखने के लिए बहुत सारे लोग आज भी हमेशा कलाई में घड़ी पहनते हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि सुरीला सफर कार्यक्रम की परिकल्पना बड़ी निराली और मनोरंजक है। इसके पहले कुछ बातें, कुछ गीत, बाद में गीतमाला के विषय में कई बार दोहराए जाते थे, फिर भी चाहे वो कलाकार से जुड़ी हो या किसी विषय पर हो जिससे रुचि कम होती जा रही थी, लेकिन अब एक इबारत देकर उसमें कुछ शब्दों पर आधारित गीत सुनाए जा रहे हैं और श्रोताओं को भी सहभागी बनाया जा रहा है। अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक श्रोता कहती है कि राजू जी, बचपन में हमारे घर में अलार्म की घड़ी थी और उसके नंबर रात को चमकते थे, शायद रेडियम के थे। उस घड़ी का अलार्म बार बार सेट करने और सुनने में बड़ा मजा आता था, उसके कारण डांट भी मिलती थी। समय देखना तो माँ और पिताजी ने सिखाया। और हम घड़ी की बात कर रहे हैं, समय की बात कर रहे हैं।

0: तो कालखंड का कैसा बदलाव है वो अगले गाने में, लेकिन एक संदेश और है। हम छोटे भाई बहनों को हमारी दादी ने घड़ी देखना सिखाया था। वो हर एक घंटे बाद हमें पूछती थी, अभी कितने बजे, अभी कितने बजे। जो सही जवाब देता था उसे चॉकलेट मिलती थी। बैकग्राउंड संगीत वाले सवाल की बाबत हमारी एक श्रोता कह रहे हैं कि शोले फिल्म के बैकग्राउंड संगीत को सुनकर पहचान जाते हैं फट से, क्या बात है। अपनी एचएमटी के रिस्टवॉच वाली चाबी वाली घड़ी को याद किया हमारे एक श्रोता ने, जो उन्होंने पहली तनख्वाह मिलने पर 1980 में ली थी और आज भी पहनते हैं। एक और संदेश है, आज समय घड़ी की बात हो रही है तो बचपन की घड़ी वाला एक बात याद आ गई। मेले में तरह तरह की घड़ी मिलती थी, दशहरे के मेले में हमने खरीदी और स्कूल में पहन के चली गई। उस समय घड़ी देखना आता नहीं था और ना ही इतने घर में घड़ी हुआ करती थी। सिर्फ एक बाबूजी के पास घड़ी थी एचएमटी की, बाद में एक अलार्म घड़ी माँ के पास देखी थी। मैं घड़ी पहनकर जब स्कूल गई तो हमारी दीदी जी ने कहा कि घड़ी पहन के आई हो तो बताओ कितना टाइम हुआ, और मैंने हंस के कहा कि ये तो नकली घड़ी है, कितना बज रहा है, मुझे तो कुछ पता नहीं था। पर मैंने स्कूल का टाइम 10 बजे, तो मैंने बोल दिया 10 बजे, इनके स्कूल का टाइम होगा 10 बजे। और संयोग से वो घड़ी की सुई भी 10 पर ही थी। उन्होंने पूछा घड़ी देखना आता है, मैं बोली मैं नहीं, तो उन्होंने उन टीचर ने हमें घड़ी देखने सिखाया था। तब ज़्यादातर घड़ियां रोमन लिपि में ही आती थी जो हमारे समझ में नहीं आती थी। अलार्म घड़ी रहती थी। जब मैट्रिक बोर्ड का एग्ज़ाम शुरू हो रहा था तब मुझे घड़ी मिली थी। बाद में सासू माँ जब मुझे देखने आई थी तब मुझे घड़ी दी थी। और एक और श्रोता ने बताया कि मुझे मेरे भाई और बहन ने मिलकर एक साथ बताया था कि कैसे समय देखते हैं, तब मुझे आसानी से समझ में आ गया था। अब मैं बहुत सारे बच्चों को समय देखना भी सिखाता हूँ क्योंकि मैं गणित का अध्यापक हूँ, तो ये तो मेरा कर्तव्य भी हो चुका है। अब अगला गाना बहार शब्द आ रहा है, तो चलिए हम कालखंड के उस तरफ चलते हैं और सुनते हैं गाना। बताइए स्वर किसका है।
1: आई बहार आज, आई बहार बहार आज, आई बहार

आज फूलों का बुलबुल के दिया कोने को है, आज फूलों का बुलबुल के दिया कोने को है, आज खालों में संदल आने को है, आज प्यालों में उबटन आने को है, आज खालों में संदल आने को है, आज प्यालों में उबटन आने को है, आप तराने छेड़े नहीं गाने गाए नहीं, आओ शादी रचाए शोर हम सब नहीं।

अपना फिल्म के संगीत निर्देशक का नाम शिव हरी बताया हमारे साथियों ने, बहुत बहुत शुक्रिया। और घड़ी की भी कई सारी बातें हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि तब घड़ी की वैल्यू इतनी थी जितनी आज मोबाइल की है। एक और संदेश है, आजकल की तमाम डिजिटल तथा खूबसूरत घड़ियों के रहते हुए भी मुझे अब भी वही घड़ी अच्छी लगती है जो बचपन में पहली बार देखी थी, पेंडुलम वाली बड़ी सी लकड़ी की घड़ी, और जिसमें हर संडे को मेरे चाचा जी चाबी दिया करते थे। बाबा के जाने के बाद बहुत साल तक मैंने उसे मेंटेन रखा, लेकिन बाद में वो खत्म हो गई। एक और श्रोता बता रहे हैं, कितनी भी महंगी मोबाइल हाथ में ले लीजिए पर घड़ी पहनने का एक अलग ही अंदाज होता है। एक और श्रोता ने जानकारी दी है कि जर्मन की ताला बनाने वाले पीटर हैनलिन ने सबसे पहले 1505 में घड़ी बना ली थी। क्या बात है। एक और संदेश है कि हमारे विवाह में लेडीज घड़ी और जेंट्स घड़ी दोनों मिली थी, ज्यादा समय तक संभाल नहीं सके, खराब हो गई। एक और संदेश है, समय बड़ा कीमती है, समय का अपना महत्व है। नाना जी ने घड़ी देखना सिखाया था कि घड़ी की बड़ी सुई जिस पर हो उसको 5 से गुणा कर दो, छोटी सुई जिस पर हो उतने बचकर उतने मिनट। और एक और संदेश में गुजराती की एक कहावत है, माते माँ बीजा बागड़ा नावा, मतलब में आगे दूसरे लोगों का महत्व इतना है जितना रेगिस्तान में हवा का। कुछ शायद छूट गया है इस कहावत में, या जो अर्थ इन्होंने लिखा है उसमें कुछ छूटा है। अगर मैं सही हूं तो सही अर्थ के साथ एक बार फिर से अपना जवाब लिख भेजिए कृपया। और एक श्रोता कह रहे हैं कि समय का वक्त का वाकई बहुत बलवान है, समय कब कौन सा रंग बदलेगा कोई नहीं जानता। और आज चलते हैं सुरीले सफर पर, मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी दी हैं। समय कहता है मैं फिर ना आऊंगा, क्या पता मुझे हंसाऊंगा या रुलाऊंगा। इंसान जीना है, इस पल को जी ले क्योंकि इस वक्त को अगले पल तक ना रोक पाऊंगा। अभी भी वक्त है समझ लो, कीमत पैसों की नहीं समय की करो, फिर आपकी कीमत वक्त तय करेगा। क्या बात है। और बड़ा प्यारा सा संदेश, अम्मा तो गोंद की तरह होती है जो दिखती तो नहीं है पर जोड़ती सबको है, ब्रह्मांड की सभी माँ के लिए प्यार और आशीर्वाद का इमोजी बनाकर भेजा है। भाई हाँ, सच में सारी ब्रह्मांड की माओं के लिए ढेर सारा प्यार दुलार। और अब अगला शब्द आ रहा है पायल पर, तो देखिए ज़रा ये गाना सुनिए और बताइए कि किस फिल्म का है। और हाँ, हम आपको बता दें कि जो अभी हमने गाना सुना था वो डॉक्टर फिल्म से था। आवाज़ के बारे में हमने पूछा था कि किसकी आवाज़ है, अभी उस जवाब का हम इंतज़ार कर रहे हैं। ये गाना सुनिए।

फिल्म का नाम मेरे लाल, लता मंगेशकर की आवाज़, मजरूह सुल्तानपुरी के का लिखा गीत और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथियों ने घड़ी की बात भी की है और माँ के बारे में भी बात की है। एक श्रोता कह रहे हैं कि माँ की कदर जरूर करनी चाहिए, क्योंकि माँ जीवन में सिर्फ एक बार मिलती है। वो किस्मत वाले होते हैं जिनकी माँ होती है। पंकज मलिक साहब का नाम बताया हमारे सभी साथियों ने, कुछ ने वैसे KL सहगल जी का भी नाम लिया है, लेकिन ये गीत जो डॉक्टर फिल्म का हमने आपको सुनवाया था वो पंकज मलिक के स्वर में था। एक श्रोता कह रहे हैं कि मोबाइल में घड़ी आने के बाद लगभग सभी प्रकार की घड़ियां विलुप्त सी हो गई हैं। और एक ने संदेश में कहा है कि जब मैं बैंक में जाता था तब दीवार पर घड़ी टंगी घड़ी को 15 मिनट आगे रखता था ताकि देर ना हो और वक्त पर पहुंच जाऊं। एक और श्रोता का संदेश है कि कुछ घड़ियों में तो केवल डॉट होते हैं, नंबर होते ही नहीं, दिमाग घूम जाता है अभी भी उसको देखकर। अपनी पहली घड़ी अपने स्कॉलरशिप के पैसों से खरीदी थी, हमारी एक साथी ने बताया। वाह क्या बात है। एक श्रोता कह रहे हैं कि खराब घड़ी भी सही समय बताती है। जी हाँ, दिन में दो बार, बताइए कब कब। और एक श्रोता ने कहा है कि आजकल बहुत बड़ी बड़ी घड़ियां आ गई हैं, न्यू जनरेशन को बहुत अच्छी लगती हैं, पर मुझे छोटी नाजुक सी घड़ी अच्छी लगती है। मॉर्निंग वॉक के लिए, सिर्फ स्टेप गिनने के लिए मैं पहनती हूँ। घर पर होते हैं तो दीवार पर लगी घड़ी, बाहर जाते हैं तो रिस्ट वॉच जो पति देव ने खरीद कर दी है। क्या बात है। दुनिया में माँ वो शब्द है जिसमें पूरी कायनात सिमटी हुई है। माँ का प्यार निस्वार्थ और असीम होता है, जिसे शब्दों में पिरोना आसान नहीं है। हर साल माँ के बलिदान, त्याग और समर्पण के लिए मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन हम सभी अपनी माँ के प्रति सम्मान और प्यार जाहिर करते हैं। वैसे एक दिन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इस दिन हम उन्हें महसूस करा सकते हैं कि वे हमारे लिए जीवन में कितनी अनमोल हैं। समय का सुरहल पर बदलता रहता है, कभी उसमें ख्वाबों की मिठास होती है, कभी वीरानियों की सिसकी, कभी मिलन की बहार झनकती है, तो कभी तन्हाई की गूंज। उसके गीतों में माँ की लोरी भी है और जीवन का सबक भी। बचपन की वो शरारतें याद हैं, जब छुपाई हुई टेस्ट कॉपी अचानक सफाई में मिल जाती, या डिनर से पहले किचन में हमारी चोरी पकड़ी जाती तब अचानक हवा में तैरती चप्पर रिमोट या गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देता वो बेलन प्रकट हो जाता था। हमें सही गलत का फर्क समझाने की उनकी अपनी एक अनूठी भाषा थी। शायद वही हमारा पहला सबक था कि कर्मों का फल तुरंत मिलता है। माँ को का वो निशाना कभी खाली नहीं गया, चाहे वो शरारत रोकना हो या हमें सही रास्ते पर रखने की उनकी जिद। उन्होंने हमें अनुशासन की उस आग में तपाया ताकि हम कुंदन सके। आज हमारी हर कामयाबी और हमारा संभाला हुआ चरित्र दरअसल उनकी उड़ती हुई नसीहतों की देन है। उस सख्त प्यार को नमन जिसने आज हमें आसमान छूने के काबिल बनाया। क्या बात है। और इसी बात पर कार्यक्रम का अगला गाना, बताइए किस फिल्म का है और आवाज की

बहुत बहुत शुक्रिया सही जवाब के लिए। तलाश फिल्म का गीत, सचिन देव का संगीत निर्देशन, उन्हीं की आवाज में ये गीत आपने सुना, जिसे लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने। एक श्रोता लिखते हैं कि माँ शब्द एक छोटा सा भला ही हो, माँ वो इमारत है, वो पेड़ है जिसकी छांव में बैठकर दुनिया के सारे सुकून मिलते हैं। भगवान हर जगह नहीं रह सकता, इसीलिए माँ, आज मेरी माँ को दुनिया से गए 5 साल हो गए, लेकिन उनका एहसास आज तक मेरे साथ है, उसे मैं हर जगह महसूस करती हूँ। घड़ी के बारे में भी बहुत सारे संदेश हैं। मेरे पिताजी की शादी में मिली हुई घड़ी अभी तक मेरे पास चालू हालत में मौजूद है। वाह, सप्ताह में एक दिन निकालकर चाबी भर के रख देता हूँ, क्या बात है। गुजराती की कहावत के लिए हमने कहा था कि एक बार फिर से भेज दें, बिल्कुल भेजा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। माते माँ बीजा वगड़ा नावा, मतलब माँ के आगे दूसरे लोगों का महत्व इतना ही है जितना रेगिस्तान में हवा का। तो सोचिए भाई, रेगिस्तान में हवा का क्या महत्व है। एक संदेश में कहा है कि जब बच्चे छोटे थे तो मैं सभी घड़ियों को 10 मिनट बढ़ा कर रखती थी, आजकल इसे 5 मिनट कर दिया है, क्या बात है। और माँ को लेकर भी बड़ा एक दिल को छूने वाला संदेश है। लिखा है कि हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी, लेकिन सालों साल देखा है माँ को, उसके चेहरे पर ना कभी थकावट देखी, ना ममता में कभी मिलावट देखी। माँ भले ही पढ़ी लिखी हो या नहीं, पर संसार का दुर्लभ और महत्वपूर्ण ज्ञान हमें माँ से ही प्राप्त होता है। माँ को शब्दों में बांध पाना असंभव है। आगे लिखते हैं कि मैं मानता हूँ कि दुनिया का कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन माँ के बराबर, मेरी माँ के बराबर कोई और खड़ा नहीं होता। मेरे इंतजार में खुली आंखों में बस वही सो सकती है, मेरे दुख में मुझसे ज्यादा बस वही रो सकती है, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, क्या बात।

दिल को छूने वाला संदेश, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता ने कहा है कि खुशी को ढूंढने से गम मिलते हैं, ये गम या गम जिंदगी में हरदम मिलते हैं, जो दिल के सहारे दर्द बांट ले ऐसे लोग जिंदगी में कम मिलते हैं। तो जरा दिल से दिल मिलाकर बात करिए और इस गाने को सुनकर बताइए किस फिल्म का है। और हाँ, बैकग्राउंड संगीत के विषय में बहुत कम जवाब आ रहे हैं।

मेम साहब, फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज़, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मदन मोहन का संगीत। और अभी हमें जवाब तो नहीं मिला है, चलिए देखते हैं कि बैकग्राउंड म्यूजिक को लेकर क्या क्या जवाब आने वाले हैं। एक बड़ा ही मार्मिक संदेश मिला है। हमारे यहाँ जबलपुर में बरगी डैम में अभी कुछ दिन पहले क्रूज पानी में डूब गया था, जिसमें एक माँ ने अपने बेटे को आंचल में इस तरह से लपेटा हुआ था कि वो मरने के बाद भी छूटा नहीं था। इस दुर्घटना में माँ बेटे दोनों नहीं बच पाए। ऐसी ही होती है माँ, बस अपनी धड़कनों को अंतिम समय तक अपने लाडले या लाडली को देने के लिए उत्सुक। सिर्फ वही एक रिश्ता प्यारा सा। घड़ी को लेकर संदेश आया कि शादी के समय फोटोग्राफर ने मुझसे सवाल किया, घड़ी का वो समय बताएं जब घंटे और मिनट का काटा एक दूसरे पर हो और बजे भी उतने ही मिनट हो। तो उत्तर है 15:15 या 3:15 या 3:15। घड़ी मिनट दोनों काटे एक सीध में होंगे। क्या बात है, ये जवाब आपने फोटोग्राफर को बता दिया था या नहीं? मेरी दुनिया है माँ तलाश फिल्म का जो गाना था, उसके लिए कई श्रोताओं की बात आई है कि ये तो मेरी भी पसंद थी। और एक श्रोता ने कहा है कि मैंने एक ही पसंद लिखी थी, वो स्वीकार हो गई, तो धन्यवाद कहा है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते चलते इस गाने की झलक, वक्त ज्यादा नहीं है, गाना सुनिए, बताइए फिल्म का नाम।

जी हाँ, गैम्बलर फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें, नीरज के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। ये था आज के कार्यक्रम का आखिरी गाना जो कि झलक के रूप में आपने सुना। और अब इस कार्यक्रम से इजाज़त लेने का वक्त आ गया है। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन, विविध भारत।

0: हिंदी से रिले करेंगे। समाचार पहले अंग्रेजी में होंगे और फिर 2:15।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरा मुज्तबा विद मिड डे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being. C. Joseph Vijay takes oath as Chief Minister of Tamil Nadu along with 9 ministers. Himanta Biswa Sarma unanimously elected as leader of BJP Legislature Party in Assam. Punjab's industry minister remanded to 7-day ED custody in over 100 crore rupee GST fraud case. Russian President Vladimir Putin says Ukraine conflict may be nearing an end. And in Archery World Cup, Indian women's recurve team clinches gold, defeating host China in a shoot-off in Shanghai. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi participated in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru today. He inaugurated the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Addressing the gathering, the Prime Minister lauded the role of the Art of Living Foundation in promoting service, spirituality and social transformation.
2: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं और इन्हीं पुरातन संस्कारों से भारत की भी अनेक संस्थाओं को प्रेरणा मिलती रही है।
1: The Prime Minister also called for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being.
2: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि और इस प्रकार से काम करने वाली अन्य संस्थाएं भी, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
1: Mr. Modi also emphasized that societal participation was more powerful than political systems and was essential for nation building. The Prime Minister also launched the year-long projects of the Foundation on mental well-being, rural development, nature conservation and social transformation. Before proceeding to the Art of Living International Centre, the Prime Minister addressed BJP leaders and workers at HAL Airport in Bengaluru. The Prime Minister said BJP's victories in West Bengal, Assam and Puducherry reflect public support for the centre's policies and programmes. He said that people want a government that delivers good governance and fast solutions.
2: भारत की जनता कह रही है कि हमें पीड़ चाहिए,

0: raise awareness about lupus, which is a complex autoimmune disease in which the immune system mistakenly attacks healthy tissues and organs, causing widespread inflammation and damage to joints, skin, kidneys, heart, and lungs. Lupus has no known cure and often put devastating impact on daily life. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being. C. Joseph Vijay takes oath as Chief Minister of Tamil Nadu along with 9 ministers. Himanta Biswa Sarma, unanimously elected as leader of BJP legislature party in Assam, stakes claim to form government. Punjab's industry minister remanded to 7-day ED custody in over 100 crore rupee GST fraud case. Russian President Vladimir Putin says Ukraine conflict may be nearing an end. And in Archery World Cup, Indian women's recurve team clinches gold, defeating host China in a shoot-off in Shanghai. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी. जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंता बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। सरकार बनाने का दावा पेश किया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
2: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
2: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
1: प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए का शासन अब 21 राज्यों में है, जहां लोक कल्याण तथा देश की समृद्धि के लिए काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ

0: विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
1: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
0: तमिलक वेत्री कड़गम टीवीके पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: सी जोसेफ विजय एनुम नान तमिलनाडु अरसिन मुदलमेच्चर एन्र मुरैयिल एनदु गवनत्तिर्कुल्लावदुम तेरियवरुवदुमाना एन्द पोरुलैयुम முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ

0: बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि एनडीए का नेता चुना जाने के बाद श्री शर्मा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की।
1: आज सुबह गुवाहाटी में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में भाजपा के 8 विधायकों ने, जिनमें रंजीत कुमार दास, विश्वजीत दोईमरी और अजंता नियोग शामिल है, डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव नेता पद के लिए रखा। बैठक में उपस्थित अन्य सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद एजीपी और बीपीएफ के सभी विधायकों के साथ हुई संयुक्त बैठक में डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा को सर्वसम्मति से एनडीए का नेता स्वीकार किया गया। इन औपचारिक प्रस्तावों के बाद भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने आधिकारिक रूप से डॉक्टर शर्मा को भाजपा और एनडीए का नेता घोषित किया। निर्वाचित होने के बाद डॉक्टर शर्मा ने आज दोपहर को लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की। 102 विधायकों के हस्ताक्षर प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर शर्मा ने नई सरकार गठन का औपचारिक दावा पेश किया। एनडीए सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान में आयोजित होगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं।
2: 90 मीटर ऊंची क्रेन की सहायता से एक विशाल धार्मिक कुंभ को मंदिर के शिखर तक पहुंचाया जाएगा, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र जलाभिषेक अनुष्ठान संपन्न होगा। सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के विशेष अवसर पर भारतीय वायुसेना भी प्रभास पाटन की पावन धरती पर रोमांचक हवाई करतब प्रस्तुत करेगी, जिसमें हवा से हवा और जमीन से हवा में समन्वित उड़ान प्रदर्शन दिखाए जाएंगे। आज सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो के लिए हवाई निरीक्षण और रिहर्सल किया, जिससे आसमान में मनमोहक दृश्य देखने को मिले। आज हेलीकॉप्टर से मंदिर के शिखर पर पुष्प की गई। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। आज तिरुपति में संवाददाताओं से चर्चा में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, पुदुचेरी और तमिलनाडु में शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 दिन के तिरुपति दौरे पर हैं। नागालैंड सरकार ने गाड़ियों पर ऐसे नारों, स्टिकर, संकेतकों और पहचान चिन्हों के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है जो धर्म आधारित हैं, गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हैं और गैर कानूनी हैं। ये प्रतिबंध निजी और सार्वजनिक वाहनों पर लागू होगा। 30 अप्रैल को जारी अधिसूचना में वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे अधिसूचना जारी होने के 45 दिन के भीतर इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का ये शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुरुग्राम की धन शोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर जीएसटी के लेनदेन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। अरोड़ा को उनके आवास, उनसे जुड़ी संस्थाओं और हैम्पटन स्कॉर्ड रियल्टी लिमिटेड के एक कार्यालय सहित उनके 4 परिसरों की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष के भी जल्द समाधान की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि तनाव और बढ़ता है तो सभी पक्षों को भारी नुकसान होगा। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के साथ पहले से खराब रूस के संबंधों में

0: और कड़वाहट आ गई है। यूरोपीय नेताओं से वार्ता के बारे में पूछे जाने पर श्री पुतिन ने कहा कि ऐसी किसी भी बातचीत के लिए जर्मनी के पूर्व चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर उनके पसंदीदा नेता हैं। श्री पुतिन ने यह भी कहा कि स्थायी शांति समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। इस बीच दोनों देश रूस के वार्षिक विजय दिवस परेड के दौरान 3 दिन के संघर्ष विराम पर से भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच हुई वार्ता का पहला दौर असफल रहा था, वार्ता का दूसरा दौर नहीं हो पाया था। कतर भी अमेरिकी अधिकारियों के साथ मध्यस्थता के लिए काम कर रहा है। अमेरिका ने ईरान के साथ बातचीत में कतर को विशेष रूप से रहा है। ये दिवस ऑटो इम्यून रोग ल्यूपस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ल्यूपस का कोई ज्ञात इलाज नहीं है और ये रोजमर्रा के जीवन पर असर डालने वाली बीमारी है। और अब खेल खबरों के साथ है प्रशांत कुमार।
1: चीन के शंघाई में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। दूसरे चरण में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहोत की तिकड़ी ने मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार चीन को शूट ऑफ में हराया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है।
0: हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है। डच ध्वज वाला एमवी होंडियस आज स्पेन के ग्रेनाडेला बंदरगाह पर पहुंचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय संघ द्वारा स्पेन से यात्रियों को निकालने का अनुरोध किए जाने के बाद ये जहाज 6 मई को टेनरिफ के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 73वां संस्करण आज सुबह दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसमें रक्षा बलों के जवान भी नागरिकों के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। और अब जानकारी मौसम की। गुजरात और राजस्थान में कल तक लू चलने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी बनी रह सकती है। अगले 7 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिन उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के हिमालय से सटे इलाकों में गरज चमक का अंदेशा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंत बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। आइए सुनते हैं कालजयी गीतों का कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

माँ की ममता भरी गोद का कोई अनमोल है और उसका कोई सानी नहीं है। जागृति फिल्म का ये गाना आपने सुना, आशा भोसले की आवाज़ में प्रदीप के बोलों को संगीत में ढाला था हेमंत कुमार ने। और आइए अब सुनते हैं फिल्म लाजवंती का ये गाना।

0: ए लो बच्चो आन मिले हम फूल से जैसे मिलती है शबनम, तुम हो हमारे हम है तुम्हारे कैसे न मिलते चांद सितारे।
1: बाप हमें मामा जी करना तुमको पड़ा है नीचे उतरला।
0: अरे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये तुमने क्या पूछा, जो तुमसे झुक कर मिलता है वो है सबसे।

0: मामा जी एक बात बताना, सच सच कहना, कुछ न छुपाना। हम तो तुम्हें थे रोज बुलाते, रोज तुम्हारे गीत थे गाते, और कभी तो तुम न आए, आज तुम्हें हम कैसे भाए।
1: अच्छा अच्छा बतलाता हूँ, बिल्कुल सच्ची सच्ची, ठहरो पीछे बतलाऊंगा, पहले दो एक पप्पी।

0: मामा जी न देख तो आओ, ये बुढ़िया है कौन बताओ, टुक टुक हमको ताक रही है, बैठी चरखा काट रही है।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ ना ना, यूँ ताना मत मारो, ये तो मेरी माँ है प्यारो।
0: मेरी माँ भी मामा प्यारे रहती है अब देश तुम्हारे, उससे तुम एक बार मिला दो, उसको मेरे पास बुला दो।
1: हाँ हाँ मुन्नी, दूर नहीं अब तुझसे तेरी माता, तुझ पर तो उसकी ममता का साया है लहराता। एक तू ही क्या, मुझको भी अब

0: आशा भोसले, मन्ना डे और साथियों का गाया हुआ लाजवंती फिल्म का ये गाना आपने सुना, जिसे लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई थी सचिन देव बर्मन ने। सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत,
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से,
3: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ा।

0: बाकी इस परिंदे में जान बाकी। और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर जाने

सदाबहार नगमे प्रोग्राम की अगली पेशकश टैक्सी स्टैंड फिल्म से है, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। बोल मजरूह सुल्तानपुरी के हैं और संगीत से सवारा है चित्रगुप्त ने।

फिल्म काली टोपी लाल रुमाल का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई थी चित्रगुप्त ने। और अब एक मीठा सा नगमा चंदन फिल्म से सुनते हैं, राजेंद्र कृष्ण का लिखा और मदन मोहन का संगीतबद्ध किया हुआ।

0: आए दिन बहार के फिल्म का ये प्यारा सा गीत आपने सुना, आशा भोसले का गाया हुआ। आनंद बख्शी के बोलों को संगीत में पिरोया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। वाकई एक खत में क्या क्या समाया होता है, प्यार, इकरार, इंतजार और भी बहुत कुछ। तो चलिए अब अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। लव इन टोक्यो फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, लता मंगेशकर की आवाज है।
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे मुंबई से प्रसारित विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम FM 103.2 MHz पर आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से। आइए आप सुनते हैं दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम पॉडकास्ट श्रृंखला पीपल्स पद्मान आकाशवाणी।
2: किंग्स विल लॉक हॉर्न्स विद लखनऊ सुपर जायंट्स इन चेन्नई एट 3:30 PM एंड दैट इज द एंड ऑफ दिस न्यूज़ बुलेटिन।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और हम अब आप तक पहुंचाने जा रहे हैं कुछ फिल्मी तराने। पहला नगमा हमने लिया है फिल्म आपकी कसम से और स्वर है किशोर कुमार और लता मंगेशकर का।

FM 103.2 MHz पर आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है। आइए सुनते हैं मुंबई से प्रसारित विविध राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

आशा फिल्म के इस गीत के साथ ही अब आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग। आज के कार्यक्रम में सुनिए नाटक पोस्टमैन का दूसरा और अंतिम भाग। मूल लेखक के रघुपति, हिंदी अनुवादक पी एस कृष्णा स्वामी। तो सुनिए पोस्टमैन नाटक का दूसरा और अंतिम भाग।
2: जब तुम मुझे माँ कहकर बुलाते हो तो मुझे बेहद सुख मिलता है बेटे। सुनो, मैं तुम्हें एक बहुत ही जरूरी बात बताना चाहती हूँ।
3: कहिए माँ जी।
2: ये बात किसी को मालूम ना हो, इस रहस्य को तुम प्रकट ना होने दोगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इसीलिए मैं तुमको यह रहस्य बताने का निश्चय कर चुकी हूँ।
3: बता दीजिए माँ जी, मैं वचन देता हूँ कि मैं आपके रहस्य को अपने तक ही रखूंगा, किसी तीसरे व्यक्ति तक ये बात नहीं पहुँचेगी।
2: तो सुनो बेटा, मेरे पास मेरी अपनी पैतृक संपत्ति करीब 10 लाख रुपए की है। वो सब सोना, चांदी और हीरे जवाहरात के रूप में है। उन सबको मैंने एक बड़े घड़े में भरकर इस घर के पिछवाड़े पुराने कुएं के पास गाड़ रखा है। ये रहस्य किसी को मालूम नहीं है, मेरे अपने सगे बेटे कुमार स्वामी को भी मालूम नहीं। अगर मुझे कुछ हो हवा जाए तो तुम्हें उस संपत्ति की रक्षा करनी होगी, करोगे ना?
3: माँ जी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, जरूर करूंगा, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा, भगवान आपका साया।
2: न जाने कुमार स्वामी कब लौटेगा, ये लड़की नीला।
3: जी, आप कहते कहते रुक क्यों गई, कहिए ना।
2: ये लड़की नीला है ना, इसकी शादी मैं कुमार स्वामी से करना चाहती हूँ, ये मेरी बहुत दिनों की इच्छा है। देखो बेटा, एक काम मैं तुम्हें और सौंपती हूँ, अगर मैं उन दोनों की शादी से पहले ही चल बसूं तो तुम उन दोनों की शादी करा देना, करा दोगे ना?
3: जरूर करा दूंगा माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए।
2: मेरी बात याद रखोगे ना?
3: जीवन भर याद रखूंगा माँ जी, अपना वचन जरूर पूरा करूंगा।
4: बात बहुत बड़ी जान पड़ती है।
5: हाँ भैया शिंगारम, बात बहुत बड़ी है, अगर चाहो तो तुम बहुत जल्दी लखपति बन सकते हो।
4: नहीं, लखपति? अरे क्या कह रहा है?
5: ये जरा गंभीर मामला है। देखो, हवा के झोंके के साथ उड़ो तभी तुम आसमान पर पहुंच सकते हो, वरना ये समझ लो कि वो डाकिया कंद स्वामी तुम्हारी आंखों में धूल झोंक देगा।
4: लगता है मारी तू दारू पी कर आया है, अबे सच कह दे नहीं तो मेरे हाथों कुत्ते की मौत पड़ेगा तू। अरे 10 लाख रुपया है कहाँ, और उसके साथ उस डाकिये का क्या संबंध है?
5: है, बहुत गहरा संबंध है, वही 10 लाख रुपया हड़प जाएगा और साथ ही तुम्हारी प्यारी नीला को भी उड़ा ले जाएगा।
4: क्या कहा? नीला को भी उड़ा ले जाएगा?
5: तुमने कहा था ना, मैं कभी कभी तुम्हारी बहन के घर की ओर चक्कर लगाया करूँ, उसी के मुताबिक मैं वहाँ गया था। अंदर कंद स्वामी तुम्हारी बीमार बहन की चारपाई के पास बैठा था, मैं छिप कर खिड़की के पास खड़ा हो गया और सुना कि तुम्हारी बहन कंद स्वामी से अपने जमीन में गड़े धन की चर्चा कर रही है।
4: अच्छा, तो क्या मेरी बहन ने ये भी बताया था कि उसने धन कहां गाड़ रखा है?
5: वही तो मैं सुन नहीं पाया, उस वक्त पास से दनदनाता हुआ एक ट्रक जा रहा था, उसी के शोर के कारण मैं तुम्हारी बहन की आगे की बात नहीं सुन पाया।
4: जब मैं इस डाकिये को अपने रास्ते से हटा दूंगा तभी चैन की सांस लूंगा। उसी को क्यों, अपनी बहन? और
5: नहीं भैया नहीं, खून करके जेल जाने से क्या फायदा, कोई ऐसा उपाय सोचो कि उनकी आंखों के सामने ही हमें दौलत मिले और साथ ही लड़की भी।
4: ऐसा ही होगा दोस्त, अपनी बहन शिवकामी की चाल में समझ गया हूँ। कुमार स्वामी मोर्चे से वापस नहीं आएगा, इसी ख्याल से शिवकामी कंद स्वामी को अपना वारिस बना लेना चाहती है, और ये डाकिया कंद स्वामी धन और नीला दोनों को पाने की आशा से वहां मंडरा रहा है। हमें दोनों की जड़ को काटना है।

0: आओ कंदस्वामी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था।
1: क्यों, क्या बात है पोस्टमास्टर साहब, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सब कुशल मंगल तो है।
0: क्या किया जाए कंदस्वामी, मनुष्य का ये जीवन अनित्य है, पानी के बुलबुले सा, एक न एक दिन सब यहाँ से जाएंगे ही। लेकिन जब कोई जवानी में मर जाता है तो बहुत दुख होता है। यदि वो मरने वाला विधवा बुढ़िया माँ का इकलौता बेटा हो, उसी की कमाई से बेचारी का गुजर बसर होता हो, तो दुख से हृदय फट जाता है।
1: आपकी बातों से तो मेरा दिल बुरी तरह घबरा रहा है। आप किसकी मौत की बात कर रहे हैं?
0: क्या बताऊं, तार को लेते वक्त मैं खुद स्तंभित रह गया था।
1: तार? कैसा तार?
0: लो, तुम खुद ही पढ़ लो ये तार, इसे पहुंचाने के लिए तुम ही तो जाओगे।
1: है? ये क्या लिखा है? कुमार स्वामी जो सीमा रक्षा के एक मोर्चे पर तैनात था, एक भिड़ंत में दुश्मन की गोली से मर गया। भगवान, शिव कामी अम्माल का लड़का मर गया।
0: क्यों स्वामी, इस खबर से गहरा सदमा पहुंचा है ना तुम्हें भी? उठो, जाकर ये तार शिवकानी अम्माल को दे आओ।
1: मैं दे आऊं? मैं खुद अपने हाथ से उन्हें ये तार दूं? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता पोस्टमास्टर साहब। मैं कैसे उनके सामने जाऊं? उनके इकलौते बेटे की मौत की खबर लेकर?
0: जाना तो पड़ेगा ही, क्या किया जाए, ये नौकरी ही ऐसी है। उठो, जल्दी तार उस बेचारी बुढ़िया को दे आओ। वो तो बेचारी रोज अपने बेटे की चिट्ठी का इंतजार करती रहती है। आज वो ये जान ले कि आगे से चिट्ठी का आना हमेशा के लिए बंद हो गया है।
1: चाहता हूं बाबूजी, चाहता हूं। ये कैसी मजबूरी है, शिव कामी अम्माल मुझ पर मां के स्नेह प्यार की वर्षा कर रही थी, आज मैं अभागा उन्हीं के दिल के टुकड़े टुकड़े करने के लिए, उन्हीं को दारुण दुख से तड़पाने के लिए

0: माजी?
1: आओ कंद स्वामी, आओ आओ, तुम्हारी ही राह देख रही थी। अरे दरवाजे पर ही खड़े क्यों रह गए, अंदर आओ ना। आज सवेरे सवेरे ही आ गए, आज ड्यूटी पर नहीं गए क्या?
0: ड्यूटी? ड्यूटी आपका तार है माजी।
1: क्या कहा, तार? मेरा तार आया है?
0: जी हाँ, सीमा रक्षा के मोर्चे से है।
1: अरे तो क्या मेरे कुमार स्वामी का तार है?
0: जी हाँ, यहाँ दस्तखत कीजिए।
1: अभी करती हूँ। तार का नाम सुनकर ही लोग घबरा जाते हैं, रोने पीटने लगते हैं, लेकिन मैं यूं ही घबराने वाली नहीं हूँ। अरे तुम्हारा हाथ क्यों कांप रहा है?
0: नहीं तो
1: ये क्या, तार मेरे हाथ में दे दिया? मुझे तो सिर्फ दस्तखत करना ही आता है, और फिर ये तार तो अंग्रेजी में है। बेटा तुम ही पढ़कर इसका मतलब बता दो। इस महीने कुमार स्वामी का न कोई खत आया और न कोई मनी ऑर्डर ही आया। कहीं वो छुट्टी लेकर यहाँ, हाँ यहाँ आने का ही समाचार होगा। भला तार देने की क्या जरूरत थी, पागल कहीं का।
0: माँ जी बात यह है कि।
1: अरे बताओ ना, तार में क्या लिखा है? तार को इस तरह घूर क्यों रहे हो?

0: माँ जी, तार में कुमार स्वामी ने लिखा है, लिखा है, लिखा है कि वो आज गांव पहुंचेगा। उसे सिर्फ एक दिन की छुट्टी मिली है।
1: अरे तो क्या मेरा बेटा आज आ रहा है? मेरा अनुमान ठीक निकला। अरे बेटा, तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों?
0: कुछ नहीं माँ जी, यूं ही आंखों में कुछ धूल पड़ गई है। अच्छा तो मैं चलता हूँ।
1: तो चले क्या? अच्छा, कल अपना काम खत्म करके यहाँ जरूर आना। कुमार स्वामी से तुम्हारी जान पहचान करा दूंगी। खाना भी यही खाना। अच्छा
0: अच्छा तो मैं जाता हूँ माँ जी।

0: अरे ये तुमने क्या किया? तुम पागल तो नहीं हो गए? कुमार स्वामी के देहांत के समाचार को बदल कर झूठ मूठ कह दिया कि वो आज आ रहा है।
1: और क्या कहता, शिवकामी अम्माल की हालत देखकर मुझे ये झूठ बोलना पड़ा।
0: तुमने कर्तव्य का पालन नहीं किया।
1: हाँ हाँ, कर्तव्य का पालन करूंगा, लेकिन इस बार, केवल इस बार मुझे झूठा अभिनय करना ही होगा।
0: झूठा अभिनय? तो क्या तुम झूठी खबर को सच साबित करने के लिए कुमार स्वामी का स्वांग भरोगे? ये जुर्म है। सोच लो, ऐसे स्वांग का क्या नतीजा होगा?
1: नतीजा? एक बुढ़िया बीमार माँ के हृदय को शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। और मैंने सब सोच लिया है। वर्दी, मूछे और गाल पर मस्सा और फौजी लहजा, मुझे देर नहीं करनी चाहिए।

0: माँ
1: कौन है? अरे आप नानी, नानी देखो कौन आए हैं मोर्चे से।
2: हेलो नीला, हाउ डू यू डू? दो साल में तुम कितनी बड़ी हो गई हो। माँ कहाँ है? अरे अंदर कमरे में लेटी है। क्या हुआ माँ को? माँ
1: कौन? कुमार स्वामी आओ मेरे बेटे, मेरी तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं चल रही।
2: मुझे क्यों नहीं लिखा माँ? अच्छी से अच्छी दवा खरीद कर भेज देता।
1: बेकार ही तुम्हें तकलीफ उठानी पड़ती, मामूली खांसी बुखार है। तो तुम कुमार स्वामी ही तो हो?
2: मुझे पहचान लिया है क्या? ये कैसा सवाल कर रही हो माँ? मैं तुम्हारा कुमार स्वामी ही हूँ।
1: कुछ दिनों से मेरी आंखें कमजोर हो गई है बेटा।
2: माँ तुम इस तरह बार बार बाहर क्यों झांक रही हो?
1: मैं कंद स्वामी को देख रही हूँ।
2: कंद स्वामी कौन?
1: अरे वही तो, तुम्हारा दूसरा अवतार। तुम्हारे यहाँ न होने से मैं उसी को देखकर अपने मन को तसल्ली देती रही हूँ।
2: क्या कह रही हो माँ? मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे पहचान कर इस तरह मजाक कर रही है क्या?
1: बेटा तुम में और उसमें जरा भी फर्क नहीं। नीला तुम जरा बाहर जाकर देखाओ कि कंद स्वामी आ रहा है या नहीं।
3: नानी माँ आज कोई नया डाकिया आया है, उसने बताया कि कंद स्वामी को अचानक कोई जरूरी काम आ पड़ा, सो वे छुट्टी लेकर गांव गए हैं, कल रात वापस आएंगे।
1: कंद स्वामी अपनी माँ से बढ़कर मुझे प्यार करता है। नीला जाकर पानी गर्म करो, कुमार स्वामी नहा धोकर जरा आराम कर लें, एक ही दिन तो यहाँ ठहरेगा बेचारा।

0: भैया श्रृंगारम, भैया श्रृंगारम, गजब हो गया।
1: क्या हुआ मारी?
0: वो डाकिया कंद स्वामी है ना, कल उसने बहुत बड़ा छल किया।
1: छल? कैसा छल?
0: कल उसने गांव जाने के बहाने डाकखाने से छुट्टी ली और इधर उधर चला गया।
1: फिर?
0: फिर उसने फौजी वर्दी पहनकर मूछे और मस्सा लगाकर तुम्हारी बहन के फौजी बेटे कुमार स्वामी का सांग भरा और पहुंच गया तुम्हारी बहन के घर।
1: उसकी ये हिम्मत!
0: अरे भैया आगे तो सुनो। तुम्हारी बहन की आंखों में उसने

0: ऐसी धूल झोंकी कि वो कंद स्वामी को पहचान ही ना सकी। वो बेटे की तरह दिन भर घर में रहा और फिर रात को चला गया।
1: सच कह रहा है तू?
0: हाँ भैया, तुम्ही ने तो कहा था कि अगर कंद स्वामी के मूछे और मस्सा हो तो वो कुमार स्वामी ही लगेगा। उसी बात को उसने अब सच साबित कर दिया है।
1: अरे तो इसका मतलब है कि नीला ने भी उस पर विश्वास किया होगा। नीला ने उससे हंस हंस कर बातें की होंगी उसके साथ।
0: क्यों नहीं, ये खेल आगे भी जारी रहा तो समझ लो एक दिन ये डाकिया फिर भेष बदल कर छुट्टी के बहाने से आएगा और तुम्हारी नीला से शादी करके चंपत हो जाएगा।
1: नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे मारी, जल्दी से कोई उपाय सोच कि इस डाकी का खेल आगे न बढ़े।
0: आज से मैं रेलवे स्टेशन के आसपास चक्कर लगाना शुरू कर देता हूँ। कंदू स्वामी जब फिर फौजी वर्दी पहनकर आएगा तो मैं फौरन आकर तुमसे कह दूंगा, तुम उसे हमेशा के लिए ठिकाने लगा देना।
1: वाह, बहुत बढ़िया उपाय है ये, लेकिन सुनो, होशियार रहना।

0: कुली कुली।
1: ओह डैम इट, इस गांव के स्टेशन पर कोई कुली भी नहीं, सामान खुद ही उठाना होगा।
2: अच्छा तो ये साला डाके आज फिर भेस बदल कर आया है, अभी खबर देता हूँ श्रृंगारम को।

0: Mom? Mother? Mummy? Where are you? Oh, silly old lady.
1: आइए आइए बाबू साहब, आज फिर
0: कौन? नीला? क्योरी छोकरी कैसी है, माँ कहाँ है?
1: वो आज फिर डॉक्टर के यहाँ गई हैं, लेकिन मैं पूछती हूँ आज फिर क्या सोंग भरा है? उस दिन जैसे नानी माँ धोखा खा गई थी, वैसे मैं धोखा खाने वाली नहीं हूँ।
0: What nonsense, ये क्या कह रही हो?
1: बस बस बंद कीजिए ये नाटक, मुझे सब मालूम है। जल्दी से ये बनावटी मूछें और मसा उखाड़ कर फेंक दीजिए, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा मैं खुद उखाड़े देती हूँ।
0: ये क्या बदतमीजी है? अरे छोड़ मेरी मूछें, दर्द हो रहा है। अरे ये बनावट नहीं, असली मूछें है, हट जा सामने से। कहाँ है मेरी माँ?
1: कहाँ ना, वो डॉक्टर के यहाँ।
2: अरे ये क्या मामा की रट लगा रखी है, ये कैसी एक्टिंग कर रहा है, डाकिया कहीं का। कौन है तेरी माँ?
0: कौन? ओह सिंगाराम। हेलो, हाउ डू यू डू यू सिली कंट्री ब्रूट, आई मीन अंकल।
2: वाह, अंग्रेजी के चार शब्द बोलने से क्या होता है। क्या मैं तेरी आवाज नहीं पहचानता, चोर उचक्का कहीं का।
0: अंकल ये तुम क्या कह रहे हो, क्या मैं चोर उचक्का हूँ?
2: हाँ हाँ, डाक खाने से छुट्टी लेकर किराए की वर्दी पहन और नकली मूछे और मस्सा लगाकर तू मेरी बुढ़िया बहन को धोखा दे सकता है, इस ना समझ नीला को धोखा दे सकता है। लेकिन तू इस शिंगारम की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। वो तार मैंने ही दिया था कि कुमार स्वामी मर गया है, तूने उस तार का असली मजबूत अम्माल को नहीं बताया, उसके बजाय झूठ मूठ कह दिया कि छुट्टी लेकर कुमार स्वामी आ रहा है और खुद कुमार स्वामी का भेष बनाकर चलाया। इस तरह आसानी से तूने शिवकामी के जमीन में गड़े धन का पता लगा लिया। अब बोल कहाँ है वो धन, कहाँ गाड़ रखा है तूने उसे, पहले ये बता दे, बाद में चाहे तू कुमार स्वामी की एक्टिंग कर चाहे कंद स्वामी की, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। बोल बोल बोल, वो जमीन में गड़ा धन कहाँ है?
0: जमीन में गड़ा धन?
2: हाँ।
0: अंकल सिंगाराम ये तुम क्या बेपर की उड़ा रहे हो?
2: चुपचाप अपनी असलियत कबूल कर ले और शिवकामी के उस गड़े हुए धन का पता बता दे, नहीं तो
0: तू क्या करेगा बदमाश, चला जा यहाँ से, मैं किसी गड़े हुए धन के बारे में कुछ नहीं जानता। कल रात से मैंने कुछ नहीं खाया, पहले मैं कुछ पेट में डाल लूं।
2: अबे अंदर कहाँ जाता है, पहले बता।
0: नहीं बताता, मुझे कुछ नहीं मालूम, हट जा मेरे सामने से।
2: अच्छा कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम है।

0: तुझे कुछ नहीं मालूम, सुन ले।
1: श्रृंगाराम तूने ये
2: चाकू के एक ही वार से ये दम तोड़ने लगा है। इधर नीला भी बेहोश हो गई है। क्या ये कहीं सचमुची कुमार स्वामी तो नहीं? शिवकामी के आने से पहले मुझे यहां से भाग जाना चाहिए। हाँ हाँ, भाग जाना चाहिए।

0: श्रृंगारम श्रृंगारम, मेरे भाई गलती हो गई, वो डाकिया कंद स्वामी नहीं कुमार स्वामी ही था। तुमने कुमार स्वामी का
1: कमीने, तूने मुझे गलत खबर देकर। कंद स्वामी कहाँ है?
0: डाकखाने में। खैर ये बातें तो बाद में होंगी, पहले पुलिस से बचने का उपाय करना चाहिए। जल्दी से अपने खून से ये लथपथ कपड़े बदल डालो।
1: अच्छा मारी, तू भाग कर किसी को कंद स्वामी के पास भेज, उसे कहला दे कि शिवकामी बहुत बीमार है, उसे फौरन बुलाया है। मैं तब तक पुलिस चौकी पहुंचता हूँ।
2: माजी,
0: ये क्या, ये कौन खून से लथपथ पड़ा है? अरे ये चाकू, हाँ तो इसे धीरे धीरे निकाल लो। हाँ, अरे ये नीला क्यों बेहोश पड़ी है? ये सब क्या हुआ, किसने ये खून किया?
3: हाँ कंद स्वामी, तुम्हारे हाथ में ये चाकू, ये खून कैसा बह रहा है? कौन यहाँ गिर पड़ा है?

0: जी, ये कुमार स्वामी है। मुझे कुछ पता नहीं, मैं अभी आया हूँ। कुछ देर पहले मुझे खबर मिली थी कि आप सख्त बीमार हैं। मैं भाग आया और
1: अरे पापी, मेरा सत्यानाश करके झूठ बोलता है। मैंने अपनी दौलत की बात तुझे इसलिए बताई थी कि तुम ईमानदारी से उसकी रक्षा करोगे। अरे इससे तो ये अच्छा था कि तुम मुझे ही मार डालते।
0: माँ जी, मैं आपको क्या जवाब दूँ? मुझे कुछ भी तो नहीं सूझ रहा।
2: सब सूझ जाएगा कंदस्वामी, हम आ गए हैं।
0: कौन? इंस्पेक्टर साहब।
2: हाँ, हम ठीक मौके पर पहुंचे। तुम वारदात की जगह पर रंगे हाथों पकड़े गए हो। सिपाहियों, इसे हथकड़ी लगा दो।
3: इसने मेरी बहन के बेटे को, मेरे भांजे को मार डाला है। इंस्पेक्टर साहब, अगर मैं फौरन आपको इत्तला न करता तो ये भाग जाता।
2: मैडम जी, क्या आपने इसे खून करते हुए देखा था? देखा था तो रोका क्यों नहीं?
3: बात ही है इंस्पेक्टर साहब, नीला होश में आ गई।
2: ए, कहां जा रहे हैं आप? रुकिए।
4: इंस्पेक्टर साहब, इसे श्रृंगारम ने मेरे मामा कुमार स्वामी की हत्या की थी। इसे नहीं चाकू भोंका, तभी कंद स्वामी यहाँ नहीं थे। अरे रोकिए, वो भाग रहा है।
2: सिपाहियों, ये बदमाश श्रृंगारम भागने न पाए, पकड़ो। बेटी, तुमने क्या श्रृंगारम को खून करते हुए देखा था?
4: जी हाँ, इसने कुमार स्वामी को कंद स्वामी समझकर चाकू भोंक दिया। दोनों की शक्ल मिलती है ना, मामा की हत्या होते देखकर मैं दहशत से बेहोश हो गई। बाद में जो कुछ हुआ मैं नहीं जानती। कंद स्वामी ने कुछ नहीं किया, ये निरपराध है। हत्या के समय ये यहाँ थे ही नहीं।
2: अच्छा, तो श्रृंगारम एक बेकसूर को फंसाकर खुद बचना चाहता है। सिपाहियों, पकड़ लाओ इसे, डाल दो इसके हाथों में हथकड़ी। कंद स्वामी को छोड़ दो।
1: अरे अरे, मेरा बेटा होश में आ रहा है, ये अभी जिंदा है। बेटा, बेटा।
2: आप सब खामोश रहिए, ये कुछ कर...

0: Come in.
1: इंस्पेक्टर साहब, लगता है मेरे पीछे यहाँ कुछ गड़बड़ हो चुकी है। मैं आज यहाँ छुट्टी पर आया था। ये शिंगाराम मुझे कंद स्वामी मानकर मुझसे किसी गड़े धन के बारे में पहले पूछताछ और फिर तकरार करने लगा। इसी ने मुझे चाकू मारकर घायल किया। माँ,
2: मैं तुम्हारे पास हूँ मेरे बच्चे।
1: माँ, तुम रोती क्यों हो? माँ, मैं तुम्हारी कोई सेवा नहीं कर सका। मैंने हमेशा तुम्हें परेशान ही किया। अब मैं जा रहा हूँ, मेरी सब भूल माफ कर दो। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। माँ, मैं छुट्टी लेकर आया था सिर्फ तुम्हें देखने के लिए। तुम्हें देख लिया, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। तुम्हारी गोद में, तुम्हारे चरणों में मेरा अंत हो रहा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना भाग्यशाली हूँ।

0: आइए पोस्टमास्टर साहब, अच्छा किया जो आप इस गंद स्वामी को साथ लेकर आए हैं। इसने एक महीने से इधर ताका भी नहीं। नीला, देखो तो कौन आया है।
1: क्यों कंद स्वामी, क्या तुम नाराज हो मुझसे?
0: ये मैं मानती हूँ कि मुझे उस दिन तुम पर एकाएक शक नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या बताऊं, उस दुष्ट शिंगारम ने ऐसी चाल चली कि
2: जो होना था सो हो गया। शिंगारम को अपने किए की सजा मिल गई है।
3: पोस्टमास्टर साहब, उस दिन भगवान ने ही मेरी रक्षा की, वरना शिंगारम ने मुझे फंसा ही दिया था। ऐन मौके पर नीला ने होश में आकर इंस्पेक्टर को सच्ची बात बता दी और कुमार स्वामी ने भी अपना बयान दे दिया। अगर ये सब न होता तो फांसी का फंदा मेरे गले में पड़ता, मैं तो बाल बाल बचा।
0: देखो गंद स्वामी, तुम उस दिन बच गए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुमने कसूर नहीं किया। तुम्हें जरूर सजा दी जाएगी।
3: क्या कह रही हैं आप?
0: मैं ठीक ही कह रही हूँ। ये ना समझना कि मैं कुछ नहीं जानती। भले ही मैं अनपढ़ हूँ तो भी मैं मूर्ख बिल्कुल नहीं।
3: मैं तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। मैंने कोई गलती की हो तो मुझे माफ कर दीजिए।
0: मैं क्यों माफ करूँ, तुम्हें चुपचाप मेरा हुक्म सुनना होगा।
3: आप जो भी कहेंगी मैं मानने को तैयार हूँ।
0: हाँ, इसी में बुद्धिमानी है। पोस्टमास्टर साहब, आप गवाह हैं ना?
2: भाई मैं तो सब देख रहा हूँ, सब सुन रहा हूँ।
0: मैं कंद स्वामी को जिंदगी भर की सजा देना चाहती हूँ। अगले महीने मैं नीला की शादी इस कंद स्वामी के साथ कर देना चाहती हूँ। क्यों कंद स्वामी, मंजूर है ना?
3: जी मैं, लेकिन आप नीला से भी पूछकर।
4: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे नाटक पोस्टमैन का दूसरा और अंतिम भाग। मूल लेखक थे के रघुपति, हिंदी अनुवादक पी एस कृष्णा स्वामी और निर्देशक थे महेंद्र मोदी। इस नाटक में जिन कलाकारों ने हिस्सा लिया उनके नाम हैं शिवराज सोमवाल, करुणा कुमावत, विजय सिंह पवार, महुआ बैनर्जी, राजेंद्र पांडे, यवदत्त मेहता, चंद्र प्रकाश पारीक, चम्बलेश भट्ट और महेंद्र मोदी। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त करें इससे पहले आपको बता दें कि ये आकाशवाणी के उदय

0: जयपुर केंद्र की प्रस्तुति थी। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

0: पिटारा में आज
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले

0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की। एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977, दूसरा आदमी।
1: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
0: 1981, बसेरा।

0: बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज सुनिए तीसरा भाग। पिछले एपिसोड में आपने सुना,
1: अब मुझे पूरा दिल लगा के पिक्चर बनानी है
2: जी।
1: ये पिक्चर अच्छी बने और वो हमने मेहनत करके पिक्चर अच्छी बनानी शुरू की। 12 रील में पिक्चर बंद हो गई।
2: अरे बाप रे।
1: क्योंकि वो जो फाइनेंसर था उसने कहा मैंने जयपुर में होटल खरीद लिया है और मेरे पास अभी पैसे नहीं है,
2: ये लो।
1: और मेरे पास राजेश खन्ना के भी डेटे हैं, ऋषि कपूर के भी डेटे हैं,
2: हीरोइने भी हैं,
1: हीरोइनों के भी डेटे हैं, और ठहर गए।
2: अब
1: साहब 2-3 साल और वेट करना पड़ा। अब अचानक 2-3 साल के बाद वो आए कि भाई मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। अब लोगों के कपड़ों की स्टाइल बदली हो गई थी, बेल बॉटम नहीं रहा था, कपड़े और तरह के लोग पहनने लगे थे, कास्ट्यूम पिक्चर में पहले जो बनी थी सब कुछ बदली हो गया था। मतलब 5 साल में फिल्म बनी, 5 ईयर्स लगे उस पिक्चर को। उसके बीच मेरी दूसरी पिक्चरें मिल भी गई, वो भी करना शुरू कर दिया। और उस बीच मुझे जावेद साहब ने अलग अकेले होके मुझसे वो पिक्चर जो दुनिया, उसमें जावेद साहब अकेले हो गए थे, सलीम साहब से अलग हो गए थे।
2: और वो तो दिलीप कुमार साहब थे वहाँ,
1: दिलीप कुमार साहब के हीरो हैं। तो जावेद साहब ने कहा कि वो एक्चुअली उसमें भी एक ये पंगा था कि यश जोर साहब जो थे वो आते थे यश जी के पास डायरेक्ट करिए मेरी पिक्चर। यश जी कहते थे एक मैं गुलशन राय के लिए कर रहा हूँ, एक मैं खुद की करता हूँ, इससे ज़्यादा पिक्चर डायरेक्ट कर नहीं सकता। तो चलता रहा यश जोर आते रहे। तो वो एक स्टेज पे ऐसा हुआ कि वहीदा रहमान जी से वो ये प्रोडक्शन भी बहुत करते रहे ना, देवानंद की भी, तो इसलिए वहीदा जी को भी जानते सबको, तो उन्होंने रख रखाव बहुत अच्छी थी उनकी,
2: कनेक्शन
1: सबके। तो वहीदा जी से कहने लगे यार यश

0: पिक्चर नहीं कर रहा, कब से पीछे लगा हूँ, 2-3 साल से रोज जा रहा हूँ, मेरे इधर कंपनी में कोई पिक्चर नहीं है। तो इधर जी ने कहा तो रमेश तलवार से करवा लो।
1: अरे गजब।
0: रमेश तलवार से? वो तो यश चोपड़ा का असिस्टेंट है, लेकिन उनका डायरेक्टर भी 2 पिक्चर डायरेक्ट कर चुके हैं। एक पिक्चर सवाल में मैंने भी काम किया है रमेश के साथ, संजीव कुमार, मैं, हम सब ने किया है, शशि कपूर है उस पिक्चर में।

0: वेरी गुड डायरेक्टर, बहुत समझदार है अच्छे। तो इन्होंने मुझे, यश जौहर ने कहा कि भाई आप, अब मैं 5 मिनट मिलने आना चाहता हूँ। मैं पाली हिल शिफ्ट हो चुका था तभी, उसको ऑफिस बना लिया था मैंने। तो मैंने कहा मैं पाली हिल पे हूँ, वहाँ पर जाइए। आए वहाँ पे तो कहने लगे कि भाई वो ऐसा है कि यश जी के पास मैं जाता रहा, तो ऐसे अभी वहीदा जी ने कहा है कि रमेश के साथ मैंने काम किया है, तो आप मेरी पिक्चर कर लीजिए। मैंने कहा भाई मैं यश जी की पिक्चर कैसे करूँ, मैं उनका चेला हूँ। तो मुझे टाइम दीजिए, मैं यश जी से बात करता हूँ, एक दो दिन में मैं उनसे बात कर लूँगा, फिर हम मिल लेते हैं, जो भी बात होगी मैं आपको कह दूँगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यश जी से मैंने बात की कि ऐसा, उन्होंने कहा हाँ बेटा करो, क्यों नहीं करो।
1: ओहो,
0: मैंने कहा यश जी मैं आपकी कंपनी में भी कर रहा हूँ और ऐसे, नहीं नहीं नहीं तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे बैक पे हूँ, फिक्र नहीं करो, अभी मेरी जरूरत हो जाओ। अब मैंने नेक्स्ट टाइम को कह दिया हाँ मैं करूँगा। तो हम लोग कहानी वानी सुनने इस तरह शुरू, क्या होगा, अभी दिलीप कर लिए नहीं थे अभी हमने,
1: अच्छा
0: कुछ नहीं था, खाली तभी यही है बिटवीन
1: सागर साहब लिख रहे थे,
0: कोई नहीं, कुछ किसी को लिया नहीं था हमने।
1: अच्छा,
0: अभी बातचीत ही शुरू हुई
1: जी।
0: तो इतने में जावेद साहब ने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा रमेश जी एक राज की बात बताता हूँ, आप किसी से कहेंगे नहीं। इनको बताइए, मैं और सलीम साहब अलग हो रहे हैं।

0: अभी इस बीच में हुआ ये था कि जावेद साहब के घर पे मेरा आना जाना बहुत ज्यादा हो गया था। वो इस तरह कि यहाँ एक छोटी पिक्चर बन रही थी साथ साथ, रमन कुमार डायरेक्टर थे, रमन मेरे इप्टा के हैं, मेरे असिस्टेंट भी रह चुके थे और कुलदीप सिंह म्यूजिक दे रहे थे उसमें,
1: और जावेद साहब
0: गाने लिख रहे थे। उससे पहले जावेद साहब ने गाने नहीं लिखे थे
1: जी,
0: यश चोपड़ा के लिए एक दो गाने लिखे, ये पूरी पिक्चर के गाने उन्होंने लिखने थे।

0: वाला काम शुरू
1: प्रिंसिपल वाला काम शुरू कर दिया।
0: जी
1: अब जो है इधर ये मेरे साथ जब बात नहीं तभी पिक्चर बना थे वो दिलीप साहब की पिक्चर जो है वाली
0: शक्ति
1: नहीं शक्ति नहीं इनकी पिक्चर का नाम कुछ और था
0: मशाल
1: मशाल मशाल का। अब मशाल का सब्जेक्ट मैंने ओके किया हुआ था
0: ओ
1: मैंने ओके किया हुआ था
0: यश जी ने डायरेक्ट की वो
1: और वो मैंने ओके किया मैंने अच्छा सब्जेक्ट बहुत बढ़िया। जावेद साहब ने ऐसे ही मुझे कहा अगर आप कहें तो ये सब्जेक्ट मैं यश चोपड़ा को भी सुना दूं।
0: जी
1: उन्होंने यश जी को सुना दिया यश जी को सब्जेक्ट पसंद आया।

0: उन्होंने मुझे इसका आइडिया सुनाया, यश जोर को भी सुनाया,
1: दुनिया का
0: आइडिया थोड़े दिनों के बाद, दो चार दिन। और फिर ये शबाना शूटिंग कर रही थी आउटडोर में, शायद कौन सी पंक अपने इसकी कपूर क्या डायरेक्टर हमारा फॉरेन में चला गया जो देव साहब का भांजा, क्या नाम है,
1: शेखर कपूर
0: शेखर कपूर, नामों में आजकल में गड़बड़ होती है। शेखर कपूर की शूटिंग कर रही थी पहली फिल्म की, कहीं देहरादून या उस तरफ कहीं नॉट, और जावेद साहब के साथ दोस्ती थी इनकी से। जावेद साहब लिखने वहां चले गए शबाना के यहाँ शूटिंग पे, और 34 सीन लिख के ले आए वहां से और आके हमको सुनाए, बहुत अच्छे सीन थे, बढ़िया। लेकिन वो कहते थे कि मैं स्क्रिप्ट कंप्लीट ही देता हूँ। तो उन्होंने कहा भाई अब मैं दो तीन प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, जब मैं कंप्लीट देता हूँ मैं एक ही पिक्चर लिख रहा होता हूँ उस वक्त, तुम यार अपने दोस्त हो, तुम समझ सकते हो ना, तुम एक शेड्यूल करो। मैंने कहा आप दिलीप साहब को कैसे कन्विंस करेंगे 34 साल सीन से शुरू करके पिक्चर, मतलब खाका मेरे दिमाग में तैयार है, स्क्रीन पे तैयार है, मुझे स्क्रीन पे सुना दिया उन्होंने। तो ये हम चलते दिलीप साहब से अपॉइंटमेंट लेते, सुनाते, तो सी रॉक बुक किया गया।
1: अच्छा,
0: वहाँ पे दिलीप साहब ने कहा मैं एक दिन में पूरी कहानी नहीं सुनूंगा।
1: अरे बाप रे,
0: उनका स्टाइल है जो सुने इतनी देर सुन सकता हूँ इतने, जो भी उन्होंने सुना, इन्होंने पहले 34 सीन तो पूरे क्लियर थे वो उस तरह सुना दिए, आगे के सीन सुनाए, उनकी कुछ एक आध सजेशन जो आई, इन्होंने कुछ आर्गूमेंट दिया, कोई ली कोई नहीं ली, जो भी जावेद साहब को ठीक लगता था मुझे भी ठीक लगता था वो सजेशन ले ली गई, वो फिल्म में रखी गई जो दिलीप साहब की थी, और बाकी जावेद साहब ने लिखा। अब वो क्या करते थे कि जब शूटिंग होती थी तो एक दिन पहले मुझे मेरे लिए सीन लिख देते थे, कई बार बोलते थे यार अच्छा नहीं बन रहा, मैं रात को लिखूंगा या सुबह 5 बजे उठ के लिखूंगा, तो मैं 10 बजे सेट पे ला कर दूंगा।
1: वाह वाह,
0: क्योंकि दिलीप साहब तो 12 बजे आएंगे
1: जी,
0: तो तेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो वाकई ऐसा होता रहा, वो देते रहे करते रहे, और ऐसे हमने वो फिल्म की
1: दुनिया।

0: दिलीप साहब को डायरेक्ट करने का अनुभव कैसा रहा आपके लिए?
1: दिलीप साहब के साथ मैंने पहली जो मीटिंग मेरी हुई ना, जब मैं साइन करने गया पहली बार
0: जी
1: ये ऐसे फिल्म करने का, तो मेरा क्या होता है कि जो दोस्त यार आपके होते हैं ना,
0: हाँ,
1: वो आपकी तारीफ करते हैं। पंडरी झुककर उनका मेकअप करता था
0: जी, बहुत बड़े मेकअप मैन,
1: बहुत बड़े मेकअप मैन, मेरी फिल्मों के मेकअप मैन भी होते। और जब मैंने नूरी के हम प्रोडक्शन की प्रोड्यूस की तो सबका शेयर रखा, उसमें पंडरी झुककर का भी शेयर था 5%।
0: वाह,
1: ऐसे हमारे 10 लोगों के हमने लोगों में बांटा था कि 20% यश चोपड़ा जी, 20% गुलशन राय जी, और जो बाकी 60% थे, 10% सागर सती राइटर, 10% खयाम साहब म्यूजिक डायरेक्टर, 10% मनमोहन कृष्ण डायरेक्टर, और मैंने अपने लिए 5% रखे थे जो यश जी ने 10% करवा दिए। क्योंकि मेरे साथियों को मैं 5% देर नहीं अच्छा लगता, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बेटा तू सब कर रहा है तो मैं गलत बात है, तुम 10% लो। तो मेरा 10% हो गया, 5% रमेश वल्ला ऑपरेटिव कैमरामैन जो था, 5% केजी उनका सीनियर कैमरामैन, 5% पंडरी झुककर, और 5% उनका दोस्त जो प्रोडक्शन हैंडल करते थे वासुदेव धीरे साहब।
0: जी जी जी, गजब।
1: और ये सब लोगों के साथ क्यों हमने ये पार्टनरशिप की कि मैंने कहा पंडरी झुककर की 3-4 बहनें उनकी शादी करवाता रहता है और पैसे सारे खर्च कर देता है, वासुदेव धीर की 2 बेटियां हैं उसके पास पैसे नहीं है शादी करने के लिए,
0: ओहो,
1: मनमोहन कृष्ण का बेटा डॉक्टरी पढ़ रहा है मनमोहन जी के पास पैसे नहीं है, इनको पार्टनर बनाएंगे, उनका बेटा जो है इस पिक्चर में हीरो होने वाला था खयाम साहब, ये पिक्चर पहले नूरी बनाने वाले थे जिसमें वहीदा रहमान हीरोइन होने वाली थी, सागर सर्दी ने उनके लिए लिखी थी।
0: अच्छा,
1: सागर सर्दी की 2 पेज की शॉर्ट स्टोरी के ऊपर ये स्क्रिप्ट सागर सर्दी ने उनको फिल्म की लिख के दी, जब 2 पेज की स्टोरी सुनाई थी उनको बहुत अच्छी लगी क्योंकि कुत्ता हीरो है। तो वो उन्होंने तो शुरू में गाने वाने भी 2-3 रिकॉर्ड कर लिए थे खयाम साहब ने अपने बेटे को हीरो लेके, और फिर वो पहले तो वहीदा रहमान जी के लिए बनाई, वहीदा रहमान जी के साथ कोई डायरेक्टर और था, सीनियर डायरेक्टर थे कोई, फिर वो नहीं बना प्रोजेक्ट, बिका नहीं या नहीं बना या 2-4 नहीं हुए, उसके बाद वो चाहते थे कि बेटे को लेकर न्यू कमर के साथ पिक्चर बनो,
0: प्रदीप को लेके,
1: लेकिन वो नहीं बन पा रही थी, लेकिन गाने उन्होंने 2-3 रिकॉर्ड कर लिए थे, और जावेद अख्तर साहब के फादर के ही गाने थे, जानेसार अख्तर साहब के गाने, वो रिकॉर्डिंग हो चुकी थी, तो उन्होंने मुझे वो गाने भी सुना दिए थे, यश जी को भी सुना दिए थे, तो भाई उनको वो सब डिजर्व करते हैं 10%, तो 10% उनको पार्टनर बना लिया। ये बात पंडरी झुककर ने
0: दिलीप

0: आपको बता,
1: दिलीप साहब को बता दी।
0: ओहो हो गजब,
1: कि बड़ा अच्छा लड़का है रमेश, ये जी का राइट हैंड मैन है और बहुत मेहनती है और थिएटर भी करता है।
0: हाँ।
1: और बहुत समझदार है और दोस्तों के साथ मिलजुल के चलता है।
0: हाँ हाँ हाँ।
1: तो दिलीप साहब ने मेरी मीटिंग रख ली, मतलब मैं चला गया मिलने मुझसे, तो मेरे साथ पंजाबी में बात करने लगे।
0: ओह क्या बात है,
1: वही पंजाबी उनकी थी जो हम पंजाबी मेरे घर में बोलते हैं
0: जी,
1: वो पंजाबी हो वहाँ के थे पिशावर के
0: जी,
1: उस तरफ के, और मैं बफा एपटाबाद मानसेरा वाला, तो हमारे घर में जो पंजाबी बोली जाती थी जुल जा को जुल बोलते थे, जुलो जरा यार के बदले जरा,
0: अच्छा
1: यारा
0: जी जी जी, इसीलिए वो सागर यारा,
1: सागर यारा
0: किताब में आई,
1: करेक्ट। तो उन्होंने उस तरह बात, मैंने कहा बातचीत सब हो गई, उन्होंने कहा बेटा मैं करूँगा, जरूर करूँगा, उस तरह प्रोड्यूसर भी अच्छा है, आदमी अच्छा है, यस यस करूँगा, सब्जेक्ट मैं पहले पूरा सुनूंगा, उसमें बैठूंगा पूरा, मुझे जो चीज़ पसंद नहीं आएगी मैं कहूँगा। कहा जी वो ऐसे सलीम जावेद अलग हो गए, आपको बता रहा हूँ, किसी को बताइएगा मत, और इस तरह से बात शुरू की
0: और इस तरह फिल्म दुनिया बनी।
1: हाँ।

0: आपके मन की फिल्म बनी थी?
1: नहीं, दुनिया मैं क्या बताऊं आपको, सिवाय इस बात के कि मुझे जो सीन उसी दिन मिलता था, जिस तरह फिल्मों में उस जमाने में ऐसा ही होता था। एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल के सीन मिलते हैं आपको, अगले सीन राइटर सब बिजी होते थे।
0: जी जी जी।
1: तो मुझे वो थोड़ा सा
0: अनकंफर्ट था,
1: हल्का सा कि आप और उसी टाइम से सोच सकते हैं आप।
0: हाँ।
1: आप उसके साथ जी नहीं सकते उन सीनों के साथ, बाकी सब ठीक था, कोई ऐसी चीज नहीं थी। जावेद साहब बड़ी हेल्प करते थे, ऐसा अच्छा समझा के सीन बताते थे, उनकी जो खुद का विजन था वो भी बताते थे, ऐसा नहीं है। फिर भी होता है ना कि डायरेक्टर अपनी उठते बैठते सोते जागते नहीं वाला होता उस।
0: जी जी।
1: और इतनी बड़ी कास्ट हो गई थी, दुनिया का कौन आदमी है जो फिल्म में नहीं था? दुनिया की कास्ट सोचिए आप, अशोक कुमार,
0: दिलीप कुमार,
1: प्रदीप कुमार,
0: अरे बाप रे,
1: प्राण,
0: ऋषि कपूर,
1: अमरीश पुरी,
0: अमृता,
1: प्रेम चोपड़ा, अरे भाई ये सीनियर, मैं सीनियर की बात कर रहा हूँ।
0: जी
1: है, फिर गेस्ट रोल में सारा जी। इमेजिन कर सकते हैं कि इतनी बड़ी फिल्म, आप किसी फिल्म की कास्ट में इतने आदमी एक पिक्चर में, बता दीजिए।
0: उसके पोस्टर भी भव्य थे एकदम।
1: हाँ, तो आप ये तो लोग समझते थे मेरी लॉटरी लगी है।
0: जी।
1: जो इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली होते होते हुआ ना।
0: जी जी जी, बिल्कुल, बहुत बड़ी फिल्म हो गई,
1: बहुत बड़ी फिल्म। और इस दौरान जो है थोड़े से सलीम साहब मेरे से खफा भी थे,
0: क्योंकि आप जावेद साहब के साथ काम,
1: मैं अलग हो गया ना उनको, उनको लगता है कि मैंने तोड़ दी उनकी, मैंने तोड़ी नहीं थी।
0: जी जी।
1: मुझे तो उन्होंने बताया, उन्होंने आपस में पहले फैसला कर लिया था।
0: जी।
1: पहले मीटिंग हो चुकी थी।
0: जी।
1: तो उनके पास में सलीम साहब के पास एक दो प्रोजेक्ट लेके गया, एक दो चीजें। एक पहले मैं लेके गया, एक कोई प्रोड्यूसर आया मेरे पास, जितेंद्र साहब प्रोड्यूसर थे, जितेंद्र एक्टर, उन्होंने कहा मेरे पास श्रीदेवी की डेट है,
0: ओ,
1: लेकिन मुझे जल्दी पिक्चर शुरू करनी है, ये देखो क्या करना है। तो मैंने जावेद साहब से पूछा कि ऐसा, बोला सलीम साहब के पास एक सब्जेक्ट है जो शुरू में हम दोनों ने साथ में काम भी किया था, उनके पास है सब्जेक्ट श्रीदेवी का है। मैं सलीम साहब के पास चला गया कि भाई आपके पास ऐसा सब्जेक्ट है और जितेंद्र प्रोड्यूसर है, उन्होंने कहा मैं चलता हूँ। फिर आगे वो उन्होंने जितेंद्र को सब्जेक्ट सुनाया, सब्जेक्ट उसी तरह कंप्लीट नहीं था, लाइन
0: था,
1: आइडिया था, लाइन थी, लाइन सुनाई पूरी उन्होंने।
0: जी।
1: ये नहीं कि कम सुनाया हो, लेकिन पूरा नहीं था, एक होता ना पूरा फुल स्क्रीन पे फॉर्म नहीं, वन लाइन टाइप वाला आइडिया था। तो उन्होंने कहा अगले महीने की डेटें हैं, जितेंद्र ने कहा मैं ये नहीं हो सकती और डेटें पोस्टपोन करूँगा तो फिर वो हो जाएगा। और अलबत्ता वो पिक्चर जितेंद्र से मेरी भी छुट्टी, पिक्चर मुझे भी नहीं मिली और सलीम साहब को भी नहीं मिली। उसके बाद मैं साहिबा पिक्चर जिनके लिए कर रहा था, साहिबा के बाद जब वो कंप्लीट हो गई तो उन्होंने कहा अगला प्रोजेक्ट हम करते हैं, इस बार ऋषि कपूर को समझा दो कि अलग पेयर लेते हैं अपन, मतलब ऋषि कपूर और संजय दत्त नहीं लेते, संजय दत्त और सलमान खान लेते, वो दोनों साथ में पढ़े हैं, दोस्त भी हैं। तो मैंने कहा सलीम साहब के पास चलते हैं, उनको बोलते हैं ये बात, वो सोचते हैं। अभी हमारी पिक्चर रिलीज भी नहीं हुई है।
0: जी।
1: कंप्लीट हो गई थी, अभी रिलीज हो गई थी, बाकी पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा था। तो मैं उन प्रोड्यूसर साहब को लेके, चावला साहब, डीके चावला नाम था उनका, उनको लेके गया इनके पास। इन्होंने कहा प्रोजेक्ट ऐसा ये है, ये हमारे सोचा है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो सलीम साहब ने मुझसे कहा, वो मुझे रमेश बोलाते, रमेश आप यहाँ बैठिए, हम दोनों ज़रा अलग बात करना चाहते हैं।
0: ओके।
1: मैं हॉल में बैठा रहा, ये अंदर बेडरूम वगैरह में गए, इन्होंने आपस में बात कर ली, दोनों वहाँ आए बहुत खुश थे। तो
0: पैसों वगैरह की बातें,
1: पैसों की बात थी ना, तो मेरे सामने नहीं करना चाहते होंगे, जो भी होगा सलमान खान का क्या रेट होगा और राइटर एज इनका क्या रेट होगा, वो बातचीत तय हो गई, दोनों खुश थे। और सलीम साहब ने मुझे कहा रमेश सब डिसाइड हो गया भाई, सब ये सेटिस्फाइड है, पूछ लीजिए इनसे। मैंने कहा क्यों, चाहे चावला साहब ओके, बोले 100% ओके।
0: वाह,
1: ओके हो गया सब, हम निकले। हमने जाना था, नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त होता है जब पिक्चर एंड में, उस जमाने में, तो रेमनॉड लैब में गए, नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त किया, कैंची वो लगाई, नीचे लिफ्ट से नहीं आए, सीढ़ियों से नीचे उतरे, जैसे कंपाउंड में आए मेरे

0: गवर्नर साहब गिर गए।
1: वो
0: उनके बहुत शरीर बहुत हैवी था उनका,
1: जी जी जी,
0: बहुत पेट बहुत निकला हुआ ये सब वगैरह थक करके, और वो सब वो मालिक वो आ गया, रेमनॉड मालिक उनका वो आ गया और लोग जमा हो गए। हाथ पाथ देखा उन्होंने गड़बड़ है, तो रेमनॉड वाले ने बोला प्लीज यहाँ से लेके जाओ। तो बाहर गाड़ी में उनको डाला,
1: हॉस्पिटल ले गए,
0: हॉस्पिटल से पहले घर लेके आए, क्योंकि जा चुके थे, मतलब वो देखा किसी डॉक्टर ने जो वहाँ बुलाया गया लोकल, उसने कहा नहीं, उनको वहाँ पीछे सीट पे लिटाया हुआ था, मैं ड्राइवर के साथ आगे बैठा था, उनकी गाड़ी थी, तारापुर गार्डन यहाँ पे आए और वहाँ रहते थे और वो चले गए। और इस तरह ये सलीम साहब का सब्जेक्ट जो है
1: अटक गया,
0: फिर अटक गया।

0: मुझे तो हंसाए।
1: वो प्रोजेक्ट मेरा फिर ड्रॉप हो गया, मेरा प्रोड्यूसर ही नहीं रहा। अब मेरे लिए ये मुश्किल थी कि वो पिक्चर जो रह गई है, मैं बना चुका हूँ,
2: हाँ,
1: वो रिलीज होनी चाहिए। अब था वो रिलीज के चक्कर में, बजट कितना, उन्होंने किससे क्या उधार लिया, वो करते करते जितने पैसे आ रहे थे उससे ज्यादा उन्होंने उधार लिया हुआ था।
2: जी जी जी।
1: उन्होंने पर्सनल एक्सपेंसेस के भी लिया हुआ था, फैमिली के लिए लिया हुआ था, शिमले के थे वो, तो जो पैसे आने हैं मुझे डिस्ट्रीब्यूटरों से उससे ज्यादा उधार है।

0: तो सबसे मीटिंग करके मैं वो कम करवाता रहा कि पिक्चर रिलीज होगी तो आपके पैसे मिलेंगे, तो इतने पे मान जाइए, चल गई तो आप उसमें शेयर रख लीजिए अभी से,
1: जी जी
0: ना चली तो आप सबके लक है। करते करते एक साल लगा वो पिक्चर रिलीज करवाने में। वो पिक्चर जिस दिन रिलीज हुई उस दिन संजय दत्त अरेस्ट हो गया।
1: बाप रे,
0: उनके पोस्टर फाड़ दिए गए लालबाग में, और उनका बहुत जबरदस्त रोल था मेरी पिक्चर में। और ऋषि कपूर ने संजय दत्त को ये कहा था, साले इसमें तेरे को अवार्ड मिलेगा तू ये रोल कर। और मैं जब संजय दत्त से मेरी कोई दोस्ती नहीं थी तो थ्रू ऋषि कपूर में गया था साइन करने के।
1: हाँ हाँ,
0: तो उसके बाद संजय दत्त के साथ मेरी बहुत दोस्ती हो गई। मतलब फिर अगली पिक्चर में देखिए आप, संजय दत्त और सलमान खान हम ले रहे थे और मैंने ऋषि कपूर के कान में बात डाल दी थी।
1: जी जी जी,
0: इस तरह साहब हमारे फिल्म में भाग्य, सरकमस्टांसेस, एक्टर्स का वो, अब ये सोचो कब सोचा था कि साहिबा जैसी फिल्म एक डेढ़ साल लेट भी हो गई
1: और सलमान खान ड्रॉप हो गए,
0: जो वो ड्रॉप हो गए और वो पिक्चर जो है चली नहीं, लगाई मतलब लोगों ने पोस्टर फाड़ दिए ना।
1: लेकिन आज उस फिल्म को लोग बहुत
0: याद देखते हैं, नहीं करते भी हैं, देखते भी हैं, याद भी करते हैं, सब है, गाने भी इतना है, सब कुछ है। लेकिन देखिए जब हमने बनाई थी ये सोच के बनाई थी कि ये फिल्म, अभी जो फिल्में इस वक्त आ रही हैं ये सबसे हटके होगी,
1: बिल्कुल, और थी भी वो
0: उस तरह की है। तो एनीवेज माधुरी दीक्षित, संजय दत्त, ऋषि कपूर के साथ
1: बड़ी स्टार कास्ट,
0: बड़ी स्टार कास्ट, अच्छा मुहूर्त हुआ, अच्छी तरह से बनाई, बड़े प्यार से बनाई। मेरे प्रोड्यूसर ने कहीं कुछ ये नहीं कहा, ये नहीं करूँगा। मैंने कहा मैसूर जाना है मुझे, मैसूर पहले तो शूटिंग, चलो जाओ आते हैं चलते हैं, शिमला शूटिंग हो, वहाँ नॉर्थ में शूटिंग हो, के जहाँ पे बोला जो जिस तरह वो लेने के लिए कि ये विजुअल लो आएगा तो ये पिक्चर अलग लगेगी सबसे, ऐसी फिल्म थी। आप उसका विजुअल देखिए, आप बड़ा कैमरामैन लिया, महाजन साहब कैमरामैन थे,
1: ओहो
0: के महाजन, तो सब चीज़ें उन्होंने किसी चीज़ में कमी नहीं की। चावला साहब डेथ होनी थी और हार्ट अटैक, सीढ़ी उतरने का हार्ट अटैक तो पहली बार, तो फिर बाद में पता चला कि उनकी वाइफ ने मुझे बताया था कि उनका उनका कमजोर था हार्ट, पहले से प्रॉब्लम थी उनकी।
1: जी जी जी,
0: ये अचानक अभी सब कुछ नहीं हुआ है।

0: डेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: दीदी, नौकरी लग गई।
2: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ दी, नया मोबाइल।
2: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
3: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
2: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
1: पर दीप,
2: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
3: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
2: अच्छा।
4: आरबीआई कहता है,
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
6: तीनों कॉलेज में,
7: डोंट वरी,
6: फीस तो देखो।
8: क्या हाल है, क्या हुआ?
7: फीस की टेंशन।
8: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
0: आरबीआई कहता है,
9: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
10: दी, ये देख कैसे।
11: हैप्पी बर्थडे भाई।
10: दीका, हाँ मेरा फेवरेट कलर
11: हमेशा शॉपिंग।
10: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
12: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
0: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
10: आई नो ना।
0: आरबीआई कहता है,
9: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
13: दादी, कौन सा प्लांट है?
12: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
13: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
12: क्यों?
13: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
12: ओह, थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले, तेरी समझदारी का फल।
14: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो, कूल रहो।
15: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मुंबई से प्रसारित विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम FM 103.2 MHz पर आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से। शाम के 5 बज चुके हैं। श्रोताओं, आज फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सजीव फोन इन हेलो आकाशवाणी अपरिहार्य कारणों से आज सुन नहीं पाएंगे, तो लीजिए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनवा रहे हैं कुमार सानू अलका यांगनी की आवाजों में फिल्म कोयला से ये गीत।

दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म में लता मंगेशकर को, फिल्म लता मंगेशकर को कुमार सानू के साथ। आइए आप सुनते हैं लता मंगेशकर को उदित नारायण के साथ फिल्म दिल तो पागल है से।

अभी आपने उदित नारायण और अलका याग्निक को सुना फिल्म कुछ कुछ होता है में। आइए अब सुनते हैं अलका याग्निक और सोनू निगम को फिल्म कभी खुशी कभी गम में।

0: श्रोताओं, फिल्म संगीत का कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। मिलते हैं एक अंतराल के बाद।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

अभी आपने अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा को सुना फिल्म दिलवाले में। आइए अब अभिजीत और अलका याग्निक को सुनते हैं फिल्म चलते चलते में।

अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में गाए फिल्म बाजीगर के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं। आइए अब हम आपको हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों से अवगत करा दें। श्रोताओं से कुछ ही देर बाद यानी शाम 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। समाचार आप सुनेंगे 6:30 पर, पहले हिंदी में और उसके बाद राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, और रात 8:45 पर सुनेगा समाचार संध्या।

श्रोता, हमारी कल की सभा आरंभ होगी प्रातः 5:55 से। 6 बजे सुनिएगा हिंदी में समाचार और 6:05 पर वंदनवार। श्री रामचरित मानस गान का समय रहेगा 6:35 से और संगीत सरिता का आनंद लीजिए प्रातः 6:45 पर।

हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार झालावड़ का समय रहेगा प्रातः 7 बजे और 7:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। लोक संगीत का आनंद लीजिए प्रातः 8:15 से और महिला अपना कार्यक्रम सुनेगी महिला जगत प्रातः 8:30 पर।

प्रातः 11:10 पर सुनिएगा सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व कार्यक्रम के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का प्रसारण। और शाम 5 बजे युवा साथियों के लिए कार्यक्रम होगा युववाणी। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज और कल के कुछ मुख्य कार्यक्रम और इनके प्रसारण समय। हम आपके चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य जनसंपर्क मजबूत करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश के रूप में उभरा है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इतने

0: इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं। श्री मोदी ने गुडिबेल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने काजीपेट विजयवाड़ा रेल मल्टीट्रैकिंग गलियारा में काजीपेट अंडर रेल बाईपास सहित कई रेलवे और लॉजिस्टिक्स परियोजनाओं को भी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। तमिलगु वेत्री कड़गम टीवी की पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर ने श्री जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। राज्य में विधायकों के शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकारों को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। गृह मंत्री अमित शाह ने संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री शाह ने सरकारी एजेंसियों की तैयारियों का आकलन किया, साथ ही प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय की समीक्षा की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए नीट यूजी 2026 परीक्षा से जुड़ी कथित अनियमितताओं के संबंध में राजस्थान विशेष अभियान समूह की जांच में सहयोग कर रही है। एनटीए ने कहा है कि 3 मई को यह परीक्षा पूर्ण सुरक्षा प्रोटोकॉल के अंतर्गत आयोजित की गई थी। एजेंसी को 7 मई को परीक्षा के आसपास कथित कदाचार गतिविधियों के संबंध में सूचना मिली थी। एनटीए ने स्वतंत्र सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए इन सूचनाओं को केंद्रीय एजेंसियों को भेज दिया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 204 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने चौथे ओवर में 1 विकेट पर 45 रन बना लिए हैं। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 203 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। माँ द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, जितना छोटा शब्द उतनी ही बड़ी फीलिंग। एक ऐसी स्पीशीज जो पूरी लाइफ अपने बच्चों का ख्याल रखने में ही बिता देती है। बच्चे खाना ना खाएं तो भूख इनकी मर जाती है। बच्चे कुछ जीत के आएं तो सीना इनका चौड़ा हो जाता है। बच्चों को चोट लग जाए तो दर्द इनका होता है, और अगर एग्जाम हो तो नींद इनकी उड़ जाती है। चलो अब माँ के पास भी थोड़ा बैठ जाते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनके पैर दबाते हैं, माथे पे हाथ फेंक कर सुलाते हैं, थोड़ा हंसाते हैं और ये गुनगुनाते हैं।

0: करें क्या ना करें, गर्मी से कैसे बचें?
1: मैं बताती हूँ, घर से बाहर जाते समय हल्के आरामदायक कपड़े पहने, छाता और धूप का चश्मा जरूर पहने, समय समय पर नींबू पानी, शिकंजी, नारियल पानी आदि पीते रहें, और घर में बच्चे, बीमार और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें।
0: और क्या ना करें?
1: आसान है, धूप में जाने से बचें, बासी भोजन ना करें, चाय, कॉफी, शराब, सॉफ्ट ड्रिंक्स आदि का अधिक सेवन ना करें, कोई गंभीर लक्षण दिखे तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं।
2: मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ द्वारा

माँ की ममता सबसे प्यारी, दुनिया में है जो सबसे न्यारी। थामे हाथ वो चलना सिखाती, हर मुश्किल में जो राह दिखाती। आंचल में है उसके सारे जहां, सारा जहां। आंचल में है उसके सारा जहां, उससे ही है रोशन हर एक समा। दर्द हमारा खुद सह जाती, मुस्कान हमारे चेहरे पर सजाती। माँ है जीवन की पहचान, उससे ही है अपना मान। उसके बिना सब सूना लगता, माँ से ही हर सपना सस्ता। माँ से ही हर सपना सस्ता। मातृ दिवस पर ईश्वर द्वारा रचित अद्भुत, अनमोल, अनुपम, अद्वितीय कृति माँ को चंद्रभागा चैनल की ओर से सादर वंदन, शत शत नमन।

0: श्रोताओं, फिल्म संगीत में आज आपने जिन फिल्मों के गीत सुने वे फिल्में थी राजा और रंक, नीरजा, तारे जमी पर, रंग दे बसंती, फटा पोस्टर निकला हीरो, और आवाज़ें लता मंगेशकर, सुनिधि चौहान, नताशा तेजुरा, शंकर महादेवन, एआर रहमान, एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे पहले हिंदी में और उसके बाद राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में समाज की भागीदारी को राजनीतिक व्यवस्था से कारगर बताया। देश भर में कल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन राज्यस्तरीय समारोह जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली दौरे पर राज्य के विकास के लिए केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की और पश्चिमी राजस्थान में हीट वेव का प्रकोप जारी, दिन के साथ रातें भी काफी गर्म। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के निर्माण के लिए सभी से एकजुट होने की अपील की है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में समाज की भागीदारी राजनीतिक व्यवस्था से कहीं अधिक कारगर है। प्रधानमंत्री आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने सभी से पर्यावरण के लिए जिम्मेदारी, युवाओं को रोजगार और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ राष्ट्र निर्माण में सहभागी होने की अपील की।
2: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज

0: समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि और इस प्रकार से काम करने वाली अन्य संस्थाएं भी, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आध्यात्मिक केंद्रों के समर्थन से किसानों को प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और धरती को नुकसानदायक रासायनिक उर्वरकों से बचाने में मदद मिल सकती है। उन्होंने कहा कि ये केंद्र प्रति बूंद अधिक फसल पहल को बढ़ावा देने, जल संरक्षण, बिजली की बचत और सिंगल यूज प्लास्टिक को नकारने में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। देश भर में कल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले आक्रमण के 1000 साल और मंदिर पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये पर्व मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय समारोह गुजरात के सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी की उपस्थिति में कल ध्वज पूजन होगा। साथ ही पुनर्निर्मित मंदिर के शिखर का 11 तीर्थ स्थलों के जल से अभिषेक किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए ऐसे अवसर सभी में नई ऊर्जा का संचार करते हैं।
0: कल सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्षों का उत्सव मनाया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए ऐसे ऐतिहासिक अवसर हमें नई ऊर्जा से भरते हैं।
1: राज्य में भी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। राज्यस्तरीय कार्यक्रम जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समारोह में शामिल होंगे। कला और संस्कृति विभाग की शासन सचिव शुचि त्यागी ने बताया कि इस अवसर पर प्रदेश भर के शिवालयों में विशेष धार्मिक कार्यक्रम होंगे, साथ ही राष्ट्रीय आयोजन का सीधा प्रसारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली दौरे पर रहे। उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की। इस दौरान राज्य में जल जीवन मिशन की प्रगति, रामजल सेतु लिंक परियोजना और यमुना जल समझौते पर चर्चा की गई। साथ ही राजस्थान के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण सिंचाई और पेयजल परियोजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर भी विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने केंद्रीय ऊर्जा, आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल से भी भेंट की। इस दौरान राजस्थान में ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और हरित ऊर्जा तथा शहरी विकास से जुड़े विषयों पर बातचीत हुई। श्री शर्मा ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष से भी मुलाकात कर हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत पर बधाई दी। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज अलवर में साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। श्री यादव ने सभी को मातृ दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमें जन्म देने वाली माता और धरती माता दोनों के प्रति कृतज्ञ रहना आवश्यक है। इसके बिना मनुष्य का अस्तित्व संभव नहीं है। केंद्रीय मंत्री श्री यादव और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज अलवर, खैरथल तिजारा और कोटपुतली क्षेत्र के करीब 10,000 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। अलवर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री यादव ने कहा कि इन विकास कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाएगा।
2: तो राम जल सेतु परियोजना है, उसमें विशेष रूप से डडीकर का रिजर्वायर, नीमराणा का रिजर्वायर, अलवर भरतपुर चंबल मेगा ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट को लेकर के, यमुना लिंक प्रोजेक्ट हरियाणा और राजस्थान को लेकर, राणा प्रताप सागर से बिलासपुर वाटर लिंक प्रोजेक्ट को लेकर, उसके साथ ही अलवर शहर के वाटर सप्लाई के 25 करोड़ के विषयों को लेकर, उसके साथ ही जहां तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का विषय है, रामगढ़ में जो हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चाहते हैं वो हमारा एनसीपी जोन में आ रहा है, उसको लेकर के चर्चा हुई।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। व्याख्याता कृषि विज्ञान भर्ती परीक्षा 2022 में पेपर लीक और नकल गिरोह का खुलासा हुआ है। एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने आज जयपुर में प्रेस वार्ता में बताया कि भर्ती परीक्षा में संगठित तरीके से पेपर लीक किया गया और फर्जी डिग्री तथा प्रमाण पत्रों के माध्यम से नौकरी हासिल करने की कोशिश की गई। गिरफ्तार अभ्यर्थी अशोक कुमार यादव ने पूछताछ में पेपर लीक की बात कबूल की है। एडीजी ने बताया कि पेपर लीक मामले में शेर सिंह को भी

0: गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा और उसके रिश्तेदार विजय डामोर को भी गिरफ्तार किया गया है। एसओजी कटारा के आरपीएससी सदस्य बनने की नियुक्ति प्रक्रिया और उसके द्वारा किए गए पेपर लीक से जुड़े नेटवर्क की भी जांच कर रही है।
1: हमारे द्वारा बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया गया है। बाबूलाल कटारा के गिरफ्तारी के उपरांत में उनसे पूछताछ करी जा रही है। पूछताछ में तरह तरह के जानकारियां प्राप्त हो रही है। मेन चीज की बाबूलाल कटारा द्वारा स्वयं द्वारा क्या क्या गड़बड़ियां करी गई उसके बारे में जानकारी, इसके अलावा उनके कार्यकाल के दौरान जो उन्होंने स्वयं ने नहीं करी हो लेकिन उनकी नॉलेज में होगी और क्या क्या गड़बड़ियां हुई है उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन एकत्रित करी जा रही है।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी इस बीच नीट यूजी 2026 परीक्षा से जुड़ी कथित गड़बड़ियों के लिए राजस्थान एसओजी को जांच में सहयोग कर रही है। एनटीए इस मामले में सभी जरूरी डेटा और तकनीकी सहायता भी दे रही है। एनटीए की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 3 मई को ये परीक्षा पूरे सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत आयोजित की गई थी। 7 मई को परीक्षा के बारे में कथित कदाचार गतिविधियों के बारे में एनटीए को सूचना मिली। इसके बाद आवश्यक कार्यवाही के लिए ये सूचनाएं केंद्रीय एजेंसियों को भेज दी गई। फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा बैठक की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री शाह ने सरकारी एजेंसियों की तैयारियों का आकलन किया। उन्होंने प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी तालमेल पर भी चर्चा की। गृह मंत्री ने लंबी अवधि के बाढ़ निवारण उपायों की प्रगति को भी जांचा। इनमें अहम बुनियादी परियोजनाओं का संरक्षण, नदी प्रबंधन पहल और पूर्वानुमान की वैज्ञानिक प्रगति शामिल है। बैठक में जनजागरूकता, जानमाल के नुकसान को रोकने और आवश्यक राहत सामग्री तथा दवाओं के पर्याप्त भंडार सुनिश्चित करने पर भी मंथन किया गया। और अब मौसम। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों में हीट वेव का प्रभाव बना हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों के लिए पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में तेज गर्मी और लू को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। यह दिन के साथ ही रात में भी हीट वेव का असर रह सकता है। आज भी इन जिलों में लू का प्रकोप रहा। इन जिलों में दिन का पारा औसतन 44 से 45 डिग्री सेल्सियस मापा जा रहा है। वहीं चित्तौड़गढ़, बीकानेर, उदयपुर, जालौर और श्रीगंगानगर भी तेज गर्मी की चपेट में हैं। इधर पूर्वी राजस्थान के जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया जा रहा है। हालांकि जयपुर, अलवर, दौसा, करौली, सीकर, टोंक और झुंझुनू में धूप की तपिश और उमस लोगों को परेशान कर रही है। सुबह शाम हल्की हवाएं चलने से मामूली राहत मिल रही है। कल से राज्य में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार हैं। इससे कई जिलों में आंधी बारिश की संभावना है। सवाईमाधोपुर जिले में पशुओं में मुंहपका, खुरपका बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण किया जा रहा है। पशुपालन विभाग की ओर से ये अभियान 15 मई तक चलेगा। विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. राजीव गर्ग ने बताया कि जिले में अब तक 2.5 लाख से अधिक पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। उन्होंने पशुपालकों से गौवंश का समय पर टीकाकरण करवाकर इस अभियान में भागीदारी निभाने की अपील की है।
2: सवाईमाधोपुर जिले में खुरपका मुंहपका रोग के लिए जो FMD टीकाकरण कार्य का 7th चरण अभी इस वर्ष राजस्थान के अंदर सवाईमाधोपुर जिले ने सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करते हुए अधिक से अधिक पशुपालकों को लाभान्वित किया है। मेरा समस्त जिले के पशुपालकों से अधिक पशुओं में अपने टीकाकरण कराने का आह्वान किया जाता है ताकि हम इस बीमारी को जड़ से खत्म कर सकें ताकि ये पशुओं को नुकसान ना पहुंचा पाए।
0: उत्तर पश्चिम रेलवे बाड़मेर से हरिद्वार के बीच कल से विशेष रेलगाड़ी चलाएगा। ये सेवा सप्ताह में 2 बार संचालित होगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि ये रेलगाड़ी बाड़मेर से हर सोमवार और गुरुवार को उपलब्ध रहेगी। ये विशेष ट्रेन 16 जुलाई तक चलेगी। आईपीएल क्रिकेट के प्लेऑफ में आज दो मैच हो रहे हैं। पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच जारी है। चेन्नई में खेले जा रहे इस मैच में लखनऊ की टीम ने सीएसके को जीत के लिए 204 रनों का लक्ष्य दिया है। वहीं दूसरा मैच शाम 7:30 बजे से रायपुर में खेला जाएगा। इसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस की टीमें आमने सामने होंगी।

और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में समाज की भागीदारी को राजनीतिक व्यवस्था से कारगर बताया। देश भर में कल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन, राज्यस्तरीय समारोह जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली दौरे पर राज्य के विकास के लिए केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की और पश्चिमी राजस्थान में हीट वेव का प्रकोप जारी, दिन के साथ रातें भी काफी गर्म। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से अलवर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख अविनाश मल्होत्रा ने तैयार किया है। राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े पिछले दिनों अलवर पहुंचे। उन्होंने मत्स्य यूनिवर्सिटी के छठे दीक्षांत समारोह में भाग लिया। समारोह में उन्होंने 71 मेधावी छात्रों को उपाधि और मेडल प्रदान किए। इनमें 37 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर मेडल और 28 पीएचडी उपाधियां शामिल हैं। राज्यपाल ने समारोह में कुल 44,293 छात्रों को डिग्री और उपाधि प्रदान की। बीते दिनों केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर शहर में पार्क लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने आमजन और विभिन्न संस्थाओं से लाइब्रेरी के लिए पुस्तक दान करने की अपील की। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से पिछले दिनों जिले में भी एसआई पुलिस भर्ती 2025 की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। दो दिन तक दो दो पारियों में हुई इस परीक्षा के लिए कुल 64 परीक्षा केंद्र बनाए गए। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा संपन्न कराने के लिए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की ओर से सख्त निगरानी की गई। साथ ही डमी कैंडिडेट पकड़वाने या नकल की सूचना देने वालों के लिए 1,00,000 रुपये के इनाम की घोषणा भी की गई। अलवर में नगर निकाय चुनाव के लिए जिले के सभी वार्डों की निर्वाचक नामावलियां तैयार की जा रही हैं। नगर निगम के 65 वार्डों के लिए निर्धारित सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। इस दौरान मतदाता अपने संबंधित मतदान केंद्र पर पहुंचकर प्रगणक के पास उपलब्ध फोटो युक्त मतदाता सूची में अपना नाम चेक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रचार प्रसार और योजना से मिलने वाले लाभों की जानकारी देने के लिए पिछले दिनों जिले के विभिन्न स्थानों पर शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में 575 लाभार्थियों के पंजीकरण किए गए और 243 आवेदकों ने मौके पर ही वेंडर का चयन किया। शिविर के दौरान लाभार्थियों को इंडक्शन कुक टॉप भी वितरित किए गए। ग्राम रथ अभियान के तहत जिले में पिछले दिनों विकास रथों को कलेक्ट्रेट परिसर से रवाना किया गया। ये रथ जिले के अलवर ग्रामीण, रामगढ़, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, कठुमर और थानागाजी में विभिन्न क्षेत्रों में 15 दिनों तक संचालित होंगे। इन विकास रथों के माध्यम से 13 सरकारी विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है और पात्र लोगों को इन योजनाओं से जोड़ने का काम भी किया जा रहा है। जिले में संविधान निर्माता और भारत रत्न से सम्मानित डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती श्रद्धा भाव से मनाई गई। शहर में कई स्थानों पर कार्यक्रम और समारोह आयोजित हुए। इसी कड़ी में जेल सर्किल से अंबेडकर सर्किल तक मैराथन और स्वास्थ्य दौड़ के साथ शोभा यात्रा भी निकाली गई। अंबेडकर छात्रावास में विचार गोष्ठी और सामुदायिक भवन में जनसभा का आयोजन हुआ। वहीं महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती के अवसर पर भी जिले में कई कार्यक्रम हुए। कलेक्ट्रेट सभागार में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। नगर निगम कार्यालय सहित सभी उपखंड कार्यालयों में महात्मा ज्योतिबा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरणा लेकर समाज के विकास का प्रण लिया गया। सरिस्का बाघ परियोजना की बफर रेंज में इन दिनों बाघिन ST-19 और उसके 4 शावकों की अच्छी साइटिंग देखी जा रही है। सरिस्का में वर्ष 2008 में बाघों के पुनर्स्थापन के बाद अब यहां बाघों की संख्या बढ़कर 50 हो गई है। जिले में पिछले दिनों मौसम के कई रूप देखने को मिले। कभी तेज गर्मी तो कभी आंधी बारिश और ओलों का दौर चला। फिलहाल जिले में एक बार फिर से तेज गर्मी का दौर शुरू हो गया है। बढ़ते तापमान को देखते हुए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे दिन के समय अनावश्यक कार्यों के लिए घर से बाहर ना निकले, साथ ही तरल पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। इधर जिला प्रशासन भी तेज गर्मी से लोगों के बचाव के लिए प्रयासरत है। वहीं नगर निगम की टीम शहर की सड़कों पर पानी का छिड़काव कर रही है। जयपुर में आयोजित ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार

0: आर्मी भाग लेने आए पोलैंड, थाईलैंड, स्लोवाकिया, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी देशों के टूर ऑपरेटरों के दल ने पिछले दिनों सरिस्का टाइगर रिजर्व क्षेत्र का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान प्रतिनिधियों ने इको टूरिज्म गतिविधियों और टाइगर सफारी का भी लुत्फ उठाया। सरिस्का में पिछले दिनों वन्य जीव गणना संपन्न हुई। इस बार बघेरों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है। इसके अलावा लंगूर, बंदर और नील गाय की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही अलवर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। पहली आजरी खास खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र निर्माण में समाजरी भागीदारी ने राजनीतिक व्यवस्था सो कारगर बतायो। देशभर में काल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व रो आयोजन, राज्य स्तरीय जलसो जयपुर आज झारखंड महादेव मिंदर माए वेला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली दौरा मात है, राज्य रा विकास खातर केंद्रीय मंत्रियों मुलाकात करी। और पश्चिमी राजस्थान माए हीट वेव रो प्रकोप जारी, दिन रस आगे रात भी घने गरम। समाचार आ रहे सागे, मैं रचना पारिक और अब है समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत बनाबा खातर सगलाऊं एकजुट हो बारी अरज करी। वे कया के राष्ट्र निर्माण माए समाजरी भागीदारी राजनीतिक व्यवस्थाओं बत्ती कारगर है। प्रधानमंत्री आज बेंगलुरु माए आर्ट ऑफ लिविंग री 45वीं जयंती जलसा माए बोल रहा। वणा संस्थान माए नया बणिया ध्यान मंदिर उद्घाटन भी करो। इन मौके श्री मोदी पर्यावरण खातर जिम्मेदारी, नौजवाना ने रोजगार और आंतरिक शुचितारी भावना रे सागे राष्ट्र बनाबा माए सगड़ा मिलर काम कर बारी अरज करी।
2: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि और इस प्रकार से काम करने वाली अन्य संस्थाएं भी, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
1: प्रधानमंत्री कया के आध्यात्मिक केंद्रारा समर्थनों कास्कारा ने प्राकृतिक खेती ने बढ़ावो देवा और धरती ने नुकसान देबा वाला रासायनिक उर्वरक सु बचाबा माए इमदाद मिल सके है। देशभर माए काल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनायो जावेला। सोमनाथ मंदिर माए विया हमला रा 1000 बरस और मंदिर पुनर्निर्माण रा 75 बरस पूरा हो बारे मौके ओ पर्व मनायो जा रियो है। राष्ट्रीय जलसो गुजरात रा सोमनाथ मंदिर माए अमृत पर्व रा रूप माए मनायो जा रियो है। प्रधानमंत्री श्री मोदी री मौजूदगी माए काल ध्वज पूजा वेला अमृत पर्व रे मौके पुनर्निर्मित मंदिर रा शिखर रो 11 तीर्थ स्थलारा जलों अभिषेक करियो जावेला। प्रधानमंत्री श्री मोदी कया के विकसित भारत खातर इन भात रा मौका नुवी ऊर्जा देवे है।
2: कल सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्षों का उत्सव मनाया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए ऐसे ऐतिहासिक अवसर हमें नई ऊर्जा से भरते हैं।
1: राज्य में ही सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनायो जावेला। राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुरा झारखंड महादेव रामिंदर माए वेला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जलसा माए शामिल वेला। कला और संस्कृति महकमारी शासन सचिव सुचित त्यागी बतायो के इन मौके प्रदेश भर माए शिव मंदिरा माए खास धार्मिक कार्यक्रम वेला, सागे ही राष्ट्रीय आयोजन रो सीधो प्रसारण भी करियो जावेला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली रा दौरा माथेरिया, वणा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल मुलाकात करी। इन दौरान राज्य माए जल जीवन मिशन री प्रगति, राम जल सेतु लिंक परियोजना और जमुना जल समझौता माथे चर्चा करी गई। सागे ही राजस्थान खातर न्यारी न्यारी महताऊ सिंचाई और पेयजल परियोजना वा खातर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री

0: श्री शर्मा केंद्रीय ऊर्जा आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल सू भी भेंट करी। इन दौरान राजस्थान माय ऊर्जा हल्का माय आत्मनिर्भरता और हरित ऊर्जा और शहरी विकास से जुड़िया विषय माते बातचीत हुई। वणा भाजपा रा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और राष्ट्रीय महासचिव बी एल संतोष सू भी भेंट कर हाल ही माय विया विधानसभा चुनाव माय पार्टी री जीत री बधाई दी। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव आज अलवर माय साइकिल रैली ने हरी झंडी दिखा रवाना करिया। रैली माय बड़ी तादाद माय महिला मा भाग लीना। श्री यादव सगड़ा ने मातृ दिवस री शुभकामना मा देता थका कया के महाने जन्म देवा वाली माँ और धरती माता दोनों रो आभारी रहनु चाहिए। आरे बिना मिनख रो अस्तित्व नहीं रह सके है। केंद्रीय मंत्री श्री यादव और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज अलवर खैरथल तिजारा और कोटपुतली हलकारा करीब 10,000 करोड़ रुपया की लागत वाली विकास परियोजना वाली समीक्षा करी। अलवर माए प्रेस वार्ता ने संबोधित करता थका श्री यादव कया के इन विकास कामा ने तय बगतरी मियाद माए पूरो करियो जावेला।
1: जो राम जल सेतु परियोजना है उसमें विशेष रूप से डडीकर का रिजर्वायर, नीमराना का रिजर्वायर, अलवर भरतपुर चंबल मेगा ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट को लेकर के, यमुना लिंक प्रोजेक्ट हरियाणा और राजस्थान को लेकर, राणा प्रताप सागर से बिलासपुर वाटर लिंक प्रोजेक्ट को लेकर, उसके साथ ही अलवर शहर के वाटर सप्लाई के 25 करोड़ के विषयों को लेकर, उसके साथ ही जहाँ तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का विषय है, रामगढ़ में जो हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चाहते हैं वो हमारा एनसीपी जोन में आ रहा है, उसको लेकर के चर्चा हुई।
0: शिक्षा मंत्रालय गर्मी री छुट्टिया माए देश भर स्कूल माए भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर राखेला। एक हफ्ता माए ओ शिविर भारतीय भाषावा माए बुनियादी संवाद कौशल सिखावा, शब्दा ने जानबा, आपरो परिचय देवा और रोजमर्रा जीवन री बातचीत और संस्कृति री सराहना माते केंद्रित वेला। इनरो मकसद राष्ट्रीय शिक्षा नीति रे मुजब समावेशी और समान शिक्षा रा दृष्टिकोण ने बढ़ावो देनो है। ये समाचार आप आकाशवाणी रा जयपुर अजमेर केंद्रों सुन रिया हो। व्याख्याता कृषि विज्ञान भर्ती परीक्षा 2022 माए पेपर लीक और नकल गिरोह रो खुलासो वियो है। एसओजी रा एडीजी विशाल बंसल आज जयपुर माए प्रेस वार्ता माए बताया के भर्ती परीक्षा माए मेल मिलापों पेपर लीक करियो गयो और फर्जी डिग्री और सर्टिफिकेट रे जरिए नौकरी हासिल करबारी कोशिश करी गई। गिरफ्तार अभ्यर्थी अशोक कुमार यादव पूछताछ माए पेपर लीक री बात कही। एडीजी बतायो के पेपर लीक मामला माए शेर सिंह भी गिरफ्तार करियो गयो है। आरपीएससी रा पहला आला सदस्य बाबूलाल कटारा और उनका रिश्तेदार विजय डामोर ने भी गिरफ्तार करियो गयो है। एसओजी कटारा और आरपीएससी सदस्य बनबारी नियुक्ति प्रक्रिया और उन रिकानी करिया गया पेपर लीक से जुड़िया नेटवर्क री भी जांच करी जा रही है।
2: हमारे द्वारा बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया गया है। बाबूलाल कटारा के गिरफ्तारी के उपरांत में उनसे पूछताछ करी जा रही है। पूछताछ में तरह तरह के जानकारियां प्राप्त हो रही है। मेन चीज कि बाबूलाल कटारा द्वारा स्वयं द्वारा क्या क्या गड़बड़ियां करी गई उसके बारे में जानकारी, इसके अलावा उनके कार्यकाल के दौरान जो उन्होंने स्वयं ने नहीं करी हो लेकिन उनकी नॉलेज में होगी और क्या क्या गड़बड़ियां हुई है उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन एकत्रित करी जा रही है।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी इन बीच नीट यूजी 2026 परीक्षा से जुड़ी कथित गड़बड़ियां खातर राजस्थान एसओजी री जांच माए इमदाद करी है। एनटीए इन मामला माए सगड़ा जरूरी डेटा और तकनीकी सहायता भी दे रही है। एनटीए रिकानियों जारी बयान माए कहो गयो है कि 3 मई ने आ परीक्षा पूरा सुरक्षा प्रोटोकॉल रे तहत राखी गई ही। 7 मई ने परीक्षा रा बारा माए कथित कदाचार गतिविधियां रा बारा माए एनटीए ने सूचना मिली। इनरे पछे जरूरी कार्यवाही खातर ये सूचना केंद्रीय एजेंसियां ने भेज दी गई। फिलहाल आरी जांच चल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संभावित बाढ़ और लू रा हालात से निपटबा खातर देश रे तैयारियां नी समीक्षा बैठक करी। नई दिल्ली माए आज एक उच्च स्तरीय बैठक माए श्री शाह सरकारी एजेंसियां ने तैयारियां रो जायजो करियो। शुरुआती चेतावनी प्रणालियां संसाधन री तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय री समीक्षा करी। गृहमंत्री देश में करिया जा रिया दीर्घकालीन बाढ़ निवारण उपायों की प्रगति की भी समीक्षा करी। जनमाय महताव ढांचागत परियोजना वन बचाव नदी प्रबंधन पहल और पूर्वानुमान में वैज्ञानिक प्रगति भेली है। बैठक में जन

0: અમૃતતા જાનમાલ ઓર નુકસાનને રોકવા ખાતર નિર્માણ કાર્યક્રમ જરૂરી રાહત સામગ્રી ઓર ચિકિત્સા તૈયારીયારા ચાવતા ભંડારને પક્કો કરવા માથે ભી ચર્ચા કરી ગઈ. बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर और आरे सारे रा हल्का माई हीट वेव रो असर बणियोड़ो है. मौसम महकमो आवता दो तीन दिना खातर पश्चिमी राजस्थान रा कई जिला माई तेज गर्मी और लू खातर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी करियो है. अठे दिन रसा गए रात माई भी हीट वेव रो असर रह सके है. आज भी आ जिला माई लू रो असर रियो. जिन जिला माई दिन रो पारो करीब 44-45 डिग्री सेल्सियस मापियो जा रियो है. वठी ने चित्तौड़गढ़ बीकानेर उदयपुर जालौर और श्रीगंगानगर भी तेज गर्मी री चपेट माए हैं. अठीने पूर्वी राजस्थान रा जिला माए बतो तापमान 40 डिग्री सेल्सियस सो नीचे दर्ज करियो जा रियो है. हालांकि जयपुर अलवर दौसा करौली सीकर टोंक और झुंझुनू माए धूप री तपिश और उमस लोगों ने परेशान करी है. सुमारे सिंजा हल्की हवा चालबासु मामूली सी राहत मिल रही है. कालू राज्य माए नया पश्चिमी विक्षोभ रे सक्रिय हो बारा आसार है. इनसो कई जिला माए आंधी और बिरखा होबारो अंदाजो है. सवाई माधोपुर जिला में ढांडा ढोरी मुंहपका खुरपका बीमारियां बचाबा खाटा टीकाकरण करियो जा रियो है. पशुपालन महकमारी कानियो ओ अभियान 15 मई तय चालेला. महकमारा संयुक्त निदेशक डॉक्टर राजीव गर्ग बताया कि जिला में हाल तई 2.5 लाख बत्ता पशुआर टीका लगाया जा चुकिया है. वणा पशुपालकों गोवंशो टेम माथे टीकाकरण करवार इन अभियान में भागीदारी निभावारी अरज करी है.
1: सवाईमाधोपुर जिले में खुरपका मुंहपका रोग के लिए जो FMD टीकाकरण कार्य का सप्तम चरण अभी इस वर्ष राजस्थान के अंदर सवाईमाधोपुर जिले ने सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करते हुए अधिक से अधिक पशुपालकों को लाभान्वित किया है. मेरा समस्त जिले के पशुपालकों से अधिक पशुओं में अपने टीकाकरण कराने का आह्वान किया जाता है ताकि हम इस बीमारी को जड़ से खत्म कर सकें ताकि ये पशुओं को नुकसान न पहुँचा पाए.
0: उत्तर पश्चिमी रेलवे बाड़मेरू हरिद्वार बीच कालू खास रेलगाड़ी चलावेला और सेवा सप्ताह में 2 भगत चालेला. उत्तर पश्चिमी रेलवारा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन रे मुजब ये रेलगाड़ी बाड़मेरू हर सोमवार और गुरुवार ने मुहैया रेवेला. यह खास गाड़ी 16 जिला तय चालेला. और अब आखिर माए खास खबर एक फेरू. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र निर्माण में समाज री भागीदारी ने राजनीतिक व्यवस्था सु कारगर बताया. देशभर में काल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व रो आयोजन. राज्य स्तरीय जलसो जयपुर आज झारखंड महादेव मिंदर माए वेला. मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज दिल्ली रा दौरा माथे. राज्य रा विकास खातर केंद्रीय मंत्रियों मुलाकात करी. और पश्चिमी राजस्थान में हीट वेव रो प्रकोप जारी. दिन रसा गए रात भी घनी गर्म. इंडस आगे ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन अठे ही पूरो वियो. मां को आगलो समाचार बुलेटिन काल सुमार है 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला. नमस्कार.
2: FM 103.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है. शाम के 7 बज चुके हैं. अब प्रस्तुत हमारे केंद्र से किसान भाई बहनों के लिए कार्यक्रम कृषक चौपाल.

कृषक चौपाल कार्यक्रम छनवाड़ा संधा करथान भाई बहना कहते हैं आपका साथी मुकट बिहारी मीना किया डिसे घणो घणो राम राम करथान भाई बहना। वो देखो मौसम चाल रो

0: વાત કરો આપણે ફસલ વિવિધીકરણ તો આયકીની અનિશ્ચિતતા કમ હો શકે છે, ઉપજ સ્થિરતા બઢ શકે છે, ગુંજાઈશ અર્થવ્યવસ્થાઓની ઉપસ્થિતિમાં લાગતમાં કમી આ શકે છે, સાથી આય બઢ શકે છે, પોષણ વિવિધતા લા શકે છે, અને ગરીબી કી જે સંભાવના છે ઓ કમ કરી જા શકે છે. તો કરસાનભાઈ ભાવનાઓ ફસલ વિવિધીકરણ યાની કે એક હી ખેતમાં વિભિન્ન પ્રકાર કી ફસલા ઉગાવા સે જોખિમ કમ કરક મિટ્ટી કો જો સ્વાસ્થ્ય છે ઉનકતા આપણ સુધાર શકે છે, મુનાફા બઢાવવામાં આપણ મદદ પ્રાપ્ત કર શકે છે. તો કરસાનભાઈ ભાવનાઓ એ ફસલ ચક્ર કતા આપણ જરૂર અપનાવવા.
1: जलवायु न्याय, यह यूनेस्को का संदेश है. जलवायु संकट एक निष्पक्षता का भी मामला है. यह उन लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है जिन्होंने इसे पैदा करने में सबसे कम योगदान दिया है, जैसे कि गरीब लोग, महिलाएं, बुजुर्ग लोग और आने वाली पीढ़ियां. जलवायु परिवर्तन को मानव अधिकार के मुद्दे के रूप में देखने का मतलब है कि सबके साथ निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित किया जाए. यह उन लोगों को साक्षात बनाता है जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है. यह देशों और पीढ़ियों के बीच जिम्मेदारी को निष्पक्ष रूप से बांटता है. जलवायु न्याय का मतलब है सबके लिए समानता, शांति और सतत विकास. क्या आप जानते हैं, यदि दुनिया का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो अफ्रीका की आधी से ज्यादा आबादी कुपोषण के जोखिम में पड़ सकती है. यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है.
0: करसानमय बोणो, हरा चारा का विकल्प नेपियर घास, इस संबंध में ही सुना एक बहुत ही बढ़िया जानकारी. किसान साथियों नमस्कार. किसान साथियों, हरे चारे का विकल्प नेपियर घास, आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए कार्यक्रम में हमारे साथ है डॉक्टर रवि यादव, कृषि विशेषज्ञ उद्यानिकी वानिकी महाविद्यालय झालावाड़. तो सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है. नमस्कार.
2: नमस्कार.
0: तो सर, सबसे पहले हम बातचीत करें कि नेपियर घास क्या है.
2: बिल्कुल, नेपियर घास एक बहुवर्षीय चारा फसल है जिसे हम एक बार लगाने के बाद कई वर्षों तक उससे हरे चारे का उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं. यह है फसल चारे की वो फसल है जो बरसीन रिंजिका की अपेक्षा कई वर्षों तक हमें बार बार 5 से 6 कटाई प्रति वर्ष देने वाली हरे चारे की फसल है, और साथ में ही उचित और अधिक पाचनशीलता के साथ, पाचन क्षमता के साथ अधिक प्रोटीन, फाइबर, रेशे वाली चारा फसल है, क्योंकि इसके अंदर 8 से 10% तक प्रोटीन पाया जाता है और 10 से 15% इसमें फाइबर्स होते हैं. तो ये एक अच्छी चारा फसल के रूप में हमारे पशुधन के लिए मानी जाती है.
0: अच्छा, हम बातचीत करें तो किसान साथी नेपियर घास की खेती कैसे करें, इसको कैसे लगाएं?
2: जी, क्योंकि हम पशु पर निर्भर रहने वाले देश के नागरिक हैं.
0: जी जी.
2: हमारी जो 20 करोड़ जनसंख्या है वो अकेले पशुधन पर निर्भर है, और उसका सबसे ज्यादा हमारा जो जीडीपी है उसमें भी 4% पशुधन का ही जाता है. प्रत्येक जो किसान है उसकी 10 से 15% जो आय है वो अकेले पशुधन से आती है. तो हमें कहीं ना कहीं हमारा जो दूध उत्पादन है उसके लिए चारा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण अवयव पशुधन के अंदर माना जाता है. तो चारा के अंदर अगर हम हरे चारे की बात करें तो उसकी वर्ष समस्या रहती है पशुपालन में, तो उसमें ही, उस समस्या के समाधान में ही हम सुपर नेपियर जो घास है वो बहुवर्षीय चारा फसल, उसका चुनाव कर और उसकी बुआई कोई भी हमारे बलुई दोमट मृदा हो जिसका पीएच 6.5 से 8.5 हो, उसको हम कलम के द्वारा और बीज के द्वारा बारिश में भी लगा सकते हैं और वर्ष भर किसी भी समय पर लगा सकते हैं. यह फसल ऐसी फसल है जो हमारी बरसिन रिंज का और जो चारा फसल है जो 2-3 महीने चलती है उनकी अपेक्षा ये साल भर और कई सालों तक चलने वाली और बार बार कटाई करने वाली और अधिक उत्पादन देने वाली फसल है, क्योंकि इसका 1 हेक्टर में ही 150 से 200 टन तक प्रति एकड़ उपज प्राप्त होती है, और आमदनी की बात करें तो एक किसान साथी को 1.5 लाख से 2 लाख तक प्रति एकड़ आमदनी प्राप्त होती है. इसलिए इसे हरी ऊर्जा पशुओं के लिए माना जाता है.
0: बहुत ही अच्छी बात है सर, आपने बताया यानी कि किसी भी मौसम में हमारे जो किसान साथी हैं वो इसको लगा सकते हैं.
2: जी.
0: अच्छा, हम बातचीत करें तो इसको नेपियर घास को लगाने के साथ साथ दूसरी कौन सी अंतर फसल हमारे किसान साथी ले सकते हैं?
2: जी, बहुत अच्छा. ये जो नेपियर घास है, मैं आपको बता दूं कि ये हमारी संकरण से प्राप्त हुई एक घास है जिसमें बाजरा और घास का जो हमारी थी उनका क्रॉस कराकर जब जो संकरण प्राप्त हुआ वो ये नेपियर घास है उसका रिजल्ट. और इसका हम जब अंतर फसल में काम में लेते हैं तो हम इसको सभी दलहनी चारा

0: वाली फसलें और हमारी जो खरीफ में चारा वाली फसलें उनके साथ अंतर फसल में इसको काम में ले सकते हैं। जैसे सुपर नेपियर घास के साथ आप बाजरा की फसल लगा सकते हैं, नेपियर के साथ आप बरसिन रिंज का सरसों लगा सकते हैं। ये सभी अंतर फसलें इसके साथ आसानी से और अच्छे उत्पादन के साथ प्राप्त हो जाती है और अच्छा उत्पादन इसका उनके साथ अंतर फसल के साथ में रहता है।
1: अच्छा सर, इसकी किस्में कौन कौन सी है जिनको किसान साथी लगा सकते हैं?
0: जी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका ये कि नेपियर घास की किस्में, तो मैं बताना चाहूंगा हमारे सभी किसान साथियों को कि इसकी चार पांच जो वेराइटियां हैं संकर किस्में, उनमें सबसे पहले है IGF जो कि हमारे मध्य और उत्तर भारत के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, और इसके साथ ही IR संकर वेराइटी है, नेपियर 3 संकर वेराइटी है, और साथ में ही अगर पंजाब के क्षेत्र में उत्तराखंड के क्षेत्र में अगर हम इसको उगा रहे हैं तो PBN वेराइटी आती है, वो सबसे उचित मानी जाती है। साथ में पूरे इंडिया में अगर हमें नेपियर घास की ऐसी वैरायटी जो पूरे भारत में उग सकती है उसमें सबसे अच्छी NB21 वैरायटी है, और दक्षिणी भारत की बात करें तो कोयम्बटूर 1, कोयम्बटूर 2, कोयम्बटूर 3 वैरायटी है जिसका सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टर आता है जो कि 250 से 300 क्विंटल टन प्रति हेक्टर तक देखा जाता है।
1: अच्छा सर, नेपियर घास के फायदे क्या क्या है?
0: जी बिल्कुल, इसमें सबसे पहला जो फायदा है नेपियर का कि आपका जो मिल्क प्रोडक्शन है जिसमें हमारा देश नंबर 1 है उसमें आपका जो गुण है मिल्क के क्वालिटी को बढ़ाना, और साथ में ही ये ऐसा हरा चारा है जो जल्दी पचकर दूध उत्पादन में वृद्धि करता है, साथ में ही आपका 70 से 80 दिनों में हमें पहली कटाई मिल जाती है और वो फिर हमारा 30 से 40 दिन के अंतराल पर कम से कम 7 से 8 वर्ष तक हमें प्राप्त होता है हरा चारा। तो ऐसा कोई और चारे की फसल नहीं है जो हमें इतने वर्षों तक हरा चारा प्राप्त करा सके। साथ में ही हम इसे जैविक तरीके से भी उगा सकते हैं और इसको फर्टिलाइजर्स के साथ भी उगा सकते हैं, दोनों ही तरीके से ये अच्छे से उग जाती है। बात करें तापमान की तो ये सभी प्रकार के तापमान में अच्छे से उग जाती है, उचित तापमान इसका 28 से 35 के बीच में रहता है, तो ये आराम से अच्छा उत्पादन देती है।
1: सिंचाई की कब कब और कितनी आवश्यकता पड़ती है? साथ ही बात
0: जी
1: करें हम निराई गुड़ाई की, तो क्या इसमें निराई गुड़ाई की भी आवश्यकता पड़ती है?
0: जी सिंचाई की जो आप बात कर रहे हैं, तो सिंचाई में ऐसा है जब प्रथम कटाई इसकी बुआई के समय एक सिंचाई करनी पड़ती है, उसके 15 दिन बाद दूसरी सिंचाई, और उसके बाद 70 से 80 दिनों में जब हम इसे काटते हैं तो 1 फिट ऊंचाई से इसको काटते हैं क्योंकि इसकी हाइट 10 से 15 फिट तक रहती है, तो हमें 1 फिट छोड़ना पड़ता है ताकि इसकी जो नई दूसरी फुटान है वो जल्दी हो सके। तो जो तीसरी सिंचाई है वो हम 70 से 80 दिनों बाद कटाई के बाद करें। बात करें अगर इसकी निराई गुड़ाई की तो इसमें बहुत अधिक निराई गुड़ाई की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि ये घास की फैलने वाली चारा फसल है, तो इसमें आपका जो खरपतवार है बहुत कम उगता है, तो निराई गुड़ाई की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं रहती, शुरुआत की स्टेज में निराई गुड़ाई आप कर सकते हैं।
1: अच्छा सर, हम बात करें नेपियर घास की, तो क्या इसमें खाद और उर्वरक की भी आवश्यकता पड़ती है क्या?
0: जी ऐसे हम जैविक तरीके से जैसे मैं बता रहा था वो
1: जी
0: भी
1: जी
0: उगा सकते हैं जिसमें आपका जो FIM है 5 टन प्रति हेक्टर के हिसाब से बुआई के समय आप डाल सकते हो गोबर की खाद, और अगर NPK है यूरिया जो हमारा है तो 110 kg प्रति हेक्टर की दर से बुआई के समय आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बाद में जब हमारी फसल की जब कटाई शुरू हो जाती है तो हमें नाइट्रोजन की मात्रा आधी मात्रा नाइट्रोजन की डालते रहनी चाहिए, और सिंगल सुपर फास्फेट है, म्यूरेट ऑफ पोटास है, इसका भी हम उपयोग कर सकते हैं इसके अच्छी बढ़वार के लिए और बार बार कटाई के
1: अच्छा,
0: लिए।
1: एक बार लगाने के बाद हरे चारे के रूप में कब तक इसको काम में ले सकते हैं?
0: जी मैं कि ये बहुवर्षीय चारा फसल है, अगर हम इसको एक बार लगाते हैं तो 3 से 4 महीने बाद ये पहली कटाई दे देता है, और हमारे 7 से 8 सालों तक हम इसकी हर साल 5 से 6 कटाई ले सकते हैं, तो बहुवर्षीय है, 7-8 साल तक चलने वाली चारा फसल है, और ये हमारी जिन क्षेत्रों में अधिक हरे चारे की कमी है उनके लिए सबसे उपयुक्त चारा फसल के रूप में किसानों के लिए ये काम आने वाली फसल है।
1: अच्छा सर, एक बात और मेरे दिमाग में आ रही है कि किसान साथी इसको लगाना चाहे, अपनाना चाहे, तो इसका खर्चा कितना आता है इसको लगाना चाहे तो?
0: जी बिल्कुल, इसके लगाने के लिए बीज और कलम दोनों ही तरीके से इसको लगा सकते हैं। खर्चे की बात करें तो इसमें 30 से 40 हजार रुपये प्रति एकड़ तक खर्चा आता है कलम्स का, और बीज की बात करें तो 10 से 15 हजार रुपये का जो खर्चा आता है प्रति एकड़ बीज का, पर बीज क्या है अवेलेबल नहीं होता हर समय इसका क्योंकि 7-8 सालों में जाके हम इसका बीज प्राप्त कर पाते हैं लास्ट कटाई के समय, तो इसे हम कलम से बेहतर लगा सकते हैं और कलम को पूरे वर्ष हम कभी भी लगा सकते हैं, बहुत अधिक महंगी फसल नहीं है ये।
1: तो सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि बीज इसका कम मिलता है, 7-8 साल में फसल आती है,
0: जी
1: नेपियर
0: जी
1: घास आती है, तो इसको कलम के रूप में लगा सकते हैं, तो इसको कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं?
0: कलम को किसी भी जो किसान जिसने इसको लगा रखा है उसके यहाँ से आप 1 फुट ऊंचाई के बाद में जो बाकी उसका जो तना है उससे कलम बना के आप उसे प्राप्त कर सकते हो, या किसी भी अनुसंधान केंद्र पे जहाँ पे चारा की फसल उगाई जाती है वहां से आप इसको, और प्रति हेक्टर ये 30 से 30 हजार से 35 हजार कलम आपको आवश्यकता

0: रहती है प्रति हेक्टर इसकी कलमों को।
1: सर बात करें दुधारू पशुओं की तो उनके लिए नेपियर घास कितनी लाभकारी है?
0: जी, मिल्क प्रोडक्शन की बात करें जो दुधारू पशु हैं उनमें दूध के लिए, तो ये फसल अच्छी प्रोटीन अच्छे फाइबर रेशे वाली है, तो हमारे पशुधन का जो भी दूध उत्पादन हो रहा है उसमें 10 से 15% तक वृद्धि देखी गई है नेपियर घास के बाद। जैसे मान लीजिए किसी गाय भैंस का 8 से 10 केजी, 8 से 10 लीटर पर डे का मिल्क प्रोडक्शन है, तो ये 1-2 लीटर और उसमें इंक्रीज हो जाता है, ये अनुसंधानों में देखा गया है।
1: अच्छा सर, कार्यक्रम के अंत में चलते चलते और क्या सुझाव आप किसान साथियों को देना चाहेंगे?
0: जी, बरसिन रिंज का जई की अपेक्षा में कई सालों तक और वर्ष भर चलने वाली चारा फसल है, तो किसान साथी हरे चारे की जो समस्या है उसके लिए सुपर नेपियर घास का उपयोग करें, जो कि हरी ऊर्जा के रूप में आपके पशुओं के लिए काम आने वाली और अच्छी पाचन क्षमता वाली फसल है, इसका उपयोग करें ताकि आपकी चारे की जो समस्या है वो समाप्त हो जाए।
1: तो इतनी महत्वपूर्ण और सार गर्भित जानकारी आज आपने हमारे किसान साथियों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर।
0: नमस्कार।
1: करसान भाई बोणा, बहुत ही बढ़िया जानकारी। अब आपने सुनी हरा चारा का विकल्प रूप में नेफियर घास। तो करसान भाई बोणा, बहुत ही लाभकारी चाहिए यह घास। एक ताई लगा कर अपना जो मवेशी छे वहाँ ताई अपन अपने जो दूध उत्पादन छे उनका ताई बढ़ा सके।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: और करसान में बना बारिश गीत संगीत की, तो आओ सुना यो बढ़िया शौक लोकगीत।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: और करसान भाई बहनों, बात करा अपन जानकारी के बता में मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया करसान भाई बहनों भारत सरकार के द्वारा 25 सितंबर 2014 में शुरू करेगी एक प्रमुख पहल छे, जिको उद्देश्य छे देश के ताई एक वैश्विक विनिर्माण हब बनावो। और यह योजना भारत में निवेश आकर्षित करवा, विनिर्माण क्षेत्र के ताई बढ़ावो देवो, युवाओं के लिए रोजगार का अवसर पैदा करवो और आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य के ताई हासिल करवा के लिए डिजाइन करेगी जी, जिका 10 वर्ष 2024 में पूरा हो चुके छे। इका लक्ष्य करसान भाई बनाओ उद्देश्य भारत के ताई वैश्विक डिजाइन और विनिर्माण केंद्र में रूप में स्थापित करवो जी। क्षेत्र रक्षा, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेलवे और चिकित्सा उपकरण सहित 25 से अधिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करवो शामिल छे। आर्थिक प्रभाव, विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि दर 12.14% ताई बढ़ावो और GDP व विनिर्माण को 25% ताई ले जावो शामिल छे। निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के ताई सुगम बनावो और आसान व्यापार के ताई बढ़ावो देवो छे। लोगो यानी कि सिंबल इको प्रतीक गियर से बनियो एक शेर छे, जो लागत और क्षमता को प्रतिनिधित्व करे छे। करसान भाई बहनों बात करावन हालिया प्रगति यानी 2025-26 की, तो सेमी कंडक्टर हब मई 2026 में कैबिनेट ने 2 नई सेमी कंडक्टर परियोजनाओं के ताई मंजूरी दी छे, जहाँ मेक इन इंडिया के ताई बढ़ावो देवो छे। रक्षा निर्यात, स्वदेशी रक्षा उत्पादन में भारी वृद्धि हुई छे और भारत अब हथियार निर्यात करवा वाला प्रमुख देशों में शामिल हो रही छे। मेक फॉर द वर्ल्ड, अब फोकस मेक इन इंडिया से आगे बढ़कर मेक फॉर द वर्ल्ड दुनिया के लिए उत्पादन पर छे। मेक इन इंडिया अर्थात भारत में बढ़ाओ अभियान भारत सरकार की एक पहल छे, जहाँ बहुआयामी अभियान छे, जिसमें भारत के ताई बढ़ावो को अर्थ निहित शामिल छे। मेक इन इंडिया करसान भाई बनाओ ये अभियान के साफल्य से ही मेड इन इंडिया अर्थात भारत में निर्मित को स्वनिर्मित स्वर्णपूर्ण होगो। ये अभियान को उद्देश्य करसान भाई बनाओ भारत का विनिर्माण का बड़ा केंद्र का रूप में स्थापित करवो छे। यो संकल्प औद्योगिक उत्पादन के ताई बढ़ाकर आर्थिक ज समृद्धि छे उनका ताई लाभा की धारणा पर आधारित छे। ये अभियान को सीधो स्वार्थ यही छे, उत्पादन बढ़ाओ, रोजगार का अवसर उत्पन्न करो और क्रय शक्ति बढ़ाओ और विकास प्रक्रिया में सबका ताई लाभ दो। ये अभियान से संपूर्ण विश्व की जहाँ लगभग 300 प्रमुख कंपनियां वहाँ का ताई जोड़वा की योजना छे और इनके लिए मुख्य 25 क्षेत्र की जो पहचान कर ली गई छे, जिमा भारत अग्रणी स्थान।

बना सकत है। मेक इन इंडिया की पहल इनकी प्रचानता कहता है संरक्षित कर प्रोत्साहित करे है और एक साथ ही नवीनीकरण और आधुनिकता कहता है मजबूत कर वो शामिल है। करसान भाई बहनों बात करें अपन ई योजना का लाभ तो भारत का तय एक विनिर्माण हब का रूप में विकसित करवो, भारत का आर्थिक विकास का तय बढ़ावा देवो और रोजगार का अधिक अवसर पैदा करवो, साथ ही अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करवो का मौका, भारत में रक्षा विनिवेश का तय बढ़ावा देवो शामिल है। तो करसान भाई बहनों मेक इन इंडिया अर्थात भारत सरकार को एक प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य निवेश का तय सुगम बढ़ावो, नवाचार का तय बढ़ावा देवो, कौशल विकास का तय प्रोत्साहित करवो और साथ ही बौद्धिक जय संपदा जय उनकी रक्षा करवो, देश में सर्वश्रेष्ठ विनिर्माण अवसंरचना को निर्माण करवो शामिल है। ही पहल को प्राथमिक लक्ष्य विश्व भर से निवेश आकर्षित करवो और भारत का विनिर्माण क्षेत्र के तय मजबूत करवो शामिल है। इको नेतृत्व भारत सरकार का जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है वहाँ का उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा करो जा सके। तो करसान भाई बहनों या तो बात करें अपन मेक इन इंडिया और करसान भाई बहनों अपन बात कर लें कि गर्मी को मौसम है तो गर्मी का ही मौसम अपन के ताई अपना स्वास्थ्य को पूरा पूरा ख्याल रखना जे अपन बाहर निकला तो थोड़ी सी ठंडाई बगत में निकला धूप में निकला क्योंकि एक बार अपन बीमार होया के बाद में अपना जो काम है वो भी प्रभावित हो जे और खेती बाड़ी को जो काम है वो तो अपन के ताई समय पर करना ही है। और किसान भाई बहनों वाला अपन देख रहे हैं अपना जो खेत खाली है तो हकाई जुताई अबार अपन कर सके चाह जो अपनी जमीन जो अभी तब जाओ। किसान भाई बहनों मन तो करे कि अपन और बात चिंता करा और नई नई जानकारी अपन किसान भाई बना कर लेकर देवा, पर अपना जो कार्यक्रम है कृषक चौपाल इनको भगत हो रो पूरा तो दियो आपका साथी कहते हैं आज्ञा करा राम राम।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: FM 103.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं मुंबई से प्रसारित विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

अंतराल के बाद एक बार फिर आपका विशेष जयमाला कार्यक्रम में स्वागत है। साथियों, ये किस्सा उस वक्त का है जब फरवरी सन 1948 में लेफ्टिनेंट कुशल चंद उन दो अधिकारियों में से एक थे जिन्होंने स्थानीय मिलिशिया बल बनाने और लद्दाख घाटी की रक्षा करने में मदद करने की खुद अपनी इच्छा से लेह जाने की बात रखी थी। इसकी उन्हें स्वीकृति भी मिल गई थी। 4 माह के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य बलों के एक प्लाटून और लगभग 20 स्थानीय मिलिशिया के साथ लेफ्टिनेंट कुशल चंद उस स्थान पर जा पहुंचे जहां दुश्मनों ने कब्जा करना शुरू कर दिया था।

साथियों, युद्ध का मंजर बड़ा भयानक था। दोनों ओर से वादियों में गोलियों की आवाजें गूंज रही थी। कोई किसी से कम नहीं था, लेकिन लेफ्टिनेंट कुशल चंद अपनी तत्परता बहादुरी दिखाते हुए दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देकर उन्हें सिंधु घाटी के साथ लेह की ओर बढ़ने से रोक दिया। उन दुश्मनों के मंसूबों पर पानी फिर गया। उन्होंने दुश्मनों के साथ एक विशेष गुरिल्ला युद्ध से उनका मुकाबला किया। उनके साथ कई साथियों का समूह था जो उन्हें कवर दे रहा था और वे इस तरह रेंगते हुए पुल के पास पहुंच गए और पुल में आग लगा दी। उन्होंने खलत्सी पुल पर दुश्मनों को 24 घंटे के लिए रोके रखा। इस कारण से सप्ताह भर की देरी का दुश्मनों को सामना करना पड़ा। वे कुछ कर पाने में असमर्थ हो गए। लेह में संचार की सुविधाएं भी नहीं थी। वे अपने कमांडर से संपर्क करने में असुविधा भी महसूस कर रहे थे।

साथियों, जब इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था, उचित राशन की सुविधा से सैनिक वंचित हो गए थे और यहाँ तक मोर्टार के बिना और गोला बारूद की भारी मात्रा में कमी का सामना लेफ्टिनेंट कुशल चंद और उनकी फौजी टुकड़ी को करना पड़ रहा था। ऐसी विषम स्थिति में भी उनके हौसलों और जज्बों में कोई कमी नहीं आई थी। वे बड़ी बहादुरी से युद्ध के मोर्चे पर डटे हुए थे। यही तो है हमारी भारतीय सेना के जाबाजों की खासियत। जब वे कदम बढ़ा लेते हैं तो पीछे नहीं हटते, दुश्मनों को परास्त करके ही दम लेते हैं और उनकी रणनीति के आगे दुश्मनों की एक ना चल सकी और इस तरह वे लद्दाख के रक्षक बन गए। इस तरह उन्होंने भारतीय सेना की उच्च परंपराओं को बनाए रखा और अन्य लोगों के लिए एक संदेश भी दिया कि यदि जिगर में मजबूत हौसला हो तो फतेह ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकती, वो एक ना एक दिन पास आएगी और तब जीत का परचम नीले आकाश में लहरा उठेगा। बाद में वे लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पदोन्नति मिली और लेफ्टिनेंट कुशल चंद ने 3 साल के लिए नवी डोगरा इन्फेंट्री बटालियन की कमान संभाली। सफलतापूर्वक कमान संभालने के बाद उन्हें कंबोडिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ काम करने के लिए नियुक्त किया गया था। लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल कुशल चंद का विदेश में एक कार्यकाल तय था, क्योंकि जिस विमान में वे ड्यूटी पर जाने के लिए यात्रा कर रहे थे वो लाओस के ऊपर से जाते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया और ऐसी स्थिति में वे नहीं बच पाए और इस संसार से सदा के लिए जुदा हो गए। ऐसे वीर जाबाज ऑफिसर की मिसाल हम सभी के हृदय में जिंदा रहनी चाहिए। साथियों, भारत सरकार द्वारा उन्हें सन 1950 में महावीर चक्र सम्मान से सम्मानित किया गया। उनकी ऐसी वीर बहादुरी को शत शत नमन, सलाम और प्रणाम। साथियों, लद्दाख घाटी की आने वाली पीढ़ियां हमेशा उनकी और उनके जवानों की आभारी रहेंगी।

आज विशेष जयमाला की शौर्य गाथा की कड़ी में आपने सुनी महावीर चक्र सम्मान से सम्मानित लेफ्टिनेंट कुशल चंद के अदम्य साहस से भरी शौर्यता की कहानी। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। शोध आलेख और स्वर मंजरी वर्मा का, संयोजन और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। तो अब मंजरी वर्मा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम साज और आवाज। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पारसनाथ की बांसुरी पर बजाई धुन और उसी फिल्म का गीत। सबसे पहले लीजिए सुनिए पारसनाथ की बांसुरी पर बजाई शालीमार फिल्म की धुन।

अभी आप सुन रहे थे पारसनाथ की बांसुरी पर बजाई शालीमार फिल्म की धुन। अब लीजिए सुनिए यही गीत किशोर कुमार और साथियों के आवाजों में। आनंद बख्शी का लिखा हुआ ये गीत है और संगीतकार हैं आर डी बर्मन।

बांसुरी पर बजाई फिल्म प्रेम गीत की ये धुन अभी आपने सुनी। कलाकार थे पारसनाथ। अब लीजिए सुनिए जगजीत सिंह की आवाज में प्रेम गीत फिल्म का यही गीत। गीतकार हैं इंदिवर और संगीतकार हैं जगजीत सिंह।

0: आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं कल्पनाथ सिंह की लिखी हास्य नाटिका यात्रा प्यारे लाल की।
1: पंडित जी पांव लागी।
2: आयुष्मान यजमान आयुष्मान, भगवान भला करे, सब कुशल मंगल तो है प्यारे लाल जी।
1: आपके आशीर्वाद से सब कुशल मंगल है पंडित जी।
2: अच्छा अच्छा, ये संध्या समय कैसे आगमन हुआ, क्या कोई खास बात है?
1: बस एक निवेदन है पंडित जी। असल में ससुराल जाने का इरादा है, तो मैं चाहता हूँ कि कोई शुभ मुहूर्त इस यात्रा के लिए आप बता दें तो बड़ी कृपा हो।
2: क्यों नहीं, शुभ मुहूर्त, शुभ घड़ी, शुभ दिन, सब कुछ आपको बतला देता हूँ। जरा पत्ता देख कर अभी विचारता हूँ। यजमान
1: जी,
2: इसके पहले आप कितनी बार ससुराल हुआ है?
1: पंडित जी, सच बात तो यह है कि अभी तक मैं एक बार भी ससुराल नहीं गया। ये मेरी ससुराल की पहली यात्रा होगी।
2: क्या क्या क्या क्या कहा यजमान, क्या इसके पहले आप एक बार भी ससुराल नहीं गए?
1: जी नहीं।
2: इस युग में ससुराल की यात्रा में इतना विलम्ब, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मुझे तो लगता है आप जरूर कुछ भूल रहे
1: हैं। नहीं पंडित जी, मैं बिल्कुल सच कहता हूँ कि ब्याह के बाद आज तक मैं ससुराल नहीं गया।
2: जरूर कोई कारण होगा, खैर कोई बात नहीं।
1: पंडित जी, बात यह है कि मुझे पहले बड़ी

0: शर्म लगती थी। और फिर मेरी पत्नी मालती ने भी मुझसे कई बार कहा, लेकिन पंडित जी क्या करें, कोई जुगाड़ ही नहीं लगा, अब गलती हो ही गई।
1: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। हाँ तो आज कौन सा दिन है?
0: आज
1: रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी तीन दो पांच, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी। भगवान भला करे, मंगलवार को प्रातः 4:21 से पूर्व ही आपकी यात्रा का योग बन रहा है।
0: अच्छा अच्छा,
1: इसके बाद कोई योग नहीं बनता जगवान।
0: ठीक है पंडित जी, हम वक्त से पहले ही निकल जाएंगे यात्रा के लिए।
1: आयुष्मान, भगवान भला करे।
0: अरे पंडित जी, मैं तो भूल ही गया था, ये लीजिए आपकी दक्षिणा, क्षमा कीजिएगा, जल्दी में था ना, इसलिए भूला जा रहा है।
1: जजवान, ससुराल को जा रहे हो, भूलोगे क्यों नहीं, ससुराल से लौट कर दे देते।
0: अरे नहीं पंडित जी, ये तो इस वक्त शुभ मुहूर्त निकालने के लिए मात्र पत्र पुष्प अर्पित किए हैं। ससुराल से लौटने पर तो मैं अपनी धर्म पत्नी के साथ आपके दर्शन को आऊंगा और गांठ जोड़ के आपके चरण छूऊंगा। अच्छा मैं चल रहा हूँ,
1: भगवान आपकी यात्रा शुभ कुशल पूर्वक हो रहे।
0: मालती, पंडित जी ने तो भाई कमाल ही कर दिया, एकदम कमाल।
2: अरे क्या कमाल कर दिया पंडित जी ने?
0: तुम जितना आसान समझती हो, मुहूर्त उतनी आसानी से नहीं निकलता है। जैसे बगुला पानी में खड़ा खड़ा मछली को दबोच लेता है ना, ठीक उसी तरह हमारे पंडित जी भी पत्रा में आंख पहले तो गड़ाए रहे और फिर मुहूर्त मिलते ही उसे दबोच दिया। अरे आज मैं पंडित जी को मान गया।
2: अरे बस हो भी क्या, अरे बखाने किए जाओगे या ये भी बताओगे मुहूर्त कब का और किस दिन का निकला?
0: अब तैयारी करो तुम जल्दी से, ज्यादा देर नहीं है, केवल 3 दिन का मामला है।
3: अरे ओ बहुरिया, का प्यारे आए गवा?
0: हाँ अम्मा, मैं आ गया। अरे अम्मा, पंडित जी ने शुभ मुहूर्त जैसे निकाला ना, मैंने दक्षिणा उनके मुंह पर ठोंकी और सीधे घर आ गया।
2: अरे तो साफ साफ बतावत काहे नहीं है भैया कि पंडित जी ने किस समय की मुहूर्त की बात की है। अरे ये बच्चन की तरह पवारा काहे गाय रहे हैं?
0: अरे अम्मा, मैंने मालती से पहले बता दिया कि अब ज्यादा समय नहीं, केवल 3 दिन बाकी हैं। पंडित जी बोले त्रयोदशी अर्थात मंगलवार को सवेरे 4:21 से पूर्व ही हमारी ससुराल यात्रा आरंभ हो जानी चाहिए, विलंब करने से फिर ससुराल यात्रा का जल्दी कोई जोग नहीं बनता।
2: तो इतनी सी बात बतावे के लिए इतना नाटक रचावे की कौन सी जरूरत रहे भैया? अरे बहू देख, कोई समय ज्यादा नहीं है, तू इसके भरोसे ना रहना, सारी तैयारी पूरी कर, समझ गई? अरे इसका क्या, ठीक ऐन बखत पे पता चलेगा कि कपड़ा लत्ता ही ठीक नहीं किया।
0: ए मालती, कान खोल कर सुन लो, मेरी पहली पहली ससुराल की यात्रा का मामला है, सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। ए ससुराल वाले भी समझ जाएंगे कि कोई दामाद राजा आए हैं।
4: हाँ, क्या वे लोग आपको समझे नहीं है क्या?
0: अरे जब समझे थे तब के प्यारे लाल और आज के प्यारे लाल में बड़ा फर्क हो गया है।
4: अच्छा?
0: अब श्री प्यारे लाल को समझने के लिए भेजे की जरूरत, समझी? अब कोई आसान नहीं मुझे समझना।
2: अरे बहू तुम भी बेकार ही इसके मुंह लगी हो, जाओ अपना काम करो।
4: माँ जी इनको समझा दीजिए, अगर इसी तरह वहाँ जाकर भी बड़बड़ाया करेंगे तो लोग क्या कहेंगे?
0: अरे कहेंगे क्या है? प्यारे लाल की बातों को प्यारे लाल को अब समझना कोई आसान काम नहीं रह गया। तुम लोग क्या जानो प्यारे लाल और उनकी बातों को, भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस खड़ी पगड़ाए।
4: अच्छा जी ठीक है, मैं तो भैंस हूँ ही ना, 2-3 दिन बाद आपको भी खुद अपनी स्थिति का पता चल ही जाएगा।
0: तुमको भी बड़ा गुमान है ना अपने मैके वालों पर?
4: ना हो?
0: मैं भी अब देखता हूँ उनको वहाँ जाके।
4: जाइए जाइए, जी भर कर देख लीजिए, अरे कहीं महंगी ना पड़ जाए आपकी पहली ससुराल यात्रा।

0: बस में फंस गई बाम घर तीन खीसे न काड़ो घर चलो। अरे भैया ए सुनो, गोपालपुर गांव अभी कितनी दूर है?
1: गोपालपुर गांव
0: जी?
1: अरे भैया गोपालपुर नाम का गांव इधर तो कोई है नहीं।
0: भाई साहब यहीं कहीं गोपालपुर गांव है। अरे वहीं तो मेरी ससुराल है, असल में रास्ता भूल गया था इसलिए आप

0: से पूछा,
1: स्टेशन के कौन तरफ है यू गांव?
2: स्टेशन से इधर ही, बिल्कुल पूरब की तरफ।
1: राम राम राम, अरे भैया तब तो आप बिल्कुल ही गलत आए गए। अरे आप तो स्टेशन से पश्चिम काफी दूर चले आए।
2: पश्चिम?
1: अब ऐसा करो पुनः स्टेशन लौट जाओ और स्टेशन से पूरब की तरफ 3-4 मील दूर कोई गोपालपुर नाम का गांव है,
2: अरे
1: वहीं किसी से पूछ लीजिएगा।
2: अरे सुनो सुनो सुनो, तो ये स्टेशन से पूरब नहीं है क्या?
1: भैया तब तो लगता है कि आपको दिशा भ्रम हो गया।
2: अरे राम राम, तब तो भाई बड़ी गलती हो गई।
1: अरे कोई बात नहीं, गलती तो हो ही जाती है।
2: भाई साहब सुनिए सुनिए, एक बात बताइए, क्या आप स्टेशन मेरे साथ वापस लौट चल सकते हैं?
1: वाह भाई वाह, मैं क्यों लौटूं? क्या मुझे कोई दिशा भ्रम हुआ है? आप कैसी बातें करते हैं भाई साहब?
2: अरे भैया यही बात तो मेरी बीवी मालती भी कहती है, आप कैसी बातें करते हैं। सुनिए, क्या आप मेरी ससुराल के रहने वाले हैं?
1: अरे जाइए जाइए, अपना रास्ता लीजिए। आप क्या कहते हैं, आपकी बीवी क्या कहती है, मुझे क्या लेना देना है? न मैं आपकी ससुराल का हूँ और न मैं आपको जानता हूँ। अरे रास्ता भूल गए हो तो बतलाए दे रहा हूँ, वरना अपना रास्ता लीजिए आप। रात हो जाएगी तो अच्छी तरह ससुराल पहुँच जाइएगा।
2: आप सही कह रहे हैं भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है आज तो तुम बुरे फंस गए प्यारे लाल। चलो बेटा वापस स्टेशन। तो क्या वाकई मुझे दिशा भ्रम हो गया? मैं तो पंडित जी से मुहूर्त पूछ के चला था, ये ससुराल की यात्रा भी जीवन भर याद रहेगी। ना कोई सवारी ना कोई सुविधा, बस पैदल परेड। हे भगवान। मैं स्टेशन के पूरब तो आ गया, नहीं आगे नहीं जाऊंगा, यही किसी से पूछ लेता हूं, कहीं बेकार में फिर से परेड करनी पड़ जाए। सुनिए भाई साहब सुनिए।
1: हाँ कहो।
2: मैं पूछ रहा था कि मैं स्टेशन से पूरब की तरफ जा रहा हूँ ना?
1: बिल्कुल ठीक, पूरब की तरफ जा रहे हो, जाना कहाँ है?
2: जी मुझको गोपालपुर जाना है। वो सामने वाला गाँव क्या गोपालपुर ही है?
1: बिल्कुल ठीक पहुँचे, वही गोपालपुर है। सकल से लागा तो पहले पहल आए हो।
2: जी हाँ जी हाँ, इस गांव में मेरी ससुराल है।
1: अच्छा अच्छा, गोपालपुर में तुम्हारी ससुराल है?
2: जी
1: है? हमरी सकल का देख रहे हो, शाम हो गई है, रास्ता तुमको मालूम नहीं, कहूँ रास्ता भूल गए तो जल्दी जाओ।
2: अच्छा अच्छा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बाप रे, तो बड़ा सन्नाटा। बड़ा अंधेरा बढ़ता जा रहा है। प्रवेश नगर की जे सब का जा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अरे कुत्ते भौंक रहे हैं, कहीं काट न ले। दीनदयाल व्रत संभारी, हर नाथ मन संकट भारी।
3: ए नाथ, आगे बढ़े तो एक एक को देख लूंगा,
2: भूत के साथ निकट नहीं आवे, महावीर न जब नाम सुनावे। अरे भाई कोई है?
3: नाथ मारो तुमको।
2: अरे भैया कहाँ चले जाए?
3: अरे
1: जीजा जी, अरे जीजा जी आ।
3: अरे बड़ा गजब हो गो, अरे बड़ा अनर्थ हो गो। अरे जीजा जी का पुत्र काट लिया।
2: अरे भैया आप तो हमका पहचान गए, इस ससुर कुत्ता नहीं पहचान पाए, इतने कुकुर पाले रहो। देखो काट ली, खून निकल रहा है।
4: अरे बेटा प्यारे लाल, तुमने इतनी देर लगा दी, आना ही था तो पहले खबर कर दिए होते।
2: अरे बाबूजी,
4: कोई बैलगाड़ी लेकर स्टेशन आ जाता। प्यारे लाल ये तो बड़ा अनर्थ हो गया, देखे भैया कहाँ काट लिया।
2: देखो बाबूजी पाओ माँ
4: चूरे तीरा,
2: चुना, चुना,
4: चुना। कुत्ता पालने का बड़ा शौक लगा था ना तुझे, अब हुआ ना अनर्थ, जवाई बाबू को ही काट लिया। अरे जा मर, क्या देख रहा है, पानी लाकर घाव धो और तुरंत जाकर वैद्य जी को बुला ला।
1: अरे अब वैद्य जी आकर क्या करेंगे बाबूजी? अरे इसके लिए तो बस एक ही दवा है, सुई। अरे सुई अब वो भी लगेगी अस्पताल में कल सुबेरे।
2: मर गए सुई। अरे बोरी अम्मा, अरे ससुराल आए के ससुर कुकुर का बतौर ली से।

अरे मालती, तुम्हें अपने मायके का बड़ा गुमान था ना, तो मेरी भी मति मारी गई थी जब 3 दिन की छुट्टी ली थी। पंडित जी से साल पूछ के चले आए थे, दिशा भरम, उसके बाद पश्चिम की पद यात्रा, उसके बाद पूरब की पद यात्रा, उसके बाद इस ससुर कुकुर कांड। अरे अब एक एक कई के पेट में बड़ी बड़ी 14 सुई। अरे अरे वारी मेरी ससुराल यात्रा।

तो ये थी हास्य नाटिका यात्रा प्यारे लाल की। इसे लिखा कल्पनाथ सिंह ने, निर्देशिका चंद्र प्रभा भटनागर। अभी आप आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की प्रस्तुति सुन रहे थे।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने

श्रोताओं, भी आप सब मुंबई से प्रसारित विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम FM 103.2 MHz पर आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनवा रहे हैं सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में फिल्म रिफ्यूजी से ये गीत।

जब प्यार किसी से होता है। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म में लता मंगेशकर और कुमार सानू को। आइए अब सुनते हैं सोनू निगम और श्रद्धा पंडित को फिल्म संघर्ष में।

0: को पहुंच रहे हैं।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में गाए फिल्म रक्त के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। FM 103.2 MHz पर हम आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क को मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
2: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत

0: दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने गुटिबेल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया है कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है।
0: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है। आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बंगलुरु में आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
0: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
1: गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर चिरस्थायी गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभास पाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर आज प्रभास पाटन में धर्म भक्ति देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक दिखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीरजी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। दूसरी ओर श्रद्धालु और पर्यटकों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में स्थित अधिक जोखिम वाली 30 झीलों के लिए विकसित की जाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली में कम से कम 60 झीलों को शामिल किया जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि लू के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलते

0: रूप और उनसे उत्पन्न होने वाली आपदा संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन्द्र तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, नेल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्टइंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर जयशंकर की कल कैरिबियाई देशों की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू होगी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर भी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शाह ने आज शाम नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की 2 पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर कहा कि आम आदमी का विश्वास समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र एक मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलतापूर्वक बनाए रखा है।
2: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए, खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मातृ दिवस के अवसर पर मुंबई में मातृ पोषण किट वितरित किए। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विशेष रूप से तैयार किए गए ये किट गर्भावस्था के अंतिम चरण में महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों और नवजात शिशुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य राष्ट्र के भविष्य से सीधा जुड़ा है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि इस पहल का विस्तार उत्तर मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा।
3: और खेलों में

0: IPL क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंद में 65 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। कजाकिस्तान के अल्माटी में ISSF निशानेबाज शॉटगन विश्व कप में नीरू ढांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने लगाए। चीनी ताइपे पहले और इटली की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षा कर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 103.2 MHz पर आकाशवाणी झालावाड़ का एक चंद्रभागा चैनल है। रात्रि के 9 बज चुके हैं। अब प्रस्तुत हमारे केंद्र से गैर फिल्मी भजन, कवाली, गजल और गीतों भरा कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम के आरंभ में सुनवा रहे हैं हरिओम शरण और साथियों की आवाजों में ये भक्ति रचना।

अभी आप सुन रहे थे साबरी बदर और साथियों की आवाज़ों में कवाली। आइए आप सुनते हैं अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ों में ये गज़ल।

अदनान सामी की आवाज़ में गाए इसी गीत के साथ सबरस कार्यक्रम ये समाप्त होता है। एफ एम 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हो चुके हैं। हमारी आज की सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए, शुभरात्रि, जय हिंद।